इन्हें देखो काको सा, यूं रस निकलना चाहिए, करो ऊपर महादेव रे दबाओ, रस अभिषेक करना है, ओम नमः दबाओ, रस आवना चाहिए बाहर है, ओम नमः संभवा यजमयो भवा यज नमः संगरा यज, पानी गाल लो, पानी गाल बस, पानी गाल लो, रस अभिषेक आप तो बाहर जाओ, अरे रुको जेठा पड़े कहना कहना अभिषेक भाई, थोड़ी देर रुको जा, आनंद आवेला चीज रहो, ओम ओम या फल निर्जा फला बुक्वा या सुकुन लो, ओ बृहस्पति बसूत लो भगवान आप ही बृहस्पति बसूता इनो तूर न माते रस तो अभिषेक बृहस्पति बसूता स्थानो मुंचन तो गौ असह अरे वाह थाली दो तो मे... वो थाली इतना वगैरह सब उसमें ही है ये, हाँ ये थाली लिया हो पूरी, बस इसमें क्या है इतना बड़ा है, मैंने कहा इतना इतने वगैरह आनंद आता नहीं भैया भाई, अब है गए और लो चावल, थोड़ा चावल चढ़ाओ नहीं ऑन करो, लो सर ओम प्रिय यश समय ये बात समय माथा समय तीला समय मुर्गा समय तलवा समय बृहस्पति सोमो राजा विद्वान पाचो जल डालो, पाचो जल डालो, वासुदेव जल डाले का तू, ओम शुद्ध वालो सर्व शुद्ध वालो मणिवाल सदाश्विना श्वेता श्वेता।

सहित वरे वीर उदा पारिष्णव पुष्प उदक स्नान पास जल डालो भाई वासुदेव। पुनः शुद्ध उदक स्नान पुष्प पास शुद्ध जड़ू। पुनः शुद्ध उदक स्नान समर्पयामि शुद्ध उदक स्नानाचमनीयम जलम समर्पयामि नमः आचमनीयम जलांत साम सदाशिव हिरण्य उदक स्नान मोलो ऊपर दे इन विधान करो। ओम मह हिरण्य गर्भ समवर्तदाग्रे भूत से जातपतिरे काशीत सदाधार प्रतिवीद्यामुदयमांक समय देवाय अभी का विदेम हिरण्योदक स्नान समर्पयाम हिरण्योदक स्नान दय हाथ मंडो सा आदो इतर उंगली मत जाए इतना जिना हो जड़ तो आयो सा महादेव रे करामण महादेव रे नान करामणिया लगो। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधं पुष्टिवर्धनं मा उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षय्यमामृता सां सदाशिव देवताभ्यो नमः। शुद्धो सुगंधि द्रव्योदक स्नानं समर्पयामि सुगंधि द्रव्योदक स्नानां पाच जड़ु। पुनः शुद्ध उदक स्नानं आचमनीयं जलं समर्पयामि नमः आचमनीयं जलान्ते सौभाग्य द्रव्योदक स्नानं मा देतो भाई इदे लेटी खोल न दे अरे खोल मारा हाथ में घी लागोड़ है। अरे घी है गई अरे यार जिन्हें घी घी को नहीं खोल न दे ओ है अबीर गुलाल सौभाग्य द्रव्यो हाँ आप देख लीजिए लोटा भी जहाँ एक लोटो राख जो बाकी बलि दे दीजो एक लोटो मारा सही जरा आप लालू जल रही आरती बीजी करो जरा चलो और तंबर एक लोटो ट्रैक दो पड़े आरती बस जल्दी आरती करो कैसा लारू चढ़ाओ। सौभाग्य द्रव्योद स्नान माओ मघौ सुदाद यज्ञ सो प्रचदा बरुगा बरु धंधस्ते सो ममवतु मदाय और सो वचुद ओम गंध द्वारा दुराधर साम नित्य पुष्टांगणेमी श्रीम सर्वभूता नाम तामी उपवे श्रियम। बस पाच जड़ू ओम मई मालिश करो ओम मई रिव भोगे हे परे तिबाउ्यामान हस्तगनो विश्वाव युना विद्वान ले भाई विद्वान तुमान तुमान गो संपरिपाद विश्व ओम महिरी वभोगे हे परे तिबाउ्याया हे तिबरिबादमान चढ़ा चढ़ा हस्तगुनो विश्वाव युना चढ़ा दे विश्वाव युना विद्वान तुमान तुमान गो संपरिपाद विश्व बस अबे महादेव रे मात कपड़ो धक दो शिवलिंग माते मात कपड़ो धक दो भाई शिवलिंग माते वो अबोट एक कपड़ो ढकने रख दो शिवलिंग मा दो मिनट वास्ते अंगो चलो भाई वो अबोट भाई साहब वो लेना अंगो छो ढको इन मात शिवलिंग माते। ओम महो ओम नमः शंभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च मश्कराय च शिवाय ढको ढको जल्दी आगो नहीं राख बस दो मिनट छोड़ ढकियोड़ो कन्नू कन्नू बाण पूछ लो दूजा कपड़ो वो एक दूजा कपड़ो वो नहीं गम चो एक और बोगट है विंदु कन्ना कन्ना बाण एक परिधि पूछ लो परिधि हाँ इन परिधि पूछ लो ने हटाओ हटाओ विंदु पहले चंदन की टिक्की तैयार रखो टिक्की देव ने पछे हटामी चंदन बढ़िया आप रखना हाँ टिक्की दे दो आप टिक्की दोगे नहीं बस अब नीचे पूछ लो बाण बीजा सब साफ कर लो टीन पूछ लो इन अंगो छो पूछ लो बस पूछना है क्या नीचे साहब से पहले जाली आगे ले लो ताकि कहिए वो नीचे वो पानी निकल जाए बाहर सब उमोटो काम है जाली टालो एक बार परमानेंट ताकि पुस्तक बीजा इन जाली दो मिनट लारे रख दो बस अब पुस्तक बीजा हाथों यू मौन ले लो या एक कोतली में गाल न पीपल में बारह विसर्जन कर दो पेड़ में तो कागज भी जो ले लो नहीं कागज इनको फाड़ना है नील पत्र है वो इनमें खाली नहीं है ठहरो हर खाली कर दो यहाँ तो अगरबत्ती बिजली लगाओ जो थंबार जो घिरी गई पोजीशन है और बहुत मोटा काम है ऐसा जोरदार हाँ और एक जना पानी काल लो साटी नु जिको सब वो कचरा बटी ने बह जाए और एकदम साफ पेड़ चाहिए जा परिधि चौकट है मौली ताकि कही है अपने दूजी बार ओड़म्बो नहीं रहे के भाई
ताकि और नहीं कहेगा भाई यूर यू छोड़ने गया भ्रमर है गंदगी एकदम व्यवस्थित और पाचो एकदम सूखा गंदा पूछना है परिधि भी नीचे ठीक है ना काम तो यही ऐसे ही होना चाहिए तरीका तो यही है एक मिनट नाग देवता ने नॉन करा दो एक लोटो भरने पानी नाग देवता माते सेव दो नाग देवता ऊपर अब देखो जोत आगा ले जोत रमान जाता रही पानी हाँ नमोस्तु सर्पेभ्यो जय केचावर्तवी मनोजय अंतरिक्षे जय विदितेभ्यो सर्पेभ्यो नमः शुद्धौ दक्षिणानम समर्पयामि बस अब है थोड़ा पानी हाथ वटी ने कर दो जिको हैंग जातो रे विद्वान जाली में गयो सब पानी रुकियो नहीं है ठीक है जरा भाई इतना लगाना बरक लगाओ भाई नाग दे पहले इतना बरक लगाओ बरक लगाओ ना उनसे भूलो मत है मन सब याद है आप भूल जाओ मन याद रही क्यों मैं भूलू कौन सा इतना बरक में भेजान तो जरूरी है सिंगार में बरक कट गए वो बरक वहां पर गिर गया ये रहा चारों तरफ से इन्हें शिवलिंग रे माते आगे आगे हमें मेन हम लपोट सामने चिपना चाहिए बरक और बरक तैयार है समात में खोल न दू आपने आपरा गिल्ला आता क्या चिकना खोल न दू ता भरो लगा वाला रुई कन्ना ले लो आप हाथ गिल्ला नहीं चाहिए जला दिया हमारा सामने दो मारे भी कही एक्चुअल में वो विंटर महाराज लोटो भरना दिया के पंचम मारे हाल गीला गुड़ा हाथ रहे चिकनाट है हाथ में इतनी की कर आनंद आयोग नहीं विशेष रहा अब आरती बाकी है सिंगार करियो बस हाल सिंगार बाकी है बस आरती करो महाराज ने बुला दो आरती में महाराज ने हाथों करा दो आरती रूई ले लो वासुदेव आप दो जना रूई ले लो जू बरक लगाए खट रूई यूं पुश करना रगड़नी नहीं है देख यूं पुश करनी है रगड़े पाछ उतर जाएगा बरक

अब रुई साहब, अब रुई दबाओ नहीं आप, मैं देखो ब्रेक लगाया आप। हाँ सर, अबे चंदन है, आप चंदन की कटोरी ले लो और ओम बना बना माता है, पतला पतला एकदम गोचाऊ और चंदन रे कटोरी पड़ी इन, आपने गोचो तैयार करने दू इन गोच के औंगली लगा बन जाए ओम और त्रिपुंड। हाँ त्रिपुंड बनाओ सा बरगा बल ओके, ये पानी जड़ तक बंद नहीं बहने सा, जड़ तक अपनों काम सकते सिंगार वालों नहीं बहला। ऊपर पानी इन्हें बंद करना पड़ी, आया था यज्ञ पवित्र और वस्त्र को वस्त्र पहला चंद शिवलिंग रमान लगाओ। ओम यज्ञ पवितम मर्मम पवित्रम मृदापतय सजम पुरस्तात् आयुष्य मुग्रम प्रतिमंच शुभ्रम यज्ञ पवितम बलमस्तु तेजो कोपी न वस्त्रम कोपी न वस्त्र साम सदाशिव देवता भी नम वस्त्रम वस्त्रम समर्पयामि सुजात हो जो नीचे कर दो सेठ बोले ठीक है सुजात हो ज्योति पचे सुजात हो ज्योति का सर्म अवरुधमा सदत्वासो में विभावसो वस्त्रोर वस्त्रम समर्पयामि वस्त्रोर वस्त्रांत चंदन ने टिक्की लगा दिया। बिल पत्र लो, बिल पत्र ना श्रृंगार दे दो जो ना बुलाओ आपका ना बिल पत्र एक एक बिल पत्र लारू तोड़ तोड़ ना देवणी ऐसे ही चला एक ऐसी का डोंगला है क्या ना यू तोड़ प्रो न पर चढ़ा मनो नियम है जिको भी कोई है दो जना सही चला आप रखना क्यों आप इकला श्रृंगार करो बारे हैं बाकी गप्पा मार रहे हैं वो आप आ जाओ वो बढ़िया रहेगा ज्यादा। मैं बोले इन आज तक उन्नीस मैं देख तक बारह कहीं हैंग जिना गप्पा ठोक दिया उबा उबा बिल पत्र दारू डोंकला तोड़ तोड़ने देमना बिल पत्र गणई है हैंगो ना दऊ मार। ओम नमो बिल बिल दोसा ओम नमो बिल बिल ने जगव चिने छ नमो वरमणे छ वरुथि ने छ नमो बेटा बरम तोड़ तोड़ने छड़ा औसत मेरा श्रुदा ये सुश्रेना ये चदमास लो ए टुटुड़ा ऐसा डंटल। ओम नमो बिल बिने चक वचने च नमो वरमणे च वर वस हैंग ऑन बुला दो पर चढ़ा दे के बिल पत्र डंटल टुटुड़ा है चढ़ाओ आप तैयार है तुम। नमो बिल बिने चक वचने च नमो वरमणे च वर उतने च नमो श्रुता यस सुश्रेना और लारू जी का डोंकला वे के उबर जोड़ो ओ तोड़ना आप शिव जी रे माते 1000 बार पाछो दो दो चढ़ा सको इतो शिव ने प्रिय है बिल पत्र 1000 बार और लारू डंटल टुटुड़ो चाहिए जे बस लो साहब टुटुड़ो है चढ़ाओ आप हो डंडो थोड़े ना। ओम नमो बिल बिने च कवचने च नमो वरमिणे च वरुथिने च नमः सुताय सुश्रेनाय च नमः चारों तरफ सजावण है बिल पत्र ओम नमो बिल बिने च कवचने च नमो वरमिणे च वरुथिने च नमः सुताय सुश्रेनाय च नमः लारू डंडा तोड़ तोड़ सजावना है बिल पत्र श्रृंगार करना है और टूटी उड़ा है मारा तैयार करना दिया तू फेंक दे ना चाहे बारह तो मिंदर रमान चाहे पीड़ना उचित नहीं है। अब दो मिनट रमान दो मिनट में अब पर चारों तरफ बॉन्ड है बॉन्ड चारों तरफ बिल पत्र रसिंग मैं दे दी पूरा पैकेट दे दिया मैंने
ये अंग्रेज ने दे जाओ, और शिव जी अंग्रेज ने दे जाओ के बिल पत्र चढ़ा, मैं अकेला मैं करूं कोई बैठा मान दिया ही बंद। ओम नमो बिल्विने च कवचने च नमो वर्मिणे च वरुथिने च नमः सुताय सुश्रेणाय च नमः दुन्दुभ्याय च अनन्याय च त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिदे त्रिजन्म पाप सम्मारम एकम बिल्वम शिवार्पणम। अब नागदेवता ने बैठा भी टिक्की देने, नागदेवता टिक्की दो चंदन दिन ऊपर बैठा दो, नागदेवता माते बिल, नागदेवता माते बिल पत्र चढ़ावना है। हाँ ऊपर बैठ बजाओ जैसा, या नहीं नाग देवता विराजमान करो। मुंडो में राख जो बिल्कुल सीधो, गेट है क्या गेट राम में, दरवाजा है दरवाजा राम में रखी। हाँ बिल्कुल इन माते बिल पत्र रखो दो चार नाग देवता माते। अट निरे पड़िया अटे देखो नीचे बिल पत्र पड़िया, ए भी सब सही है। अबे चंदन कितना, एक मिनट चंदन कितना है थोड़ो ही है, यंग और लाग जी टिक्की चर्चा लाग जी यंग और है ठीक है चलन दो। अबे चल गया बस, अबे माला पहरो माला काटो इन महादेव री, वह पुष्प वह खुला पुष्प थोड़ा सी पुष्पांजलि वास्ते राख दीजो विनय, कोतली में नहीं कोतली गई है। ओम नाना सुगंधिम पुष्पाणी यथा कालो, एक और मोटी माला है शायद महादेव रे, यथा कालो उद्वान चो माल दे जमगा दी निग्राण परमेश्वर साम सदा शिवाय नमो नमः। एता ने पुष्पहारम सब, एक आपको पुष्प रखो बिल पत्र रमाते और एक नाग देवता रे माते, दो पुस्तक ले लो जो कहलावे बज गया चढ़ा दो। सेवंतिका बकुल चंपक पाटलाभ जय पुन्ना गजाति कर वीरल साल पुष्पै बिल्व प्रवाल तुल शीतल मंजरी भी त्वां पूजयामि, हेलो चढ़ो शिवलिंग माते त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीदौ साम सदा शिवाय नमो नमः। इतानि सुगंधि पुष्पाणि समर्पयामि, सुगंधि पुष्पान्ते धूपमाग्रापयामि, प्रत्यक्षम धूप दिव्यताओ भाई चंद्रमा मनसो अगरबत्ती लगो पहुंचा चंद्रमा मन सब शिव जी रखा आरती कर पाची स्टैंड में लगा दीजो, केड़ा स्टैंड अट पड़ी अटकुना में अटो इनमें लगा दीजो ताकि एकदम खुशबू रहे जोरदार मारा जावे तो जीव और रहे मेरे में बढ़ने रख दो बट महादेव जल रही आरती करो जर कौम आ जाए, बट पट्टी है काली पट्टी मात रख दो बट आगे जल रही आरती करो जर कौम आई। धूप माग्रह पयामी धूप दीप बताओ महादेव ने, धूप माग्रह पयामी प्रत्यक्षम दीपम दर्शयामी नमः। चंद्रमा मंद सो जात सो सूर्य जायत सोत्रद्वा युश्च प्राणश्च मुखादग्निर जायत धूपम आग्रापयामि प्रत्यक्षम दीपम दर्शयामि धूपाय नमः दीपाय नमः धूपम आग्रापयामि दीपम दर्शयामि धूपम दीपान्ते नैवेद्यम नैवेदयामि नैवेद्यम लो भाई एक मिनट व्यवस्थित करने आरती तैयार है एडवांस मार तो सब तैयारी है तो श्रृंगार थोड़ा आतू कराऊं जर भाई एडवांस मारे चलिए श्रृंगार किया बिना काम आवे को नहीं। बेलपत्र घने पड़ी ऐसा कोतली भरियोड़ी पड़ी है देख, अरे हूं शिवरे देखो पात्र लगाया गया थाली बटे नीचे आगे और यूं कर दीजिए बटे नीचे। अबे क्यों बिल पत्र भेजा जल रो है को नहीं जल रो है तो थोड़ी ने गन्ना पूछ ले पजा थाली रख दे वणा चौक तो वणा और पात्र है शिव रे भोजन रो आएगी गमन में और बना दीजिए जिसको मैं थाली में बनाई हूं चौकट बनाए देखो करना
कपड़ो बारू का आया बाल ले जाने अटे पड़ियो तो अटिन पड़ियो तो हाँ ओज और एक काम सीधे बढ़िया है तो फटाफट रहा तो काम थारो काम सीधे है सी हो थारो तो काम सीधे है सबो रहा बीच में बस देखियो ले जा थाली लो सा दो महादेव रे भोग रखो यू रियो मिंद पात्र रे माते हाँ अब आगे अब पुष्प मौन है रख दो प्रसाद में पुष्पे नाचाद्य घंटी बजाओ घंटी घंटी बजाओ ओम नाभ्यास इदं दैशकं श्रेष्णोद्यौ समवर्तत बुद्ध्यां भूमृतिता श्रोत्रास्तथा लोकामकल्पयन्तं प्राणाय स्वा गमानाय स्वा मुदानाय स्वा ध्यानाय स्वा व्यानाय स्वाहा मध्ये घंटे नीचे रखो भगवान जी मंदवार करने यूं प्राणाय स्वा यूं देखो प्राणाय स्वा सबानाय स्वा मुदानाय स्वा व्यानाय स्वा व्यानाय स्वाहा दो बार जल गुमान छोड़ो दो बार जल गुमान छोड़ो जल रहो और घंटे नीचे रख दो घंटे नीचे रखो पहला जल रहो जल घुमाओ नट छोड़ दो हाथ में लेने जल यूं हथेली में घुमाओ जल दो बार हाँ नीचे छोड़ दो जमीन माते एक बार और छोड़ो जल लेने नीचे नैवेद्य मध्य पान्यम समर्पयामि उत्तराभूषणम समर्पयामि धनुर मुद्राम ग्रास मुद्राम कृत्वा नैवेद्यम नैवेदयामि नैवेद्यान्ते उत्तराभूषणम भगवान जी मंदमार करो पाचे के एक बार तो थोड़ा और लेना पड़ी भगवान आवे जरा मंदमार करो गे घर कोई मेहमान आवे जरा खास भगवान जी है मंदमार करोगे एक बार तो लो आप थाली रमोना खाली कर दो थाली रमोना रख दो नैवेद्य मुद्राभूषणम समर्पयामि नमः उत्तराभूषणान्ते फलम समर्पयामि लो रखो यः परनीजा बना रूपाया रूपणि बृहस्पतिर वसुता स्थानम चलन प्रमोद दर्पण लो भाई इदं फलम मया देव कापितं पुत्रस्तमा भवेतं सफला जमा जमा भवेतं सफला वाप्ति भवेत् जन्म जन्मने फलम समर्पयामि नमः यः परनीजा बना रूपाया सर वाट ना यः परनीजा बना रूपाया रूपणि बृहस्पतिर वसुता स्थानम चलन प्रमोद इदं फलम है हाँ हाँ तो रख दो आप भगवान ने प्रसाद दे दीजिए रहेंगे मार दीजिए लो इदम फलम मया देव स्नापितम पुरुषोत्तमा भवेतन सफला वाप्तिर भवेर जन्मनि जन्मनि फलम समर्पयामि फलान्ते फल तांबूलानि समर्पयामि नमः लो पुंगी फलम महावीर्यम नाउ एलादि चूर्ण संयुक्तम तांबूलम प्रतिगह्यताम साम सदा शिवाय नमः इन परात में रखो नहीं फल बीज सब इनमें जमाओ लाके कोई भोग लागोड़ा कह रहा परात में बीज रखो जरा जमान रख जो प्रेम पूर्वक अपन न चाहूं कोई जल्दी नहीं है एक माला पड़ी हुई है के मोटी देखो पढ़ो महादेव ने जरा खुला पुस्तक है खुला पुस्तक कार्ड ने जमाओ बढ़िया चारों तरफ बॉन्ड माते है एक माला खोल दो वासुदेव जी ने चारों तरफ पुष्प जमा दो पर एक माला खोल प्री ने पुष्प जमा दो बाजर मा पुष्प जमा ना पुष्प खुला दो इन बॉन्ड रमाते परिधि एक अटे नहीं ऊपर परिधि यान बताओ वासुदेव जी हाँ यूं जमा नाना सुगंधि पुष्पाणी यदा गालोद्वानी च मालदी च बगादी निग्राण पर्व नैवेद्यान नैवेद्यान्ते फलम समर्पयामि या फल निर्जा फला भुक्वाया शुभगुणे बृहस्पतिर वसुता स्थान मुंचन भगवसा फलांत ही फल तामुलानी समर्पयामि नमः पुंगी फल तामुलानी समर्पयामि एलादि चूर्ण संयुक्तम तांबूलम प्रतिगह्यताम तांबूलानि समर्पयामि तांबूलान्ते हिरण्यगर्भनिष्णा द्रव्यम्मा
लो भाई आ दक्षिणा मुट रख दो, हाथ लगाना है गौरी। हिरण्य गर्भाव समावर्तत आग्रे भूत से जात अट प्रसाद रे ऊपर। हिरण्य गर्भाव समावर्तत आग्रे भूत से जात अपतिरेक आसीत सदा दारो पृथ्वी ध्याम तय मांग स्मय देवा। एक आखो पुष्प है विश्व रखे नहीं देती सिंह निग्र माते विश्व रख पुष्प है बिल पत्र माते विश्व वालों को स्पीड गया ऊपर ऊपर सा सिंह निग्र बिल पत्र है ऊपर बिल पत्र ऊपर को सब कटा है। हाँ अटल रखो मालूम है लो सब जगह चढ़ाए भाई और रख दो और लो अब नारियल लेने बैठना है हैंगो हाथ लगाना है एक और नारियल ले लो बैठो नीचे और मैं बोलू छू बोलना मार लार लार है मैं बोल रहा हूँ नीचे बैठना जेटे जेटे बैठा जता स्थान बटे बटे पाचा बैठ जाओ जिया जो स्थान हो जेटे जेटे मैं बटे बटे बैठ जाओ और मैं बोलू छू बोलना है हाँ एक दूजे नहीं हाथ लगा बैठा जी ऊपर हाँ हाथ में रखो नारियल हाथ में रखना भाई एक जनो पकड़ रख लो हाथ में बाकी आएंगे हाथ लगा दो और मैं बोलू छू बोलना इन्हें डायरेक्शन नहीं पड़ता सर नारियल हाँ इन माते थोड़े चावल और पुष्प पंखुड़िया रख दीजो बोलो सा पत्रम पुष्पम फलम तोयम रत्नानि विविधानि च ग्रहण अर्घ्यम मया दत्तम देहि मे वांछितम फलम रूपम देहि जयम देहि भाग्यम भगवन देहि मे पुत्र पौत्रान धनम देहि सर्वान कामाश्च देहि मे फलेन फलितम सर्वम त्रैलोकस्य चराचरम फलस्य अर्घ्य प्रदानेन सफला सन्तु पूर्णा सन्तु मे मनोरथाः गतं पापं गतं दुःखं गतं दारिद्र मेव च आगता सुख संपत्ति पुण्योहम तव दर्शनम। हाँ और नारियल है कैसा आप मस्तक रे हृदय लगा शिव जी रे अर्पण कर दो हैंग ऑन आगे दे दो भाई लोगों ने हृदय रे मस्तक रे लगाने शिव जी रे कने भेंट कर दो सा के शिव आप रो मैं फल भेंट करी और भगवान ने पाचो फल प्रदान कर दे कही आपे तो भगवान को तो मांग सको जगह

महाराज आ जाए, बाद में आरती चालू करो। आरती तैयार है, आलो सब एडवांस सिर्फ एक जोत छोटी बड़ी करनी पे या पांच वाली करनी पे तो देख लो, मारता तैयारी है। हाँ चाहे, हाँ चाहे लो। आप बटागे रखो, देखो कोई गुड़ा दे नहीं, कर दे नहीं, अपना ध्यान दो। सब अगरबत्ती और पछे लगा दीजो, अगरबत्ती और कम पड़े तो पछे और लगा दीजो। आप रख नहीं रखो, और देखो सर एक कपूर आड़े कट नहीं रखे, जिका पत्ता माते एक एक कपूर रखे, जो चार आते तो हाथ बड़ लाग जाए ला। आरती करे ला जी ना पौन रहे पत्ता माते, आपने ध्यान रखना क्यों मैं बोलू आरती हट बैठना है, तो कही है कि भाई हाथ चार रख दे ला तो थाली पे जाए ला गर्मा गर्म, तो पकड़ नहीं सके ला आरती रे। यूं एक एक कपूर सिर्फ पत्ता माते रखना। हाँ सर आप ध्यान रख जो बच्चा वगैरह यूं नहीं किनारे पड़िया चार आते चेहरे वो नहीं, ध्यान रखनी चाहिए एक एक एक एक कपूर। मैं जोधपुर ब्रह्मपुरी सा, आप हुकम।

देवता पुष्प घुमाने वादे माँ चढ़ाओ सब पुष्पे देव माँ महाराज जी दो महाराज जी दे दो हाथ में पुष्प पुष्प दे दो पुष्पे देवता अभिवंदनम आत्म कल्याणार्थे आत्मा अभिवंदनम पुष्प दे दो पंकुड़ी ये शिव जी के ऊपर अर्पण कर दीजिए महाराज आरती अब आप थाली ले महाराज जी आरती सब जिन आरती ले लो आरती ले ले और निश्चय रख दे सी महाराज जल्द आप थाली जल्द आरती करनी है हाँ सर

उजल रो छोटो लगाओ सब जगह पहला मूर्ति है रमा दे सब और पचे सब जगह जन समुदाय खड़ा है भैया रमा ले जी सर पुष्पांजलि ओम यज्ञेन यज्ञमय जन्त देवास्थानि धर्माणि प्रतमान्या सन्नादेह नाकं मैम सचन्द्र यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः ओम राजाधिराजाय प्रसय्यसायिने नमो अयं वैश्वरणाय कुर्महे समे कामान काम कामाय मह्यं कामेश्वरो वैश्वरणो दधातु कुबेराय वैश्वरणाय महाराजाय नमः।

बोलिए श्री दीप नारायण भगवान की। श्री दीप नारायण प्रार्थना के बाद विद्यालय के लघु कार्यक्रम, जब जब धरती पर अज्ञान का अंधकार छाया है तब तब द्वारकाधीश ने अवतार लिया है। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदा

आत्मनम सज्जामि हम। मैं बुलाने जा रहा हूं तृप्ति, निकेश, संतोष, कृष्ण की बाल लीलाओं पर भजन एक गीत है, उस पर नृत्य प्रस्तुत करेंगे, नटकट कानूडो। जन्म जन्म के रिश्ते लेकर सब प्राणी जग में आते हैं, या दोष किसी को मत देना, मुरली श्याम बजाते हैं। सुंदर नृत्य बालिकाओं द्वारा।

0: विद्यालय के बालक बालिकाओं ने श्री कृष्ण भगवान की बाल लीलाओं पर सुंदर नृत्य प्रस्तुत किया। श्री कृष्ण और राधा, श्री कृष्ण और गोपियों का प्रेम निश्चल था कि कागा सब तन खाइयो, चुन चुन खाइयो मांस, बस दो नैना मत खाइयो, जामे पिया मिलन की आस। गोपियों के साथ रास का प्रदर्शन बालिकाओं ने, बालक बालिकाओं ने यहां प्रस्तुत किया। मैं बुलाने जा रहा हूं कक्षा 12वीं की छात्रा निर्मला सांखला को, जो जन्माष्टमी क्यों मनाई जाती है इस विषय पर भाषण करेगी। निर्मला सांखला। इसके बाद तैयार रहें गीता श्लोकों का वाचन करने के लिए कक्षा पंचम के विद्यार्थी। भाषण निर्मला सांखला।
1: हरिओम। आज के इस कृष्ण जन्माष्टमी के पावन पर्व पर उपस्थित पूज्य गुरुदेव श्री महेश्वरानंद जी, प्रेमानंद जी, प्रधानाचार्य जी, प्रधान अध्यापिका जी एवं विद्यालय में उपस्थित मेरे समस्त अध्यापक व अध्यापिकाएं और मेरे भाई बहनों, मैं आपके सामने भगवान श्री कृष्ण के क्रियाकलापों पर प्रकाश डालना चाहती हूँ। भाद्रपद माह की कृष्ण पक्ष अष्टमी की मेघा छंद उस अर्धनिशा का रहस्य शायद प्रकृति के गर्भ में ही था, क्योंकि कौन जानता था कि कंस के कारागार में जन्म लेने वाले दिव्य शिशु को वंश युगों तक प्रेम के संदेशवाहक बन जाएगी। धन्य हुई होगी वह अष्टमी रोहिणी नक्षत्र एवं कृष्ण पक्ष की निशा का चंद्रोदय, जिसमें भगवान विष्णु के पूर्ण अवतार शेक चक्र गदा एवं पद्मधारी चतुर्भुज स्वरूपा मां अवतार श्री कृष्ण के तेजोमय प्रकाश से समूचा कारागार आलोकित हो उठा। ज्ञान मार्ग में ज्ञानी बनकर गीता रच दी तो भक्ति मार्ग में प्रेम की ऐसी सरिताएं बहा दी कि उनकी ब्रह्म के महारस में स्वयं शिव व कामदेव तक निगमन हो गए। योग मार्ग योगेश्वर श्री कृष्ण कहलाए। कृष्ण का जन्म ही नहीं, उनके कर्म भी दिव्य थे। ज्ञान उपासना एवं क्रम कर्म के विशद ग्रंथ गीता के उपदेशक चमत्कारिक बचपन महाभारत के रणनीतिज्ञ जैसे उनके विविध रूप आश्चर्य चकित होने वाले हैं। हर दृष्टि से संपूर्ण कृष्ण की स्त्री समान जीव स्नेह और दुष्ट हंता जैसी गहन लक्ष्य साधक अनंत लीलाएं संदेश देती हैं, जो आज महावतार के रूप में किया योग से योग मार्गियों को संतुष्ट करते हैं। कृष्ण के बखान में असंख्य सरस्वतियां भी असमर्थ हैं, क्योंकि पीताम्बर व मोर मुकुटधारी यशोदा का काना, सुदामा का मित्र, गोपियों का प्रेमी, यादवों का रक्षक, अर्जुन का सखा, रुक्मणी का परमेश्वर, राधा का प्रियतम, दुर्धर राजनीतिज्ञ आदि असंख्य रूपों में विभूषित होकर प्रेम के अनेकानेक भावों की पराकाष्ठा हुआ। यह मुरलीधर, यह लीला अवतार बाल रूप में लड्डू गोपाल जी के रूप में तो राधा के संग निर्वाक संप्रदाय के आराध्य हैं, वहीं दाऊ के साथ जगन्नाथ जी के रूप में करोड़ों जनों की आस्था का केंद्र हैं, तो कहीं श्रीनाथ जी के रूप में अकेले ही विराजमान हैं। कुल मिलाकर इनका जीवन संपूर्णता का प्रतीक है। हरिओम।
0: धरती पर कंस का आतंक बढ़ गया था। उस आतंक को खत्म करने के लिए उनके भांजे के रूप में कृष्ण ने अवतार लिया था। इस कार्यक्रम में पधारे गए सभी आगंतुकों का विद्यालय परिवार हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करता है। बाबूजी महाराज के आदेशानुसार जब उनका आदेश होगा तब प्रधानाचार्य जी महोदय माल्यार्पण करके उनका स्वागत करेंगे। कार्यक्रम की अगली कड़ी में मधुराष्टकम लेकर आ रहे हैं पंचम के विद्यार्थी। कर्मणीय वाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, श्री कृष्ण ने गीता में हम सभी के लिए ये उपदेश दिया है। नन्हे मुन्ने बालक बालिकाएं मधुराष्टकम के रूप में इसे प्रस्तुत कर रहे हैं।

0: विद्यालय के नन्हे मुन्ने बालक बालिकाओं ने
1: जननी भाषा संस्कृत में मधुराष्टकम प्रस्तुत किया। हमारे बीच इस्कॉन अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ की एक सुंदर झांकी जो आप सभी देख रहे हैं मंच के पास है। इस इस्कॉन यानी अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ का एक लघु परिचय करने के लिए मैं मंच पर बुलाने जा रहा हूं इस संघ के सदस्य श्रीमान बजरंगी दास हस्तिनापुर से, श्रीमान ब्रज अंगी दास जी, एक बार जोरदार तालियां बजाएं इनके लिए।
2: हरे कृष्णा। सब बालिका और बालिकाओं को बहुत बहुत धन्यवाद। कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर भगवान श्री कृष्ण बलराम का सुंदर रथ महेशानंद जी आश्रम के अंदर आया है, तो इस पदयात्रा का मैं आपको थोड़ा इंट्रोडक्शन मतलब परिचय कराना चाहूँगा। ये जो रथ देख रहे हैं आप लोग बैलगाड़ी का, दो बैलगाड़ी हमारे साथ, एक भगवान का रथ है और एक इसमें रखते हैं दो बैलगाड़ी, उसमें पांच बैल हैं हमारे साथ। तो ये जो रथ है बहुत दिव्य और बड़ा अद्भुत रथ है। ये जो पदयात्रा है 1984 में द्वारिका पूरी धाम से शुरू हुई थी। द्वारिका गुजरात क्षेत्र में आता है और वहां से शुरू होकर पूरे भारत की पांच परिक्रमा हो चुकी है। पांच मतलब एक भारत का राउंड लगाना, फिर दो ऐसे करके पूरे भारत की पांच राउंड करके, और पिछले 27 सालों से पदयात्रा पूरे भारत भर में भ्रमण कर रही है। और इस पदयात्रा के ऊपर भगवान श्री कृष्ण का विग्रह विराजमान है, और इस तरफ जो है कृष्ण के भैया का नाम क्या था, दाऊजी के भैया कृष्ण कन्हैया, जोर से बोलिए दाऊजी के भैया, बच्चों की आवाज नहीं आ रही है, दाऊजी के भैया कृष्ण कन्हैया, दाऊजी के भैया। तो ये उनके साथ में दाऊजी हैं, बलराम उनके बड़े भाई। तो ये सुंदर रहते, और आगे भक्ति वेदांत स्वामी जी बैठे हैं, इनका जो विग्रह देख रहे हैं, ऐसी भक्ति वेदांत प्रभुपाद इस इस्कॉन संस्था के फाउंडराचार्य हैं ये संस्थापक। तो ये जो रथ है ये स्वामी भक्ति वेदांत ने बोला था कि ये जो रथ है गांव गांव के अंदर ले जाओ और कृष्ण भक्ति का प्रचार करो, भगवत गीता का। तो ये जो पदयात्रा जो है पिछले 27 साल से भारत वर्ष में लगातार बिना रुके हुए भी ये पदयात्रा चल रही है, और ये रथ गांव गांव में जाता है और शाम को प्रोग्राम करते हैं कीर्तन भजन, और उसके बाद फिर लोगों को प्रसाद बांटते हैं और भगवत गीता पे लेक्चर देते हैं। तो ये पदयात्रा पिछले 5 महीने पहले ये पदयात्रा द्वारिका में थी, और द्वारिका से चलते चलते आज आपके ये महेशानंद आश्रम में आया है। और इस पदयात्रा के अंदर 25 भक्त हैं, सब अलग अलग प्रांतों से हैं। जैसे वो एक दो भक्त बैठे हैं हमारे सामने, कोई इसमें बॉम्बे का है, कोई इसमें सूरत का है, मैं दिल्ली हस्तिनापुर से, और इसमें देश विदेश के भी लोग हैं, विदेशी फॉरनर्स। तो इसमें 25 लोग हैं, और ये पदयात्रा इसका उद्देश्य जो है पर्पस, ये इसका उद्देश्य ये है कि भगवान श्री कृष्ण का जो संदेश है, भगवान श्री कृष्ण का संदेश क्या है, तो भगवान श्री कृष्ण का संदेश भगवान ने भगवत गीता में स्वयं दिया है। तो भगवान श्री कृष्ण का संदेश यह है कि सब लोगों को मेरी भक्ति का प्रचार करो, कृष्ण भक्ति का प्रचार करो पूरे विश्व के अंदर। तो ये पदयात्रा जो है पूरे भारत वर्ष में हरि नाम का संकीर्तन प्रचार करती है, लोगों के अंदर जो भगवत भक्ति जागृत कराती है। तो ये जो पदयात्रा है इसका ये परिचय है, और आगे ये पदयात्रा जो है चलती रहेगी। तो इसलिए आप लोग जितने भी यहाँ बालक और बालिका के स्कूल के जितने भी छात्र हैं, ये आप लोग का बड़ा सौभाग्य है, क्योंकि ये जन्माष्टमी का प्रोग्राम यहाँ नहीं मनने वाला था। हम लोग दूसरे गांव है यहाँ पर, जो 6 किलोमीटर है वहां पर। तो गुरुजी ने कहा, यहाँ के स्वामी जी उन्होंने बोला कि ये प्रोग्राम जो है यहाँ करिए तो अच्छा रहेगा, नहीं तो जैसे भगवान की इच्छा। तो देखो आप लोगों का सहयोग, आप लोगों का उत्साह देखकर हमने सोचा चलो यहाँ ही जन्माष्टमी मनानी चाहिए। तो इसलिए आप लोगों का बहुत ही बहुत सौभाग्य है कि भगवान श्री कृष्ण बलराम स्वयं रथ में बैठकर आज इस जन्माष्टमी के पावन अवसर पर आप लोगों को दर्शन दिए। ये आपका सौभाग्य। इसलिए आज के दिन जितना हम भगवान का गुणगान करेंगे, भगवान श्री कृष्ण की उतनी हमको कृपा मिलेगी। तो इसलिए बहुत सुंदर है कि भगवान श्री कृष्ण इस जगत में क्यों आते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं कि दो कारण है मेरे आने के, यदा यदा ही धर्मस्या ग्लानिर्भवति भारता अभ्युक्तानाम अधर्मस्या तदात्मानं सर्वजाम्यहम् परित्राणाय साधुना विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनाय संभवामि युगे युगे। तो श्री कृष्ण इस श्लोक के अंदर ये बताते हैं कि यदा यदा ही, जब और जहां भी अधर्म का क्या होता है, प्रधानता होती है और धर्म की ग्लानी होती है, तब तक मैं अवतार लेता हूं। और परित्राणाय साधुना, जो साधु हैं भगवान के भक्त हैं, उनका क्या है, मैं क्या करता हूं, उनकी रक्षा करता हूं। और दुष्कृताम, जो दुष्ट व्यक्ति हैं उनको क्या करता हूं, मारता हूं। तो 5000 साल पहले दुष्ट व्यक्ति कौन था, कंस, बहुत ऐसे थे शिशुपाल, ऐसे कई राक्षस थे जो राजा कंस के अंडर में थे। तो भगवान ने इनको क्या किया, बिल्कुल सफाया कर दिया। इसलिए बहुत जरूरी है, और आज भी दुष्ट प्रवृत्ति के लोग हैं, तो इसलिए स्वामी जी हैं और हम ये पदयात्रा के माध्यम से कितना प्रचार कर रहे हैं। तो इसलिए भगवान श्री कृष्ण आ जाएं, बहुत धन्यवाद। और वैसे तो आज के दिन अवतार लिए थे, लेकिन स्वयं रथ में बैठ के ही भगवान श्री कृष्ण बलराम का रथ आया है। इसलिए जितना आज भगवान का नाम कीर्तन गुणगान किया जाए, ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। इसलिए सभी लोग एक प्रार्थना करेंगे, हरे कृष्ण महामंत्र, सब लोग हाथ खड़ा करके सब लोग भगवान का नाम लेंगे। देखिए भगवान के हाथ खड़े, सब लोग दोनों हाथ ऐसे खड़िए, सब लोग जितने भी बालिका भगवान के हाथ खड़े, जोर से और प्रेम से श्रद्धा के साथ बोलिए सभी लोग, हरे कृष्णा हरे कृष्णा

0: Krishna, Krishna.
1: Krishna.
0: Hare Hare.
1: Hare Hare.
0: Hare Ram.
1: Hare Ram.
0: Hare Ram.
1: Ram.
0: Ram. Ram.
1: Ram Ram.
0: Hare Hare.
1: Hare Hare.
0: Shri Shri Krishna Bhagwan ki.
1: Jai.
0: Radha Krishna Bhagwan ki.
1: Jai.
0: Sita Ram Lakshman Hanuman ki.
1: Jai.
0: To dhanyavad aap logo ka. Hare Krishna.
2: आप थे ब्रज अंगीदास जी इस्कॉन के सदस्य। आज हमारा बहुत ही सौभाग्य है कि यह सुंदर रथ, आध्यात्मिक रथ हमारे आश्रम में है। हम सभी आश्रमवासी इस्कॉन के सभी सदस्यों का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करते हैं। आप सभी की ओर से एक बार जोरदार तालियां बजाकर इनका हार्दिक स्वागत कराएं। कार्यक्रम की अगली कड़ी में कृष्ण लीला पर एक नाटक का मंचन किया जाएगा, जिसमें भजन है अरे द्वार पालों कन्हैया से कह दो, जिसमें इस भजन में स्वर है भजन गायक श्रीमान अशोक जी चौहान का। अभिनय करेंगे कुलदीप और कक्षा चतुर्थ के बालक बालिकाएं, श्री कुलदीप और चतुर्थ के बालक बालिकाएं। दोस्ती की अनूठी मिसाल कृष्ण सुदामा, इस विषय पर मंचन, नाटक का मंचन किया जा रहा है मंच पर।
3: हेलो हेलो

बोलिए श्री दीपनारायण भगवान की। श्री दीपनारायण प्रार्थना के बाद विद्यालय के लघु कार्यक्रम जब जब धरती पर अज्ञान का अंधकार छाया है तब तब द्वारकाधीश ने अवतार लिया है। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युथानम धर्मस्य तदात्मनम सज्जामि हम। मैं बुलाने जा रहा हूं तृप्ति निकेश संतोष कृष्ण की बाल लीलाओं पर भजन एक गीत है उस पर नृत्य प्रस्तुत करेंगे नटकट कानूड़ो। जन्म जन्म के रिश्ते लेकर सब प्राणी जग में आते हैं या दोष किसी को मत देना मुरली श्याम बजाते हैं। सुंदर नृत्य बालिकाओं द्वारा

0: विद्यालय के बालक बालिकाओं ने श्री कृष्ण भगवान की बाल लीलाओं पर सुंदर नृत्य प्रस्तुत किया। श्री कृष्ण और राधा, श्री कृष्ण और गोपियों का प्रेम निश्चल था कि कागा सब तन खाइयो, चुन चुन खाइयो मांस, बस दो नैना मत खाइयो, जामे पिया मिलन की आस। गोपियों के साथ रास का प्रदर्शन बालिकाओं ने, बालक बालिकाओं ने यहां प्रस्तुत किया। मैं बुलाने जा रहा हूं कक्षा 12वीं की छात्रा निर्मला सांखला को, जो जन्माष्टमी क्यों मनाई जाती है इस विषय पर भाषण करेगी निर्मला सांखला। इसके बाद तैयार रहें गीता श्लोकों का वाचन करने के लिए कक्षा पंचम के विद्यार्थी। भाषण निर्मला सांखला।
1: हरिओम। आज के इस कृष्ण जन्माष्टमी के पावन पर्व पर उपस्थित पूज्य गुरुदेव श्री महेश्वरानंद जी, प्रेमानंद जी, प्रधानाचार्य जी, प्रधान अध्यापिका जी एवं विद्यालय में उपस्थित मेरे समस्त अध्यापक व अध्यापिकाएं और मेरे भाई बहनों, मैं आपके सामने भगवान श्री कृष्ण के क्रियाकलापों पर प्रकाश डालना चाहती हूँ। भाद्रपद माह की कृष्ण पक्ष अष्टमी की मेघा छंद उस अर्धनिशा का रहस्य शायद प्रकृति के गर्भ में ही था, क्योंकि कौन जानता था कि कंस के कारागार में जन्म लेने वाले दिव्य शिशु को वंश युगों तक प्रेम के संदेशवाहक बन जाएगी। धन्य हुई होगी वह अष्टमी रोहिणी नक्षत्र एवं कृष्ण पक्ष की निशा का चंद्रोदय, जिसमें भगवान विष्णु के पूर्ण अवतार शेक चक्र गदा एवं पद्मधारी चतुर्भुज स्वरूपा मां अवतार श्री कृष्ण के तेजोमय प्रकाश से समूचा कारागार आलोकित हो उठा। ज्ञान मार्ग में ज्ञानी बनकर गीता रच दी तो भक्ति मार्ग में प्रेम की ऐसी सरिताई बहा दी कि उनकी ब्रह्म के महारस में स्वयं शिव व कामदेव तक निगमन हो गए। योग मार्ग योगेश्वर श्री कृष्ण कहलाए। कृष्ण का जन्म ही नहीं, उनके कर्म भी दिव्य थे। ज्ञान उपासना एवं क्रम कर्म के विशद ग्रंथ गीता के उपदेशक चमत्कारिक बचपन महाभारत के रणनीतिज्ञ जैसे उनके विविध रूप आश्चर्य चकित होने वाले हैं। हर दृष्टि से संपूर्ण कृष्ण की स्त्री समान जीव स्नेह और दुष्ट हंता जैसी गहन लक्ष्य साधक अनंत लीलाए संदेश देती हैं, जो आज महावतार के रूप में किया योग से योग मार्गियों को संतुष्ट करते हैं। कृष्ण के बखान में असंख्य सरस्वतियां भी असमर्थ हैं, क्योंकि पीताम्बर व मोर मुकुटधारी यशोदा का काना, सुदामा का मित्र, गोपियों का प्रेमी, यादवों का रक्षक, अर्जुन का सखा, रुक्मणी का परमेश्वर, राधा का प्रियतम, दुर्धर राजनीतिज्ञ आदि असंख्य रूपों में विभूषित होकर प्रेम के अनेकानेक भावों की पराकाष्ठा हुआ। यह मुरलीधर, यह लीला अवतार बाल रूप में लड्डू गोपाल जी के रूप में तो राधा के संग निर्वाक संप्रदाय के आराध्य हैं, वहीं दाऊ के साथ जगन्नाथ जी के रूप में करोड़ों जनों की आस्था का केंद्र हैं, तो कहीं श्रीनाथ जी के रूप में अकेले ही विराजमान हैं। कुल मिलाकर इनका जीवन संपूर्णता का प्रतीक है। हरिओम।
0: धरती पर कंस का आतंक बढ़ गया था, उस आतंक को खत्म करने के लिए उनके भांजे के रूप में कृष्ण ने अवतार लिया था। इस कार्यक्रम में पधारे गए सभी आगंतुकों का विद्यालय परिवार हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करता है। बाबूजी महाराज के आदेशानुसार जब उनका आदेश होगा तब प्रधानाचार्य जी महोदय माल्यार्पण करके उनका स्वागत करेंगे। कार्यक्रम की अगली कड़ी में मधुराष्टकम लेकर आ रहे हैं पंचम के विद्यार्थी। कर्मणीय वाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, श्री कृष्ण ने गीता में हम सभी के लिए ये उपदेश दिया है। नन्हे मुन्ने बालक बालिकाएं मधुराष्टकम के रूप में इसे प्रस्तुत कर रहे हैं।

0: विद्यालय के नन्हे मुन्ने बालक बालिकाओं ने
1: जननी भाषा संस्कृत में मधुराष्टकम प्रस्तुत किया। हमारे बीच इस्कॉन अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ की एक सुंदर झांकी जो आप सभी देख रहे हैं मंच के पास है। इस इस्कॉन यानी अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ का एक लघु परिचय करने के लिए मैं मंच पर बुलाने जा रहा हूं इस संघ के सदस्य श्रीमान बजरंगी दास हस्तिनापुर से, श्रीमान ब्रज अंगी दास जी, एक बार जोरदार तालियां बजाएं इनके लिए।
2: हरे कृष्णा। सब बालिका और बालिकाओं को बहुत बहुत धन्यवाद। कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर भगवान श्री कृष्ण बलराम का सुंदर रथ महेशानंद जी आश्रम के अंदर आया है, तो इस पदयात्रा का मैं आपको थोड़ा इंट्रोडक्शन मतलब परिचय कराना चाहूँगा। ये जो रथ देख रहे हैं आप लोग बैलगाड़ी का, दो बैलगाड़ी हमारे साथ, एक भगवान का रथ है और एक इसमें रखते हैं दो बैलगाड़ी, उसमें पांच बैल है हमारे साथ। तो ये जो रथ है बहुत दिव्य और बड़ा अद्भुत रथ है। ये जो पदयात्रा है 1984 में द्वारिकापुरी धाम से शुरू हुई थी। द्वारिका गुजरात क्षेत्र में आता है और वहां से शुरू होकर पूरे भारत की

0: बैठे हैं, इनका जो विग्रह देख रहे हैं, ऐसी भक्ति वेदांत प्रभुपाद इस इस्कॉन संस्था के फाउंडराचार्य हैं, ये संस्थापक। तो ये जो रथ है, ये स्वामी भक्ति वेदांत ने बोला था कि ये जो रथ है गांव गांव के अंदर ले जाओ और कृष्ण भक्ति का प्रचार करो, भगवत गीता का। तो ये जो पदयात्रा जो है पिछले 27 साल से भारतवर्ष में लगातार बिना रुके हुए भी ये पदयात्रा चल रही है, और ये रथ गांव गांव में जाता है और शाम को प्रोग्राम करते हैं कीर्तन भजन, और उसके बाद फिर लोगों को प्रसाद बांटते हैं और भगवत गीता पे लेक्चर देते हैं। तो ये पदयात्रा पिछले 5 महीने पहले ये पदयात्रा द्वारिका में थी, और द्वारिका से चलते चलते आज आपके महेशानंद आश्रम में आया है। और इस पदयात्रा के अंदर 25 भक्त हैं, सब अलग अलग प्रांतों से हैं। जैसे वो एक दो भक्त बैठे हैं हमारे सामने, कोई इसमें बॉम्बे का है, कोई इसमें सूरत का है, मैं दिल्ली हस्तिनापुर से, और इसमें देश विदेश के भी लोग हैं, विदेशी फॉरनर्स। तो इसमें 25 लोग हैं। और ये पदयात्रा, इसका उद्देश्य जो है पर्पस, ये इसका उद्देश्य ये है कि भगवान श्री कृष्ण का जो संदेश है, भगवान श्री कृष्ण का संदेश क्या है, तो भगवान श्री कृष्ण का संदेश भगवान ने भगवत गीता में स्वयं दिया है। तो भगवान श्री कृष्ण का संदेश यह है कि सब लोगों को मेरी भक्ति का प्रचार करो, कृष्ण भक्ति का प्रचार करो पूरे विश्व के अंदर। तो ये पदयात्रा जो है पूरे भारतवर्ष में हरि नाम का संकीर्तन प्रचार करती है, लोगों के अंदर जो भगवत भक्ति जागृत कराती है। तो ये जो पदयात्रा है इसका ये परिचय है, और आगे ये पदयात्रा जो है चलती रहेगी। तो इसलिए आप लोग जितने भी यहाँ बालक और बालिका के स्कूल के जितने भी छात्र हैं, ये आप लोग का बड़ा सौभाग्य है, क्योंकि ये जन्माष्टमी का प्रोग्राम यहाँ नहीं मनने वाला था। हम लोग दूसरे गांव है यहाँ पर, जो 6 किलोमीटर है वहां पर। तो गुरुजी ने कहा, यहाँ के स्वामी जी, उन्होंने बोला कि ये प्रोग्राम जो है यहाँ करिए तो अच्छा रहेगा, नहीं तो जैसे भगवान की इच्छा। तो देखो आप लोगों का सहयोग, आप लोगों का उत्साह देखकर हमने सोचा चलो यहाँ ही जन्माष्टमी मनानी चाहिए। तो इसलिए आप लोगों का बहुत सौभाग्य है कि भगवान श्री कृष्ण बलराम स्वयं रथ में बैठकर आज इस जन्माष्टमी के पावन अवसर पर आप लोगों को दर्शन दिए, ये आपका सौभाग्य। इसलिए आज के दिन जितना हम भगवान का गुणगान करेंगे, भगवान श्री कृष्ण की उतनी हमको कृपा मिलेगी। तो इसलिए बहुत सुंदर है कि भगवान श्री कृष्ण इस जगत में क्यों आते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं कि दो कारण है मेरे आने के, यदा यदा ही धर्मस्या ग्लानिर्भवति भारत अभ्युक्तानाम अधर्मस्या तदात्मानं सर्वजाम्यहम्, परित्राणाय साधुना विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनाय संभवामी युगे युगे। तो श्री कृष्ण इस श्लोक के अंदर ये बताते हैं कि यदा यदा ही, जब और जहां भी अधर्म का क्या होता है, प्रधानता होती है और धर्म की ग्लानि होती है, तब तक मैं अवतार लेता हूं। और परित्राणाय साधुना, जो साधु हैं भगवान के भक्त हैं, उनका क्या है, मैं क्या करता हूं, उनकी रक्षा करता हूं। और दुष्कृताम, जो दुष्ट व्यक्ति हैं उनको क्या करता हूं, मारता हूं। तो 5000 साल पहले दुष्ट व्यक्ति कौन था, कंस, बहुत ऐसे थे शिशुपाल, ऐसे कई राक्षस थे जो राजा कंस के अंडर में थे। तो भगवान ने इनको क्या किया, बिल्कुल सफाया कर दिया। इसलिए बहुत जरूरी है, और आज भी दुष्ट प्रवृत्ति के लोग हैं, तो इसलिए स्वामी जी हैं और हम ये पदयात्रा के माध्यम से कितना प्रचार कर रहे हैं। तो इसलिए भगवान श्री कृष्ण आज आए, बहुत धन्यवाद। और वैसे तो आज के दिन अवतार लिए थे, लेकिन स्वयं रथ में बैठ के ही भगवान श्री कृष्ण बलराम का रथ आया है। इसलिए जितना आज भगवान का नाम कीर्तन गुणगान किया जाए, ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। इसलिए सभी लोग एक प्रार्थना करेंगे, हरे कृष्ण महामंत्र, सब लोग हाथ खड़ा करके सब लोग भगवान का नाम लेंगे। देखिए भगवान के हाथ खड़े, सब लोग दोनों हाथ ऐसे खड़िए, सब लोग जितने भी बालिका भगवान के हाथ खड़े, जोर से और प्रेम से श्रद्धा के साथ बोलिए सभी लोग, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे राम, हरे राम, राम राम, हरे हरे। श्री श्री कृष्ण भगवान की, राधा कृष्ण भगवान की, सीताराम लक्ष्मण हनुमान की। तो धन्यवाद आप लोगों का, हरे कृष्णा।
1: आप थे ब्रज अंगीदास जी, इस्कॉन के सदस्य। आज हमारा बहुत ही सौभाग्य है कि यह सुंदर रथ, आध्यात्मिक रथ हमारे आश्रम में है। हम सभी आश्रमवासी इस्कॉन के सभी सदस्यों का हार्दिक अभिनंदन।

0: अभिनंदन हार्दिक स्वागत करते हैं आप सभी की ओर से, एक बार जोरदार तालियां बजाकर इनका हार्दिक स्वागत कराएं। कार्यक्रम की अगली कड़ी में कृष्ण लीला पर एक नाटक का मंचन किया जाएगा, जिसमें भजन है अरे द्वारपालों कन्हैया से कह दो, जिसमें इस भजन में स्वर है भजन गायक श्रीमान अशोक जी चौहान का। अभिनय करेंगे कुलदीप और कक्षा चतुर्थ के बालक बालिकाएं। श्री कुलदीप और चतुर्थ के बालक बालिकाएं। दोस्ती की अनूठी मिसाल कृष्ण सुदामा, इस विषय पर मंचन, नाटक का मंचन किया जा रहा है मंच पर।
1: हेलो

उनका परम सखा मित्र सुदामा अपने मित्र से मिलने जा रहे हैं और महल के बाहर द्वारपाल कृष्ण भगवान के अंगरक्षक उनके सेवक उन्हें बाहर ही उनकी गरीब स्थिति को देखकर उन्हें रोक लेते हैं और उस समय निर्धन सुदामा विप्र सुदामा कृष्ण भगवान से और उनके द्वारपालों से क्या प्रार्थना करते हैं। बड़े आनंद के साथ में इस भजन और इस नाटक मंचन का आप सभी दर्शन करेंगे और हमारे छोटे छोटे बाल कलाकारों को प्रोत्साहन के साथ में समस्त भक्त पधारे हुए आशीर्वाद प्रदान करेंगे। इसी आशा के साथ में एक बार जोरदार जयकारा भगवान श्री कृष्ण का। बोली कृष्ण का नहीं आ

0: भगवान की जय हो।
1: विद्यालय के नन्हे मुन्ने बालक बालिकाओं ने कृष्ण सुदामा की दोस्ती की सुंदर मिसाल मंच

इसे यूं ही न खोना कभी, क्योंकि बार बार सच्ची नहीं मिलती है दोस्ती, बार बार सच्ची नहीं मिलती है दोस्ती। लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में दोस्ती के मायने कुछ बदल गए हैं। दोस्त दोस्त को धोखा देते हैं कि दोस्तों में जिस किसी दिन सिर फिरा हो जाऊंगा, दोस्तों में जिस किसी दिन सिर फिरा हो जाऊंगा, नाम पर इंसानियत के मकबरा हो जाऊंगा, मेरी सुखी टहनियों को काटने वाले सुन, जड़ अगर मेरी जिंदा रही तो फिर हरा हो जाऊंगा, फिर हरा हो जाऊंगा। कृष्ण सुदामा की दोस्ती को देखते हुए हम सभी आज प्रण लेते हैं कि हम भी आपस में भाईचारा, आपस में दोस्ती बनाए रखेंगे। अगर किन्हीं कारणों से हमारे बीच कोई खटास पड़ गई है तो आज के इस सुंदर माहौल में कृष्ण जन्मोत्सव पर हम उस खटास को दूर करना चाहेंगे। सभी के दिलों में सद्भावना रहे, सभी के दिलों में दोस्ती रहे एक दूसरे के प्रति। नन्हे मुन्ने बालक बालिकाओं के लिए आप सभी की ओर से एक बार जोरदार तालियां बजाएं। कार्यक्रम की अगली कड़ी में एक भजन, सांवरा आवो तो सरी, नन्ही बालिका ममता कंवर द्वारा। कक्षा चतुर्थ की छात्रा ममता कंवर कृष्ण कन्हैया को उल्हाना दे रही है हमारे इस कार्यक्रम में आने के लिए, सांवरा आवो तो सरी, एक मीरा के रूप में।

कृष्ण जन्मोत्सव पर बड़े सुंदर कार्यक्रम छोटे छोटे बाल कलाकारों ने आपके समक्ष प्रस्तुत किए हैं और प्रधानाचार्य जी महोदय के आदेश पर एक दो भजन की प्रस्तुति कर रहा हूं। समस्त पधारे हुए संत महात्मन विराजित समस्त अनंत कोटि संत पदयात्रा से हमें लाभान्वित करने वाले समस्त संतगण आप सभी का मंदिर परिसर में, आश्रम परिसर में और विद्यालय के समस्त बालक बालिकाओं के तरफ से बहुत हार्दिक अभिनंदन स्वागत है। आपकी सेवा में, आपके चरण कमलों में एक दो भजन प्रस्तुत कर रहा हूं, स्वीकार करें और कृष्ण भक्ति का बड़ा मधुरतम आनंद लें। मीराबाई जो कृष्ण भक्ति में लीन थी, लीन हो गई और हमारी देसी जागरणी भाषा में अगर कहूं तो मीराबाई अनंत क्यों भक्ता में भीखो गणो पड़ियो करे, भक्ति में भांज पड़ने वास्ते भगवान परीक्षा भी ले तो राणा जी रे साथे मीराबाई रे लगन हुआ और राजसी ठाट बाट रे अनबान रे शान रे विरुद्ध जब भी भक्ति पद पर निर्वाण पद पर चढ़ गया तो राणो जी ने बिल्कुल अनुचित लागो के कंठी माला सब छोड़ छटकर आप नवलख हार पैर सको तो कई प्रकार का विघ्न पड़िया, लेकिन मीराबाई आपरी भक्ति नहीं छोड़ी और कृष्ण भगवान से अरदास करता। वॉल्यूम थोड़ा बढ़ा के रखो, कम मत करो, तो कहीं प्रार्थना करें।

तो अनेकों अनेक विघ्न पड़ता भी मीराबाई भक्ति पद नहीं छोड़े और कहीं अरदास करे, प्रार्थना करे, बोले अरे निंदिया करे वो जाने करवा दो। देखो भक्ति विश्वर भजन है, बड़े आनंद से सुने और भजन में आनंद आए तो तालियों का साथ जरूर सभी बालक बालिकाएं जरूर दें।

थी वाणी और कागला उड़े तो वीरा। मीरा भाई ने सत्संग में बैठने वाले और सुनने वाले सभी भावार्थियों को लाभार्थियों को कोयल के समान माना, क्योंकि सत्संग में बैठकर हमेशा मधुर वाणी अपने श्रीमुख से उच्चारण होती है, ये सत्संग का प्रभाव है। थोड़ी सी वॉइस क्वालिटी बढ़ा दीजिए, आवाज बैठ जाएगी, मेरी मेरी बैठ जाएगी आवाज। तो मीरा भाई ने सत्संग में बैठने वाले सभी लाभार्थियों को कोयल बताया, और जो सत्संग नहीं सुन सकते, जो बैठ नहीं सकते, उनको कौवा बताया। तो कोयल की वाणी तो सुननी है और कौओं को उड़ा देना है।

0: बोले श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय हो।
1: अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कलाकार असोई चौहान के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाएं। इस्कॉन के सदस्यों को मैं मंच पर आमंत्रित कर रहा हूं एक सुंदर कीर्तन के लिए। सुंदर कीर्तन के लिए इस्कॉन के सदस्य, इनके लिए अग्रिम जोरदार तालियां बजा दें एक बार।

कृष्ण की भक्त मीरा को आप सभी की ओर से जोरदार तालियां बजाएं।

0: हरि बोल, हरे हरे।
1: छोटा सा वायर, छोटा सा
2: मैं गाऊंगा ना। तो स्टार्ट कराऊंगा,
1: स्टार्ट है इधर से लगा। एक स्टैंड हो रहा
0: है। हरे कृष्णा,
1: इसको लगाओ ना। हाँ तो तुम इसको दे दो, सचिव इसको लिया, इसको लिया। ला लगा।
0: हरे हरि बोल, हरे हरे।
1: हरे कृष्ण, हरे कृष्ण,
3: हरि ओम।
1: कृष्ण जी का नाम है।
0: हरि ओम, हरे कृष्ण।
1: विपुल तुम थोड़ा इधर आ जाओ, दिख नहीं रहा पब्लिक को, इधर आ
0: जाओ। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। साउंड, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्णा। ओ आप लोग पहले थोड़ा सा भगवान का कीर्तन किया जाए। कीर्तन मतलब हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन। तो आप लोग भी सब मेरे साथ गाएंगे, सब लोग? तो बहुत सरल है, हरे कृष्ण महामंत्र लिखा हुआ है रथ के यहां पर। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम राम हरे हरे। याद हो जाएगा आप लोगों, सब लोग पीछे से गा सकते हैं। नमो विष्णु पदाय कृष्ण प्रसाय भूतले श्रीमते लोकनाथ स्वामी, नमो विष्णु पदाय कृष्ण प्रसाय भूतले भक्ति विदान स्वामी नामिने, नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य दस्तानी। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवशदि गौर भक्तवृंद। एक बार सभी लोग प्रार्थना करिए, हाथ उठा के सभी लोग बोलिए हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। तो ये जो हरे कृष्ण महामंत्र है, हरे मतलब राधा, हरे कृष्ण का मतलब होता है हरे कृष्णा राधा जी, और कृष्ण का मतलब जो सर्व आकर्षक भगवान, और राम जो शब्द इसमें आया है, राम का अर्थ है जो हमें आनंद देता है, सुख देता है। तो ये हरे कृष्ण महामंत्र भगवान का नाम इतना शक्तिशाली है कि जब ये नाम का जब कीर्तन होता है तो बड़े बड़े लोग इसमें तर जाते हैं। जब भगवान रामचंद्र जी अयोध्या पे पुल बांध रहे थे, अयोध्या से गए थे सेतु बंधन के लिए, तो इतने बड़े बड़े जो पहाड़ थे, इतने बड़े बड़े पहाड़ कैसे तैर रहे थे मालूम है? किसकी शक्ति से? उस पर क्या लिखा हुआ था? राम। तो भगवान का राम नाम इतना शक्तिशाली है, बड़े बड़े पत्थर तैर जाते हैं, तो मनुष्य का उद्धार क्यों नहीं होगा? मनुष्य भी तैर सकता है। तो इसलिए आप लोगों से निवेदन है, पहले हम गाएंगे और फिर आप गाइए, और बहुत सरल ट्यून है, इसकी ट्यून इस प्रकार रहेगी,

अरे आप गा सकते हैं पीछे से ऐसे सब लोग? तो बहुत सरल है, पहले मैं गाऊं, हमारे भक्त लोग गाएंगे, और जब ये स्टॉप हो जाए फिर आप गाना। ताली भी बजाइए आप लोग, और लास्ट में आप लोगों को डांस कराएंगे। आप लोग सब आज भगवान का जन्मदिन है, नाचेंगे ना?

बैठो। अच्छा वहां तो बच्चे आएंगे, वो क्या करेंगे, रासलीला, कोई बात नहीं, आप लोग यहाँ आ जाओ, यहाँ बैठ जाओ, यहाँ बैठो, आ जाओ। बहुत अच्छा कीर्तन किया। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर होई भव पारा। भगवान का नाम स्मरण, भगवान के नाम का कीर्तन ही कलयुग में इस भयंकर कलिकाल समुद्र से तैरने का मात्र साधन है। जहां भगवान के नाम का कीर्तन होता है वहां स्वयं भगवान आकर के सुनते हैं। नारद ने कहा भगवान को, पूछा कि हे प्रभु, जब भी मैं यहां वैकुंठ में आता हूं, क्षीर सागर में आप यहां विराजमान हैं, योगी ध्यान करते हैं हृदय में, तो योगी कहते मेरे हृदय में विराजमान है, भक्त लोग पूजा पाठ कीर्तन करते हैं, तो भगवान कहते हैं कि न हम वसामि वैकुंठे, न योगी न हृदय, मैं तो वहां रहता हूं जहां मेरे भक्त मेरा नाम का कीर्तन स्मरण करते, मैं वहां रहता हूं। नारद, न मैं वैकुंठ में हूं, न कोई योगियों के हृदय में, लेकिन जहां मेरा प्रेम से, भाव से, भक्ति से जो मेरे नाम का स्मरण करते हैं, कीर्तन करते हैं। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, त्रेता युगों के अंदर मानव जाति के अंदर ज्ञान, तप और त्याग बहुत था, लेकिन कलयुग में न तो ज्ञान रहा है, न तप रहा है, न त्याग रहा है, तो मानव की शक्ति दिन प्रतिदिन कलयुग में क्षीण होती जा रही है। मनुष्य की अवस्था, आयु घटती जा रही है, तो समय जा रहा है, तो इस समय का सदुपयोग करने के लिए सुगम साधन भक्ति योग है। ऐसे तो कई प्रकार के योग हैं, लेकिन मुख्य चार प्रकार के योग ऋषि मुनियों ने बताया। ऐसे भगवान कृष्ण स्वयं अपने मुखारबिंद से 18 प्रकार का योग बताया, क्योंकि हमारे धार्मिक ग्रंथ जिसके लिए हमारे संत महंत और हिंदू जनता जो है भारत सरकार से मांग कर रहे हैं कि गीता को हमारा राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित करें, मान्यता दे। बहुत चल रहा है, लेकिन भगवान कृष्ण की जब परम कृपा होगी तब होगा, क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर ज्ञान की कमी नहीं है, हिंदुस्तान के अंदर अवतारों की कमी नहीं है, हिंदुस्तान के अंदर महान ईश्वरीय विभूतियों का अवतार हुआ है अनगिनत, और कैसे एक हिंदुस्तान में शायद ही कोई एक ऐसा गांव होगा जहां पर कोई संत महात्मा का अवतार नहीं हुआ हो। किसी ने कहा है, चंदन है मेरे देश की माटी
और तपोभूमि हर ग्राम है। चंदन है मेरे देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है। हर बाला है देवी की प्रतिमा और बच्चा बच्चा राम है। तो इतना विद्या का खजाना, जहां ज्ञान विज्ञान की उत्पत्ति हुई, जहां योग क्रियाएं, तंत्र मंत्र यंत्र ग्रंथ भाषा भी, जो इसको हम मानव के लिए भाषा है, वो भी भारत से बनी है, संस्कृतियां भारत से निकली हैं। लेकिन हम भारतीय हमारी संस्कृति को छोड़ के दूसरी तरफ भाग रहे हैं। तो हमारे ऋषि मुनियों ने इतने ग्रंथ लिखे हैं, अरे इतने ग्रंथ हैं कि अगर हम 10 जन्म तक उसका अध्ययन करें तो भी वो पूरा नहीं होगा। इतनी हमारी पुस्तकालय जो भारत के अंदर है, बड़े बड़े ऋषि मुनियों के, वैज्ञानिकों के लिखा हुआ ग्रंथ पड़े हैं, लेकिन आजकल के सीमित विचारों वाले लोगों का कहना है कि हमारे तुम्हारे धर्म की कौन सी किताब है, बस इतना ही बोलो। तो जो सिख जो है वो भी हिंदू ही है, लेकिन उन्होंने गुरु ग्रंथ साहब को आगे कर दिया कि हमारी धार्मिक बुक का, पुस्तक का कौन सी, गुरु ग्रंथ साहब। मुसलमानों ने कुरान लिख दिया कि हमारी धार्मिक किताब जो है वो कुरान है, इसके आगे पीछे कुछ नहीं। ग्रंथ लिखा है तो कहा कि बस इसके बाद में कोई गुरु नहीं, वही जाकर के चैप्टर बंद कर दिया, अध्याय बंद कर दिया। और ईसाइयों ने भी बाइबल लिखी, बोला कि बस यही हमारा लास्ट है, फर्स्ट एंड लास्ट। अब इसके आगे चाहे कितने ही सिद्ध पुरुष हो, लेकिन हम उसको इसमें शामिल नहीं करेंगे। यहूदियों के भी जो उनका ग्रंथ है, टोरा करके उनका नाम है, वो भी उनका है। अब बात रह गई हिंदुस्तान के अंदर, तो हिंदुओं के तो इतने धार्मिक ग्रंथ हैं, इतने कुछ कहा ही नहीं जाए। एक ग्रंथ में से आप 10,000 बाइबल पैदा कर सकते हो, लिख सकते हो, इतना खजाना, अथक खजाना लिखा हुआ है। क्योंकि टंकी का पानी तो घट जाता है, लेकिन जिसकी गंगा से स्रोत सीधा जुड़ा हुआ है वो कभी नहीं घटता है। फिर भी वो चाहते हैं कि आप हिंदू जब कभी सप्त लेते, क्या कहते हैं, शपथ लेते हो तो आपके किस ग्रंथ पे हाथ लगाओगे। तो कृष्ण को मानने वाला तो रामायण बताते, गीता बताते हैं, और राम, भगवान राम सीताराम को मानने वाले वो रामायण बताते हैं, और पंडित लोग जो है उनको तो पता ही नहीं कहीं बतावा, क्योंकि वो तो वेद देखे ही को नहीं। पंडित केवे का है गुरु नानक साहब ने, जैसे पंडित वेद विहीना। अरे वेद देख क्यों भी नहीं, हाल वेद का ज्ञान भी नहीं और पंडित कहलाता है। लेकिन फिर भी हमारे पंडित जो है वो धर्मात्मा है और महान आत्माएं हैं, वो कहेंगे हमारा वेद है। तो झगड़ा हमारा आपस में है कि कौन से ग्रंथ को रखें। तो जिस समय समुद्र मंथन हुआ था, और समुद्र मंथन के अंदर एक कामधेनु भी निकली थी, 14 रत्नों में से एक कामधेनु रत्न है। और कामधेनु का अर्थ यही है कि जो कुछ भी हम कामना विचार करते हैं वो सिद्ध हो,
हमेशा दूध देती है और मांगो सो ही दे दे, हमेशा अच्छा ताजा दूध। तो आज इस कलयुग के अंदर भागवत गीता एक वह कामधेनु है जो कि हमेशा उसी श्लोक को पढ़ो फिर भी नया ज्ञान प्राप्त होता रहेगा। सही बात है कि नहीं? तो भागवत गीता को राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित करना चाहिए और ये हमारा आज इस जन्माष्टमी पर आराध्य भगवान कृष्ण से करवद प्रार्थना है कि ऐसी कृपा करो कि भागवत गीता को राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित किया जाए, हो जाए। रामायण भी एक ऐसा ज्ञान है। एक आदमी मेले गियो, मेले जा रही हो तो गांव वालों कोई जने कोई दूजो आदमी बैठो तो क्या कटे जा रहे के बादशाह मैं तो जाऊं उठे हो इतरो मेलो देखा ने अच्छा हो इतरो मेलो देखा जाए कि हाँ के भाई ले थने 5 रुपया देऊं कहीं लाऊं बादशाह थारे के मारे एक यूं करो कि काश ले जो मुंडो देखा ने के हुनियो के मेला में काश परा मिले टिकट पहले दुकानों है थी जने वो 5 रुपया जेब में गाल ने वो गियो सोच इतरो मेलो देखा ने मेला देखा फिर तो एक बार दुकान है थी कहीं क्या नहीं चूड़ियां हुड़ियां बेचे कहीं के मणियारा क्या कौन के लखारा ने मणियारा ने तो लखारा तो लाखों में रह गया मणियारा मणि मणि में रह गया मणि बढ़ावे मणियारा तो देखियो कांच नो टुकड़ो हाथ में ले दिए वो कहीं है क्यों कांच है रे क्या अच्छा ठीक है वो आदमी जो बटे मेले गियो तो वो थोड़ा समझदार है तो पचे गियो आगे जने एक किताब की दुकान आई कहीं आई किताबों की दुकान बटे धर्म धार्मिक ग्रंथ मिले जो वह दुकान है थी गीतापुर गीता प्रेस गोरखपुर बटे गियो ने देखी नई नई नई किताबों एक लिख पड़ी बटे घुटको कहीं पढ़ियो वो खावारो गुटको नहीं रामायण किताब नैनी है नहीं वह नहीं मैंने गुटको के रामायण कहीं गुटको खावारो गुटको नहीं वो खा जी वो तो खा मार दे वो अमर कर दे फर्क कहीं है दो ही गुटको में वो गुटको तो खाए वो तो मर जाई और वो गुटको ले वो अमर भी जाई कि कहीं पया लागी सा के पया तो कहीं 2 रुपया के वाह 2 रुपये में लिया 5 रुपये दिया था वो आदमी बैठो बैठो जाट भाई कह के मारे आज काश आए ने मारा मुंडो देखूं आज काश आए ने मारो मुंडो देखूं बस 6 बजे ने वो मेला आई गयो क्या मेला आयो वो हज तो मेलो की क्या की नाव भरीजे शीतला माता रो आज देखो शीतला माता शीतल वे जाए ठंडा आराम आनंद मिले वो बैठो बैठो डोकरो कहवे के काई भाई मारे काश लायो रे के हाँ बढ़िया अरे जने थारा जार तो कोई दूजो मैं जिंदगी में मारा आए एक इच्छा है कि मैं कोई काश मिल जाए तो मारो ही मुंडो देखूं की कर देख इसको नहीं आज जने वो झोली में हाथ गाल नहीं अपने हैंग आया कि भगवान कृष्ण के भक्त लोग इनारे झोली में हमेशा गीता रहे कोई आवे तो ले प्रसाद तो कार्ड ने कियो के गुटको ओ काच लो अरे अब तो कोई किताबे नहीं रे काच कटे कि जो तुम देखना चाहते हो ना थे जो देखना इन्हें माय हैंग लिखियो तो थे काड़ा हो तुम्हारी सत्यता इसके अंदर में है किसमें रामायण में तो रामायण आराध्य भगवान राम जिसको मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम वो भगवान राम ने ऐसे लीलाएं करी जैसे कृष्ण ने भी की थी और कहा कि हे मन मानव
ये तुम्हारे जीवन का पूरा दृश्य देख सकता है, वो सच्चो गुटको है। तो भाई हिंदुस्तान में ज्ञान की कमी नहीं है, लेकिन प्रयास चल रहा है कि भागवत गीता को राष्ट्रीय ग्रंथ के रूप में मान्यता मिलनी चाहिए। तो आप सभी को बहुत बहुत साधुवाद। और आज इस पुण्य पावन पर्व जन्माष्टमी के दिन भगवान कृष्ण ने शुभ अवतार लिया, और कई लीलाएं अवतार से पहले भी हुई, उनकी टाइम भी थी और अभी भी हो रही है। तो वो एक दो बच्चे और कुछ दिखाना चाहते हैं तो उनकी झांकी

0: विश्व गुरु महाराज की गुणगान हम जितना करें वो कम है कि सात समंदर स्याही करो, सात समंदर स्याही करो, लेखनी सब बनराय, सब धरती कोरा कागद करो, तो भी गुण तो भी गुरु गुण लिखिया न जाय, तो भी गुरु गुण लिखिया न जाय। कि प्रथमे प्रणव गुरु के पाया, जिन मोहि आत्म ब्रह्म लखाया, सतगुरु शब्द ब्रह्मा के ते बुझाया, तुहु लोक दीपक मनी सुइया, तुहु लोक दीपक मनी सुइया। विश्व गुरु की महिमा का बंधु किस विद करूं बखान, विश्व गुरु की महिमा का बंधु किस विद करूं बखान, गुरुदेव है ब्रह्म समान, गुरुदेव है ब्रह्म समान। बहुत हमारे पुण्य फले हैं जो गुरुदेव धरा पर उतरे हैं, बहुत हमारे पुण्य भले हैं जो गुरुदेव धरा पर उतरे हैं, इनकी पग धूली को शीश नवा लें, हो गया ब्रह्म स्नान। सदगुरु की महिमा का बंधु किस विद करूं बखान, गुरुदेव सब नहीं सज्जन दूजा, भाव हृदय से कर लो पूजा, इनकी दृष्टि मात्र से मिटते मानव के सकल रोग मोह अभिमान। बंधु सखा जनक महतारी, गुरु की पदवी सबसे भारी, भक्तों के कष्ट मिटाने हेतु न्योछावर कर देते अपने प्राण। सदगुरु की महिमा का बंधु किस विद करूं बखान, कार्यक्रम की अगली कड़ी में कृष्ण जन्म की झांकी, नंद के आनंद भइयो, जय कृष्णया जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की, नन्हे मुन्ने बालक बालिकाओं द्वारा।
1: भजन दोहराएंगे आप सभी साथ साथ में,
0: सभी विद्यार्थी सहयोग करेंगे भजन गाने में।
2: नंद के आनंद

नंद भयो जय कन्हैया लाल, अरे नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की, अरे हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की, अरे हाथी घोड़ा पाल की, नंद के आनंद भयो, नंद के आनंद भयो, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल, अरे नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल।

0: निराला लिखी। विद्यार्थियों से बैठ जाएं विद्यार्थी सभी,
1: ताली बजाते रहे,
0: ताली बजाते रहे और बैठे
1: घोड़ा पालकी।
0: अरे मत हो कोई,
1: अरे हाथी।

0: के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की।
1: अरे नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की।
0: रतन दिनो हार दिनो गैया ब्याई हाल की।
1: अरे रतन दिनो हार दिनो गैया ब्याई हाल की।
0: अरे नंद के आनंद भयो
1: नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। अरे जय कन्हैया लाल की जय कन्हैया लाल की।
0: जय कन्हैया लाल की जय कन्हैया लाल की। अरे नंद के आनंद।

0: ताली बजाए।
1: नंद के अरे नंद के आनंद भयो
0: बोले
1: हाथी घोड़ा पालकी जय कन्हैया।

मेरी बाल की सुरमा दीना, अरे सुरमा दीना दर्पण दिया कंगी दीनी बाल की। बोले सुरमा दिया दर्पण दिया कंगी दीनी बाल की, अरे नंद के आनंद, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल, अरे हाथी।

0: की जय, बोली कृष्ण कन्हैया की।
1: हाँ, यशोदा जी को बिठाओ नहीं भाई। हाँ, थोड़ी अटियावरी बेटी बीच में और आओ। अटी हरक अटी ने नहीं अटक रहे। हाँ अटे ना, आगे आओ आगे। ए बेटी आगे आओ, आगे आओ, आगे आगे अटी ने देख। हाँ आगे बैठ, आगे बैठ। हाँ अटे बस। हाँ ये हमें दे झूलनो। वाह हमें मजा। अब
2: आप सभी की ओर से नन्हे मुन्ने बालक बालिकाओं का कर्तव्य ध्वनि से हार्दिक अभिनंदन कराएं।
1: So, now I will speak few minutes in English for my international audience, okay?
2: So, Gurudev.
1: Sabhi baith jao. Hawa nahi aa rahi hai, hawa roki ho. Sit down, please. You are blocking the air. दीप नारायण भगवान की
2: जय।
1: कृष्ण कन्हैया लाल की
2: जय।
1: नंद गोपाल की
2: जय।
1: यशोदा मैया की
2: जय।
1: सनातन धर्म की
2: जय।
1: शंकर भगवान की
2: जय।
1: श्यावर रामचंद्र भगवान की
2: जय।
1: रोटी कोनी खाती।
2: विश्व गुरु महामंडलेश्वर परम हंस स्वामी श्री मेसानंदपुरी जी महाराज की।
1: वेरी गुड। सो यू हैव टू ब्रिंग। गुड मॉर्निंग डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स अराउंड द वर्ल्ड and in this hall. बोले उन्होंने कान खोचा रहे छोरो बेकुन बैठा बीच में। ए ठोक बात कर माए।
2: विद्यार्थी शांति बनाए रखेंगे। शिक्षक साथियों से निवेदन, कृपया व्यवस्था बनाने में सहयोग करावे।
1: ये छोटा वाला लाल कपड़ा में बैठा, उन्हें बाहर काटो। जा बेटा उठिन, जा उठ, जा परोठे लाल जान भेजा। बस सब कोई बोले ला नहीं। बोले उन्होंने क्यों खूब बोलो, पर उठे जाओ, पर कटे स्कूल में जान बोल जो।

हाँ जी, ब्रज अंगिदास जी कृष्ण लीला के बारे में बताएंगे। आश्रम की पावन धरा पर कृष्ण भगवान के ग्वाले, ग्वालों के ऊपर कृष्ण भगवान, और देखिए किस प्रकार से संतुलन बनाते हुए और मटकी फोड़ने का कार्यक्रम। विद्यार्थी सावधानी बरतें। अन्य विद्यार्थी तालियां बजाते रहें।

कृष्ण भगवान अपने साथियों के साथ मक्खन की मटकी फोड़ते हुए देखिए किस प्रकार से मटकी तक पहुंच गए हैं। कृष्ण भगवान की भूमिका में संजय चौहान, एक सुंदर कार्यक्रम मटकी फोड़ने वाला।

0: आश्रम की पावन धरा पर कृष्ण भगवान ने माखन चोरा है मटकी फोड़ करके। सभी विद्यार्थी शांति बनाए रखेंगे। गोपाल अपने आप को संभाल लेवे। आप सभी की ओर से इन बालकों के लिए जोरदार तालियां बजाकर उत्साहवर्धन करावें। माइक्रोफोन पर बुलाने जा रहा हूं ब्रज अंगी दास जी को, जो कृष्ण लीलाओं के बारे में हमें बताएंगे। ब्रज अंगी दास जी, शांति बनाए रखें। विद्यार्थी शांति बनाए रखें, अपनी जगह बना लें, बैठ जाएं। इस्कॉन अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के सदस्य ब्रज अंगी दास जी हमें कृष्ण लीलाओं के बारे में बताएंगे। इसके बाद में पद्माचार्य जी महोदय अपना उद्बोधन देंगे और अंत में इस्कॉन के द्वारा विद्यार्थियों को प्रसाद वितरण किया जाएगा। अभी माइक्रोफोन पर ब्रज अंगी दास जी। विद्यार्थी शांति बनाए रखेंगे। अरे
1: हरे कृष्णा। तो सभी लोग एक बार भगवान श्री कृष्ण का नाम लेंगे। सब लोग दोनों हाथ उठाइए, सभी लोग बोलिए हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे राम, हरे राम, राम राम, हरे हरे। तो आप लोगों को आनंद आ रहा है? कितना आनंद आ रहा है बता सकते हैं? नहीं बता सकते। तो अच्छा, क्योंकि आज देखो भगवान कृष्ण बलराम स्वयं साक्षात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण का आज आविर्भाव हुआ। तो भगवान श्री कृष्ण आज से 5000 साल पहले भगवान ने अवतार लिया था। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहाँ अवतार लिया? मथुरा, मथुरा भूमि। आप लोग सब वृंदावन गए? वृंदावन भगवान का धाम है और भगवान का घर है। तो आज से 5000 साल पहले भगवान स्वयं साक्षात मथुरा में प्रकट हुए थे। और देखिए, इस संसार के अंदर किसी का जन्म होता है अस्पताल में होता है, बराबर किसी का जन्म अधिकतर घर में ही होता है। लेकिन ऐसी परिस्थिति थी कि भगवान का जन्म कहाँ हुआ? ज्यादा ज्यादा क्या करेगा आजकल के मनुष्य, मोमबत्तियां लगाएगा, गुब्बारे और थोड़ा सा डांस वगैरह। लेकिन आज भगवान का जन्मदिन है। आज भगवान का जन्मदिन केवल इसी आश्रम में नहीं, विश्व की हर कंट्रियों में आज भगवान का जन्मदिन मनाया जा रहा है। तो आज देखते हैं इस्कॉन संस्था जो है, इसके पूरे विश्व के मंदिर है। इसका सबसे मुख्य मंदिर आप देखेंगे बॉम्बे में है और इसका विदेश में भी है। विदेश में इसके कम से कम 400 सेंटर है हरे कृष्णा के, और उसमें से 150 सेंटर इसके इंडिया में हैं। तो इंडिया में बॉम्बे में है, अहमदाबाद में है और दिल्ली में है, हैदराबाद में है, तिरुपति में है, विश्व की हर कंट्रियों में। आज केवल इधर ही जन्माष्टमी नहीं, इंडिया में नहीं, विश्व की हर कंट्रियों में ऐसा कोई कंट्री नहीं है। आप सुन लीजिए, विश्व का ऐसा कोई कंट्री नहीं आज आप कृष्ण भगवान का जन्मदिन नहीं मना जा रहा। क्योंकि ये जो भक्ति विधान स्वामी प्रभुपाद जी जो बैठे हैं, देख रहे हैं आप लोग इनको, आपको दिखने में ऐसे लगेंगे साक्षात बैठे हैं, लेकिन ये स्वामी जी 1965 में विदेश में जाके 1965 के अंदर गए थे। और जितने भी वहां जितने ही फॉरेनर्स हैं, विदेशी लोग हैं, न्यूयॉर्क के अंदर वहां जाके कृष्ण भक्ति का प्रचार किया। अभी जैसे आपके सामने हम लोग कीर्तन कर रहे थे, बराबर। तो ये स्वामी जी गए थे 1965 में, स्टॉक्सिन पार्क है वहां पर न्यूयॉर्क के अंदर, अमेरिका के अंदर, और वहां बैठ के क्या कर रहे थे? कीर्तन कर रहे थे। और कीर्तन करते करते तीन चार फॉरनर्स आए और वो लोग भी क्या है नाचने लग गए और कीर्तन करने लग गए। तो स्वामी जी ने 12 साल लगे उनको पूरे विश्व मतलब हरे कृष्णा का प्रचार करने में। आज न्यूयॉर्क, रशिया, हांगकांग, बैंकॉक, पूरे वर्ल्ड के अंदर आ जाना हरे कृष्णा के लोग नाम ले लेके उसको नाच रहे हैं। तो ये भगवान श्री कृष्ण का जन्म इतना पवित्र है, केवल पूरी दुनिया मना रही है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के जन्म को अगर कोई व्यक्ति मनाता है तो जानते हैं श्री कृष्ण भगवद गीता में क्या बोलते हैं, जन्म कर्म चामे दिव्यम जो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नेति मामेति सो अर्जुना। तो भगवान श्री कृष्ण गीता के अंदर क्या बोलते हैं, जन्म कर्म चामे दिव्यम। भगवान श्री कृष्ण के जन्म कर्म कैसे हैं, दिव्य हैं, अलौकिक हैं। और भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं जो अगर व्यक्ति मेरे जन्म कर्म को मनाता है और जो मेरे जन्म कर्म को तत्वता से जान लेता है तो त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नेति मामेति अर्जुना। हे अर्जुन, वो व्यक्ति क्या इस शरीर को त्यागने के बाद इस मृत्यु लोक में जन्म पुनः नहीं लेगा। तो देखिए भगवान श्री कृष्ण जब छोटे थे उनका जो जन्म हुआ तो जन्म के साथ ही साथ छह महीने के थे भगवान, कितने महीने के, छह महीने के भगवान श्री कृष्ण ने पूतना नाम की एक राक्षसी आई थी और उसका वध किया। और वो पूतना राक्षसी का उसका शरीर जानते कितना विशाल था, तो श्रीमद् भागवतम में वर्णन आता है पूतना राक्षसनी जो थी, ये जो तुम्हारा पूरा क्या बोले ये आश्रम है, इतना लंबा उसका शरीर था, आप कल्पना नहीं कर सकते पूतना इतनी विशाल थी। और उसकी जो आंखें थी जैसे कुआ होता है ना, तो कुएं की तरह उसकी आंखें थी, इतनी विशाल थी पूतना। तो भगवान श्री कृष्ण उसको कितने महीने में मार दिया, कितने महीने के थे, केवल 6 महीने के थे। तो जैसे ही भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ और जो पूतना थी इतना सुंदर रूप बना के आई थी, साक्षात इतनी सुंदर लग रही थी कि जैसे लक्ष्मी आ गई हो। और जितने भी वहां के बच्चे थे उसने क्या सबको क्या कर दिया था, अपने स्तन में दूध पिला पिला के सबको झेर करके मार दिया था, क्योंकि वो जो पूतना थी कंस की भेजी हुई थी वो, और कंस को भय था कि कृष्ण मुझे मार देंगे। तो जो भी 8 दिन के अंदर जितने भी शिशु जन्मे जिनका जन्म हुआ उनको क्या कर दो पूतना, तुम करके क्या कर दो, मार दो। और पूतना ने सारे बच्चों को, अधिकतर गांव के जितने भी बच्चे थे सबको मार डाला। तो भगवान श्री कृष्ण को जब उठाई उसने, तो जैसे वो भगवान श्री कृष्ण को उठाई अपना स्तन दूध पिलाने वाली थी, पूतना को तुरंत याद आया कि ये बच्चा साधारण नहीं है, ये बच्चा कैसा है, साधारण नहीं है। तो वो जानती थी भगवान की शक्ति को, और जैसे उसने स्तन पान कराया तो उसी समय भगवान श्री कृष्ण ने उसके क्या हर लिए, दूध तो पिया और साथ साथ में उसके क्या कर लिए, प्राणों को हर लिए। तो और उसको प्राणों के अंदर उसको पूरा भगवान श्री कृष्ण ने मार दिया। तो सोचिए आज कोई 6 महीने का बच्चा, 6 महीने का बच्चा अपना शरीर नहीं संभाल पाता, लेकिन भगवान श्री कृष्ण इतने महान है। ऐसा नहीं है कि भगवान श्री कृष्ण माता यशोदा के आंगन में पल गए तो वो भगवान नहीं है। श्री कृष्ण चाहे छोटे हो बड़े हो, चाहे जेल में जन्म लिया हो कहीं भी लिया हो, लेकिन कृष्ण हर हालत में क्या है, भगवान कहलाते हैं। भगवान शब्द की व्याख्या पराशर मुनि ने बोला ऐश्वर्यशस्य वीर्यशस्य यशस्य श्रिया। जिस मनुष्य के अंदर 6 ऐश्वर्य होते हैं वो भगवान कहलाता है, धनी धनवान, रूपवान, त्यागवान, शक्तिमान। ये जो जिसके अंदर 6 ऐश्वर्य होते हैं वो भगवान कहलाता है। तो देखिए इस संसार में कोई व्यक्ति धनी व्यक्ति होता है, हो सकता है वो इस गांव का धनी होगा लेकिन वो ये नहीं कह सकता कि मेरे पास सारा धन है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति जयपुर में रहेगा तो उसके पास ज्यादा धन है, और जयपुर से ज्यादा धन वाला होगा जो बड़ी बड़ी सिटियों में रहता है, और जो बड़ी बड़ी सिटी में उससे ज्यादा धन है विदेशों के पास। लेकिन कृष्ण एकमात्र ऐसा दावा कर सकते हैं उनके पास सारा संपूर्ण धन है। श्री कृष्ण के पास संपूर्ण धन है, सबसे ज्यादा रूपवान है और सबसे ज्यादा शक्तिमान है। तो श्री कृष्ण छोटे से बालक थे और इतनी बड़ी राक्षसी पूतना को कैसे वध कर दिया उन्होंने, केवल उसके स्तन पान करके उसका वध कर डाला। तो देखिए भगवान कृष्ण शक्तिमान है। और सुंदरता में श्री कृष्ण सुंदर है या नहीं, कितने सुंदर हैं आप बता सकते हैं, श्री कृष्ण बहुत सुंदर है। कैसे, एक बार जब कामदेव जो है, कामदेव जो पूरे संसार को अपने काम बाणों से मोहित कर रखा है, तो नारद मुनि उसको घमंड था कि इस संसार में सबसे सुंदर व्यक्ति कौन है, मैं हूं कामदेव। बच्चे थोड़ा शांत रहिए, अभी गुरुजी ने बताया, देखो कितनी शांति से सुनना चाहिए भगवान की कथा, नहीं, हम भगवान का देखिए आज भगवान अवतार लिए हैं तो उनके विषय में कितने ध्यान से सुनना चाहिए। नहीं, हमको अगर उनके बारे में अगर ध्यान से सुनेंगे तो निश्चित रूप से भगवान हमें बुद्धि प्रदान करेंगे। और जिस व्यक्ति को, जिस स्टूडेंट को, जिस बालिका को अगर यदि बुद्धि है, निश्चित रूप से वो बहुत अच्छे नंबर ला सकते हैं। तो कृपया ध्यान से सुनिए, बातें ना करिए, बस 10-15 मिनट को आपको और लूंगा मैं आपका। तो हम बता रहे थे कि क्या कामदेव जो थे, तो कामदेव सबसे सुंदर व्यक्ति हैं, तो उन्हें घमंड हुआ इस संसार में सबसे सुंदर व्यक्ति मैं हूं। तो नारद मुनि जी बोले कि नहीं, तुमसे सुंदर व्यक्ति इस संसार में एक और है। तो उन्होंने बोला कौन? बोला है पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण, अभी वृंदावन के अंदर अवतार लिए हैं, वही सबसे सुंदर हैं। तो कामदेव जी को लगा अरे वो मुझसे सुंदर कैसे हो सकते हैं। तो कामदेव जी ने उनकी क्या किया, तुरंत गए। और उस समय भगवान श्री कृष्ण क्या कर रहे थे, रास नृत्य कर रहे थे। तो अभी क्या हुआ था, यहां पर क्या हुआ था, रास नृत्य हुआ था, वो देखा था ना। तो इसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण वन के अंदर रास नृत्य कर रहे थे और उस समय भगवान इतने सुंदर लग रहे थे कि उसकी कल्पना भी नहीं कर सकता कोई। सुंदर घुंघरालू बाल और सुंदर भगवान मोर मुकुट धारण करे हुए थे, पीताम्बर धारण करे हुए थे। तो जब कामदेव आया और छुपके से भगवान की रासलीला देखी उसने, तो उसने जैसी भगवान श्री कृष्ण को देखा, इतने ब्यूटीफुल, इतने सुंदर भगवान थे कि कामदेव भी बेहोश होके क्या किया, वो गिर पड़ा। इतने सुंदर हैं भगवान श्री कृष्ण। तो देख सकते हैं भगवान श्री कृष्ण से उनकी कितनी रानियां थी, द्वारिका के अंदर भगवान श्री कृष्ण की कितनी पटनारियां थी, है कितनी, 16,108। देखिए भगवान की वृंदावन में तो गोपियां अलग थी, लेकिन जो द्वारिका की जो रानियां थी 16,108। तो बताइए इस संसार का कोई भी सुंदर व्यक्ति होगा तो इतनी सुंदरता नहीं होगी जितनी भगवान श्री कृष्ण में है। तो ऐसे सुंदर व्यक्ति आज स्वयं भगवान श्री कृष्ण इस भारत वर्ष में इतनी पुण्य भूमि में प्रकट हुए, तो क्यों ना उनका जोर जार से कीर्तन किया जाए, भगवान का नाम लिया जाए। तो इसलिए जितना हम भगवान श्री कृष्ण का आज गुणगान करेंगे तो भगवान श्री कृष्ण उतनी हमको कृपा करेंगे। तो देखिए भगवान श्री कृष्ण सुंदर है तो उनका ये एक ऐश्वर्य है, और सबसे ज्यादा भगवान शक्तिमान है। वो शक्तिमान नहीं है जो आप लोग देखते हैं वो शक्तिमान क्या है, वो तो केवल टीवी का शक्तिमान है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण पूरे विश्व के शक्तिमान है। वो शक्तिमान क्या है, अभी देखिए बच्चे लोग जब टीवी देखते हैं तो उससे आज देखिए टीवी पे कितना गलत प्रभाव पड़ता है लोगों। हमने अखबारों में सुना था कि बच्चे जो शक्तिमान नाटक देखते थे, तो एक बच्चा था वो टेरिस से कूद रहा था, बोला शक्तिमान मुझे बचाएगा, और बच्चा क्या किया, होता ना ऐसे अखबारों में खबर आती है ना। तो ये शक्तिमान ऐसे नहीं है, भगवान सर्वशक्तिमान है। तो इनकी कितनी शक्ति है भगवान श्री कृष्ण की, सुनना चाहेंगे, सुनना चाहेंगे, जोर से बोलिए। तो देखिए भगवान श्री कृष्ण केवल उस समय कितने, जब उनकी गोवर्धन लीला थी, तो जानते हैं हम एक ईट है, पत्थर है, अपने हाथ में कितनी देर तक रख लेंगे, एक घंटा दो घंटा, तो ज्यादा हम लोग नहीं रख पाएंगे। लेकिन जब नंद बाबा भगवान श्री कृष्ण के पिता जो थे नंद बाबा, तो वो गोवर्धन पूजा कर रहे थे। तो एक दिन भगवान श्री कृष्ण ने बोला पिताजी ये किसकी पूजा कर रहे हो, बोला बेटा ये इंद्र की पूजा कर रहे हैं। तो बोला इंद्र की पूजा क्यों करते हो, बोला वो वर्षा करते हैं। तो उन्होंने बोला वो तो उनका काम ही है वर्षा करने, तो इसमें उनकी पूजा करने की आवश्यकता क्या है। तो बोला नहीं, आज से ये गिरिराज गोवर्धन है, पर्वत है, आज से इसकी क्या होगी, इंद्र की पूजा क्या करो, बंद कर दो। तो जब इंद्र की पूजा बंद की और भगवान श्री कृष्ण ने बोला ये गिरिराज गोवर्धन है, अभी गोवर्धन पूजा आएगी, आगे जाके 20-15 दिन पहले गोवर्धन पूजा होगी और वह पूरे विश्व में मनाई जाती है। तो जब भगवान श्री कृष्ण ने इंद्र की पूजा बंद करा दी तो इंद्र क्या हो गया, क्रोधित हो गया, नाराज हो गया। उन्होंने बोला जाओ, संबंतक आदेश दिया कि इस जितने भी वृंदावन का जो वन है सब क्या कर दो, मूसलाधार वर्षा से नष्ट भ्रष्ट कर दो। तो समंतक जो आया उस समय परले की जो वर्षा होती है वो वर्षा की, सारे गांववासी त्रास दुखी हो गए, इतनी वर्षा हो गई, धूल हो गई, ऐसा लग रहा था अभी वृंदावन क्या हो जाएगा, पूरा नष्ट हो जाएगा। और सब लोग भगवान श्री कृष्ण को क्या कर रहे थे, दोष दे रहे थे, देखो ये आपके कारण हुआ कृष्णा, तुमने क्या किया था, इंद्र की पूजा बंद करा दी, अब लोग क्या करोगे। तो भगवान श्री कृष्ण पहले देख रहे थे, सारी स्थिति देख रहे थे, और भगवान श्री कृष्ण तुरंत देखे ये किसका काम हो सकता है, निश्चित रूप से इंद्र का काम हो सकता है। तो भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया, ये देवता लोग है कभी कभी भगवान को नहीं समझ पाते, तो इंद्र क्या है समझ नहीं पाया कि भगवान श्री कृष्ण की कितनी शक्ति है। तो भगवान श्री तो इंद्र जो था उनको देखा, भगवान श्री कृष्ण देखो देखो अभी इनको मैं मजा चखाता हूं। तो भगवान श्री कृष्ण ने गिरिराज जो पर्वत है उसकी पूजा हो रही थी, तो भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया, उस पूरे पहाड़ को क्या किया, उठा लिया। कैसे उठाया, ऐसे भी नहीं, ये सबसे कनिष्ठ उंगली कौन सी होती है, ये, और इसके ऊपर भी जो नाखून है वो, और नाखून के जो अग्र भाग है उसके ऊपर ये जो छत देख रहे हैं आप लोग, ये कुछ नहीं, आपको कल्पना कीजिए आपके राजस्थान में जो पहाड़ होते हैं ना, सबसे बड़े पहाड़ का नाम क्या आपको मालूम है, क्या है, हिमालय पर्वत, नहीं हिमालय पर्वत तो बहुत ही बड़ा हो गया, लेकिन जो वो पहाड़ था 20 किलोमीटर की एरे इसमें जो फैला हुआ, इतना बड़ा पहाड़ था 22 किलोमीटर की। आज भी वृंदावन के अंदर लोग जो परिक्रमा करते हैं ना, 6 घंटा लगता है उसकी परिक्रमा करने में, कितना, तो आप कल्पना कर सकते हो कि 22 किलोमीटर का जो पहाड़ था भगवान श्री कृष्ण ने किसके ऊपर धारण करा, एक कनिष्ठ उंगली के ऊपर, वो भी नाखून के ऊपर, ये सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण है। तो आज से वो सर्वशक्तिमान भूल जाइए, केवल भगवान श्री कृष्ण ही शक्तिमान है, और उन्हीं का आज हमको क्या करना चाहिए, जन्मदिन मनाना चाहिए। तो भगवान श्री कृष्ण भी ऐसी मटकी फोड़ी माखन करते थे, तो आज जो व्यक्ति उनका जन्मदिन मनाएगा वो उस संसार से दुखों से मुक्त हो जाएगा। इसलिए भगवान श्री कृष्ण का जितना नाम लेना चाहिए आज कम है, तो इसलिए मैं अपने शब्दों को यहीं विराम देता हूं। सब लोग हाथ खड़े करके, सभी लोग भगवान श्री कृष्ण का नाम लीजिए जोर से, प्रेम से, श्रद्धा से, हरे कृष्णा। देखिए बच्चों की आवाज कम आ रही है और जो दीदी लोग हैं सिस्टर इनकी कम आ रही है, एक मिनट अभी आप मत बोलना, बच्चे लोग बोलेंगे हरे कृष्णा। अब आपको क्या इनको डिफीट करना है, मतलब हरा देना है। अभी बच्चे नहीं बोलेंगे, अभी गर्ल्स मतलब लेडी सिस्टर बोलेंगी, बोलिए हरे कृष्णा। अभी तक हार गए आप, बच्चों की आवाज ज्यादा थी, एक चांस और देते हैं आपको, बोलिए हरे कृष्णा। इनकी आवाज अब आपसे तेज आई है, अब आपको हराना है इनको, हरे कृष्णा। ठीक है, स्त्रियां थोड़ी कमजोर होती हैं, पुरुष थोड़ा बलवान होते हैं, तो कोई बात नहीं, भगवान के सामने सभी जीत गए, क्योंकि जो व्यक्ति भगवान का नाम लेता है संसार में जीता हुआ व्यक्ति है। आवाज और कम ये तो केवल शरीर की बात है। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। हाँ,
0: आप थे इस्कॉन के सदस्य श्रीमान ब्रजंगीदास जी, आपने कृष्ण लीलाओं का बखूबी वर्णन किया, हमें कृष्णमय बना दिया। इस्कॉन की तरफ से आज आप लोगों के लिए प्रसाद वितरण किया जाएगा। शिक्षक साथियों से निवेदन, कृपया आप इन विद्यार्थियों को पंक्ति बनाकर मंच से ले जाएं।
2: समस्त गुरुजन मंच की तरफ पधारे, गुरुजन कृपया इधर पधार जाएं, विद्यार्थियों को पंक्तिबद्ध बनाने में सहायता करें और प्रसाद वितरण की उचित व्यवस्था करें। संपूर्ण विद्यालय परिवार इस्कॉन से पधारे हुए सभी सदस्यों का आभार व्यक्त करता है, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपनी वाणी से विद्यार्थियों को ज्ञानार्जन किया, हम आपके बहुत आभारी हैं, धन्यवाद। हरि ओम।
0: प्रधानाचार्य जी महोदय, श्रीमान सांवला जी ओझा साहब ने इस्कॉन के सदस्यों को और आज आगंतुक महानुभावों का हार्दिक आभार व्यक्त किया है। विद्यार्थी लाइनबद्ध पंक्ति बना करके रथ से गुजरेंगे। हमारे विद्यालय के कार्यकारी अधिकारी महामंडलेश्वर परमहंस स्वामी श्री जसरथपुर जी महाराज ने ऑस्ट्रेलिया में यह कार्यक्रम नेट पर देखा है, उन्होंने फोन पर बताया है कि आज के अवसर पर आप सभी को कृष्ण जन्मोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। आज के दिन हमारे अलकपुरी जी सिद्धपीठ परंपरा के धर्म गुरुओं में से परमहंस स्वामी श्री, धर्माचार्य स्वामी श्री माधवानंदपुरी जी, जिन्हें हम कृष्ण का अवतार मानते हैं, उनके श्री चरणों में उनकी तस्वीर के आगे हम नतमस्तक होते हैं, उनके श्री चरणों में अपना मस्तक नवाते हैं। आज के दिन उनका एक जोरदार जयकारा बोलेंगे। बोली सिद्धि प्रण भगवान की, देवेश्वर महादेव की, माधव कृष्ण भगवान की,
1: हरे कृष्ण।
0: विश्व गुरु महामंडलेश्वर परमहंस स्वामी श्री महेश्वरानंदपुरी जी महाराज की, महामंडलेश्वर परमहंस स्वामी श्री जसदपुरी जी महाराज की, कृष्ण कन्हैया लाल की, राधा के श्याम की, मीरा के मोहन की, आज के आनंद की, हरिओम। पदनाचार्य जी के आदेशानुसार सभी विद्यार्थी प्रसाद ग्रहण कर लेवे। प्रसाद ग्रहण करने के बाद दोने एक निश्चित स्थान पर ही डाले हैं, अव्यवस्था नहीं बनाए, और आप सभी प्रसाद लेने के बाद विद्यालय की ओर गमन करेंगे पंक्तिबद्ध। छात्राओं की पंक्ति के बाद छात्र पंक्ति बना देंगे। पंडाल में कृपया शांति बनाए रखें। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन द्वारा इस महोत्सव पर प्रसाद का वितरण किया जा रहा है। विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि इस्कॉन के धर्म गुरु द्वारा लिखित एक बहुत ही सुंदर, बहुत ही आध्यात्मिक पुस्तक है जो मंच पर उपलब्ध है। जो विद्यार्थी लेना चाहता है उसका मूल्य 5 रुपए है, मंच से ले सकता है। प्रहलाद महाराज के दिव्य उपदेश। कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद संस्थापकाचार्य अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ, इनके द्वारा लिखी हुई एक पुस्तक है जिसकी कीमत 5 रुपए है। आप लेना चाहें तो मंच से ले सकते हैं। एक पुस्तक मुझे उपहार स्वरूप मिली है,

विद्यार्थियों से पुनः आग्रह की, प्रसाद ग्रहण करने के बाद दुने निश्चित स्थान पर ही रखें, वहीं डालें, सफाई व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करें।

प्रसाद ग्रहण करने के बाद दोनों के लिए निश्चित स्थान है। पंडाल के पास एक ट्रॉली लगी हुई है, आप दोनों केवल उसी में डालें, उसी ट्रॉली में डालें। इधर उधर दोनों नहीं बिखेरें, सफाई व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करें।

Oh,

0: ఎందుకు
1: మరి అందుకు

Yeah.

मा पश्यतु सुखाकवी।

Asal boleh.

0: हमारा लीडर क्या करेगा?
1: ना भाई चलो और हमें
0: हां बैठो
2: प्रभात जी का ये जगत छोड़ जाओ
1: प्रभात जी ने व्यवस्था को
0: बात
1: कर जा बैठो आपने पूछो सर आपने
2: सर आप किधर के कराए बात दे बात दे
0: माफी के रहा आपके गौर से करना पड़ेगा वेन यू एंटर मंत्र के साथ एक गुरुदेव बना है वो नहीं
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: अच्छा आज ये चीज नहीं चाहिए कि मंदिर तो बैठी है गुरु में आप बैठे थे फिर उस चीज ले जाए तो ओपरा तो कोई कोई
1: ఆమె కుటుంబం

जल लगाओ से शरीर है आप रखुद्रे कोमर हृदय माते छोटो फेंका ओम पवित्र पवित्र वा सर्वावस्था अंग दो विवा यस्वरे पुंडरी काक्षम सबाय अभ्यंतर सुचि पुंडरी काक्षाय नमः पुंडरीकाक्षं पुनातु मां ओं पवित्र हस्तो वैष्णव्यौ सवितुर्वः उत पुनाम्यचिद्रेण पवित्रेण सूर्यस्य रश्मिभिः तस्य दे पवित्रपदे पवित्रपूतस्य यत्कामः पुनः तु चकेयम् मह जल छोड़ दो सा जल छोड़ना आगे बट ठेके चौकी चौकी मान था कि आप आगे गिल्लो नहीं वे आगे जी चौकी है क्या महादेव रे नीचे बस अटे छोड़ देवना ताकि आगे गिल्लो नहीं वे सफ रहे हाँ अबे तीन बार जीवना हाथ में ले जल पीवना भाई राइट हैंड जीवना हाथ तीन बार जल पीवना महादेव रे ध्यान करना है ओम शाम सदा शिवाय नमः स्वाहा ओम शाम सदा शिवाय नमः स्वाहा ओम शाम सदा शिवाय नमः स्वाहा तीन बार जल पीना आप लारे हाथ धो लो आप बैक साइड में थोड़ा सिंह मामू नी जल छोड़ दो बस हस्तो प्रक्षाल्य हो हाथ धो लिया हाँ अल्लाह सब देखो एक आहंग नागू आगे ट्रांसफर सिक्का रखनी माता माता साप आ रहे जगह जो आप आगे साप हो पैंड बैठ जाके जो रे जो सिक्का रहे जगह रखनी आहंग आप ट्रांसफर करो आगू आगे हाँ मैं मंत्र बोलू जरे रखनी है हाँ नजीक बॉन सके वो लारे बॉन दीजो चोटी रे माता सब बॉन दे दीजिए लॉस आई और दू हाँ रखो सा ओम मानस्थ हो गए माते रखो सा मानस्थ हो गए तनये माना युकि मानो गो कुमानो स्वे गुरी दिखा मानो वीरान दुद्र बहामिनो वदीर विश्वंदो सतमित्वा हवा महे चिद्धरूपणे ही मामाए दिव्य ते दिष्टत देवी सिखा बंदे दे जो वृद्धेम गुरु स्वमहे अंजलो पुष्पान नादा यह पुष्प रखो सा सबन थोड़ा थोड़ा पुष्प ट्रांसफर कर लो भद्र शुक्त शांति पाठ पड़े धंजलो पुष्पान आप रखने छो ठीक है सा महादेव रो ध्यान करना एडो ध्यान करना को अपर सब तेरह सुख शांति रहे घर रे मन सब तेरी कहू ग्रह री आप भद्र सुक्त शांति पाठ रो उच्चारण कर रही हूँ ठीक है मंदिर मन ओम नमः शिवाय रो आपने ध्यान करना महादेव रो गुरुदेव रो ध्यान करना और शांति पाठ रो आप सब पहला उच्चारण करो।

पुष्प है जिसको महादेव रे अर्पण कर दो, साबरा हाथ में जी का पुष्प अंजलि में वे महादेव रे अर्पण कर दो और आगू आगे ट्रांसफर कर दीजिए पुष्प नहीं तो। आप और दीपक आप चलू करो लाखंड दीपक है और पूरा अभिषेक तक लगेला तैयार करने आप बटर साइड में रख दो ठीक है। आप आगे हाथ दे दो अगरबत्ती दे दो आपने हिमाचित दे दो कन्ने रख दो एडवांस चाहिए सर कि वे दो गिल्ली वेगी मैं ऊपर रख दी हूँ आप सामान लाया जिनमें दो गिल्ली वेगी माचिस हाँ अगरबत्ती है ना सर अगरबत्ती है आलो धूप लगाओ एक अच्छा ये कटक आ गिल्ली है सामान में गिल्ला वेगी है आ गिल्ली वेगी है चलू करी ओम पा चलू करी ओम मग्नेर ज्योति रग्ने स्वा हाथ जोड़ो भाई साहब ओम मग्नेर ज्योति रग्ने दीपक रो ध्यान करो कर्म साक्षी यहाँ पे कर्म कर रिया हो इनो साक्षी है दीपक देवता ओम मग्नेर ज्योति रग्ने स्वाहा सूर्य वर्चो ज्योतिर्वर्च स्वाहा ओम मग्नेर वर्चो ज्योतिर्वर्च स्वाहा सूर्यो ज्योति ज्योति सूर्य स्वाहा भो दीप देव रूपस्तम।

ग्रंथ संघ चक्र कर्म साक्षिणे सूर्याय नमः आवाहयामि सूर्य भगवान कौन छोड़ दो सा कर्म साक्षिणे सूर्य नारायणाय नमः आवाहयामि स्थापयामि नमः आप ही दे दो बस बाकी सब पुष्प चढ़ा दिया गया पांच जिला दो मन कर छोटो लगा ले कर्म साक्षिणे।

ఉభయ తరపు కదా

ब्राह्मणो ब्रह्मवर्चसी जायताम् आराष्ट्रे हि राजन्।

Yani ben doğru bir

Gracias.

Ah.

Thank you.

0: Disney.
1: विद्यारंभे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तदा संग्रामे संकटे सेवा विघ्न तस्य न जायते शुक्लाम्बरधरं देवं सुवर्ण चतुर्भुजं प्रसन्नावदनं ध्याये सर्व विघ्नोपशान्तये अभिप्सिद्ध्यर्थ सिद्ध्यर्थं पूजितो यः सुरासुरै सर्व विघ्नहरस्तस्मै गणाधिपतये नमः वृक्कतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सिद्धिदा सर्वकार्येषु सर्वदा सदैव लग्नं सुदिनं सदैव स्तारा बलं चन्द्रबलं तदेव विद्या बलं दैव बलं तदेव लक्ष्मीर्पदेतेम दिग्मं स्वरामे अनन्या सिन्धयन्तो मां येजनां परिपास्ते तेषां नित्याभियोक्तानां योगक्षेमं वाम्यं स्मृतेशकल्याणं भाजनं यत्र जायते पुरुषस्थं हृदये नित्यं व्रजामि शरणं मरीं सर्वेष्वारब्धकार्येषु त्रयस्त्री भुवनेश्वरा देवादिसन्तु न सिद्धिं ब्रह्मेशान जनार्दन विनायकं गुरुं वानुं ब्रह्म विष्णो महेश्वरान् सरस्वतीं प्रणम्यादौ सर्वकार्यार्थसिद्धये सर्वकार्यार्थसिद्धये विश्वे सम्माधवं दुण्डिं दण्डपाणिं च भैरवं वन्दे काशीं गुहां गंगा भवानी मणिकर्णिकाम् ओं लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः। नमः शब्द उच्चारण करना आप लोगों ने, नमः शब्द बोलना आपने लारूं सिर्फ, ठीक है। ओम लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः, उमा महेश्वराभ्याम नमः, वाणी हिरण्यगर्भाभ्याम नमः, शची पुरंदराभ्याम नमः, माता पितृचरण कमलेभ्यो नमः, इष्ट देवताभ्यो नमः, कुल देवताभ्यो नमः, स्थान देवताभ्यो नमः, वास्तु देवताभ्यो नमः, सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः, सर्वेभ्यो वेदेभ्यो नमः, सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः, एतद् कर्म प्रदान देवताभ्यो श्रीमन्महागणाधिपते सांब सदा शिवाय नमो नमः। पुष्प जी को गजानन जी अर्पण कर दो। श्रीमन्महागणाधिपते नमः। गुरु गणपतिम ध्यायेत। अब आप पुष्पाद गुरुदेव ध्यान करना है, ठीक है सा।

0: आवाहयामि इदम पुष्पासनम समर्पयामि, आगे दे दो पुष्प चढ़ा देना।
1: अब है गुरु जी बट जाना पूजा करो ला के एक बार अटावे पचे पूजा करो ला अटे करो ला आयो पचे देख लीजिए आप है जो आप कोला जो मैं मंत्र बोलना करा दूँ ठीक है। लो जल ला को संकल्प करना है ठीक है। और जी को हाथ में जल लिया नहीं मैं थोड़ा थोड़ा चावल और पुष्प एक कुंकुड़िया डाल लिया और कुकू गान लिया मैं अपना आगे मौन आप जल रमौन ठीक हाँ चावल और आप लाओ सर ले लो
0: हस्ते जलमादाय गंधम अक्षतम पुष्पम च निक्षिप्य त्रिवारो सोमांग राजेति।

तो तीन बार बोलो सा जय जय जय ओम विष्णु विष्णु विष्णु श्रीमद भगवत महापुरुषस्य विष्णुराज्ञा पर्वतमानस्य अद्य श्री ब्रह्मणोदित्ये प्रारार्धे शिष्यैत्वाराः कल्पैवैवस्मन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलिप्रदं शरणे जम्बुद्वीपे भारतवर्षे भरतखण्डे आर्यावर्ताङ्कत ब्रह्मावर्ते गदेशे पुण्यप्रदेशे क्रोधी नाम्ने संवत्सरे रविः दक्षिणायने उत्तरगोलीय मांगल्यप्रदे मासे पुण्यपवित्रमासे है भाद्रपदमासे सुबे है कृष्णे पक्षे तिथोऽद्य अष्टम्यायां तिथोऽद्य वासरान्वितायाम् अद्योः चन्द्रवासरान्वितायाम् मह वृषभराशि स्थितेऽसि सूर्यः एवं ग्रह गुण विशिष्टेन विष्टायां सुपुण्यस्थितोऽहौ अष्टम्यायां तिथोऽहौ अमुक गोत्रोत्पन्नोऽहम् अमुक शर्माहम् वर्माहम् गुप्तोऽहम् आप अपना नाम गोत्र गुरु जी रो पहला नाम गोत्र पचे है जी को आप अपना सब नाम गोत्र बोल ले रहे होना क्यों गुरु जी पहला गुरु जी कई काल गुरुदेव कहो कि मारो भी नाम ले लीजिए आप सब पहले गुरुदेव रो नाम ले लो पछ आप लोगों रो पछ परिवार में जी का भी सदस्य बच्चा वगैरह स्त्री वगैरह हैंगो रो नाम ले ले बनाओ ताकि हैंगो ने इन पुण्य फल प्राप्त हो जाए अभिषेक रो ठीक है स्त्री रो वगैरह बच्चा रो वगैरह हैंगो रो गोत्रस्य यजमानः सकल बोलो सा सकल शास्त्र स्मृति पुराणोक्त फल प्राप्ति अर्थम ऐश्वर्य अभी वृद्धि अर्थम अप्राप्त लक्ष्मी प्राप्ति अर्थम प्राप्त लक्ष्मी चीरकाल संरक्षण अर्थम सकल मन ईप्सित कामना संसिद्धि अर्थम आपने मन में कामना है बिना मन में उच्चारण करा दो कि भाई मारी मन में आ कामना है व्यापार वृद्धि रही है शरीर आरोग्यता रही है और भी कोई तरह रही है कामना कहीं मारी कोई रुक्योड़ो काम मा दे पूर्ण कर देड़ो सकल मन ईप्सित कामना संसिद्धि अर्थम हाँ बोल दिया सा अबे बोलो लोके सभायाम राजद्वारे सर्वत्र यश विजय लाभादि प्राप्ति अर्थम मम जन्म कुंडल्याम वर्ष कुंडल्याम मास कुंडल्याम दशायाम अंतरदशायाम प्रत्यंतरदशायाम नवग्रह पीड़ा दोष निवारण अर्थम मम ग्रहे शुक शांति प्राप्ति निमित्तम शकल पीड़ा दरिद्र भय कष्ट निवारण अर्थम व्यापार वृद्धि निमित्तम शिव पंचायत देवता प्रसन्ना सिद्धि अर्थम अस्मिन पाली नगर स्थान मध्य जार्डन मध्य देवेश्वर महादेव उपरी सांब सदाशिव देवता प्रसन्नार्थम सांब सदाशिव उपरी पयधारा जलधारा पंचामृत दुग्ध रुद्राभिषेक पूजन सहितेभ्य महम पाचो आप नाम गोत्र बोलना है गौरव बच्चर वगैरह हैंगो रो आप घर मुंह बीजे हैंगो नाम गोत्र बोलना जोड़ा जोड़ी नाम गोत्र बोलना महम करीशिये अट महादेव जी ने कहा बटे नीचे जल छोड़ना मौन ना अट नीचे बट मौन छोड़ना बस अट छोड़ना हाँ भाई सब जीना आराम हाँ भैया हाँ भाई आप ला बैठ जाओ आराम हाँ एक बार और जल रखना आप लोगों से आगे बैठो फर्स्ट लैंड में तदंगत्वेन स्थापित देवताभ्यो जल रखना सा
तदंगत्वेन स्थापित देवताभ्यो गणपति पूजनम गजानंजी पूजा करोला तदंगत्वेन पार्वती श्री मां काली मां लक्ष्मी मां सती पार्वती पूजन सहितेभ्य स्वामी कार्तिक देवता पूजन सहितेभ्य नंदीश्वर आवृक नंदीश्वर नंदीश्वर पूजन सहितेभ्य साम सदाशिव उपरी पयधारा जलधारा दुग्ध रुद्राभिषेक कर्म महम पाचा आप नाम गोत्र बोलने बटे जल छोड़ना जेट पहला छोड़ियो महम करीशे जल छोड़ दो बटे आगू आ गया ट्रांसफर कर दो थोड़ी थोड़ी डबा हाथ में ले ले सर सु लेफ्ट रमोन है आगू आगे ट्रांसफर कर दीजिए कोतले डबा हाथ में लेवनी जीवन हाथ ऊपर ढक दे देवण यू डबा हाथ में ले जीवन हाथ ढक दे देवण और दस दिशा रक्षा रास्ते है दस दिशा रक्षा रास्ते हो पहला कुदरी रक्षा बचे पूजा कार्य हाँ आप ले लो बाकी यहाँ देवनी जरूरत आप ले लो बाकी ये तो वैसे भी कहीं डोरो बांध ने बैठी जरूर क्यों तो बैठा हो ना पहंगो ना कटे अच्छा बैठा ला रहे हाँ ऊपर रख दे दिया है ओम रक्षोवाणम वलगनम वैष्णवी मिदमांतम वलग मुग्धिरामे यम मे समानो यम समानो निजघाने कृत्यांगिरामे ओम अब सर्पन्तु ते भूता ये भूता भूमि संसिता ये भूता विघ्नकर्तार तेना संतोपक सर्वेशाम विरोधेना पूजा कर्म समारभेत पूर्वे रक्ष थोड़ा सी लेने पूर्व दिशा मान देखो चार दिशा में फेंकना है पूर्वे रक्ष गोविंदम आग्नेयाम गरुड़ध्वज अटिने आग्नेयाम गरुड़ध्वज नारसिंहस्तु नैऋत्य वाय छोड़ो वायव्याम मधुसूदन अटिने उतरो श्रीधरो रक्षे देवम दशा दिशो रक्षे वासुदेव थोड़ा आकाश को नहीं एवं दशा दिशो रक्षे थोड़ा जमीन मत है वासुदेव जनार्द जीवन आत्मा ले ना प्रमाद हाथवार गुमान बारे नोक दो राइट हैंड में ले लो सब जीवन आत्मा ले प्रा हाँ प्लेट में ले लीजिए छाप दे दू छाप में ले लो बने या कटोरे ले लो हाँ इनमें छोड़ दो सब अबे आपकी कटोरी आ रही है ठीक है आप इनमें छोड़ता रही जो पचास बारह नौका दीजिए अपने एक साइड में

और एक जना उठ ना कोई बारह नौक दीजिए, ठीक है भाई कोई भी खोल दीजो भैया, तो पहले चिता दियो और मोजा जी का पैर जुड़ा है वे खोलने पचे बैठो रोमू चमड़ा रो बेल्ट है चमड़ा रो मोहन बटवो क्यों पच गया महाराज आपने बोला नहीं और बस पाचा हाथ धो लो साबरा लोटो है नहीं आपका ना हाथ धो लो पुनः हस्तो प्रक्षाल्य हो हाथ धोने जल छोड़ दो नीचे हस्तो प्रक्षाल्य हो हाथ धो लो हाँ पुष्प हाथ में राखो पंकुड़ी और गजानंद जी महाराज ध्यान करो गजानंद जी की पूजा प्रारंभ भी रही है हाँ हाँ लो सर माखन गजानंद जी सब पुष्प आ जाए जरवन कह दीजो मैं ध्यान बोलू गजानंद जी रो ध्यान करना रिद्धि सिद्धि सहित ठीक है ओम गणानंद वाह गणपति गम जीवन हाथ में पुष्प राखना हो वासुदेव डब्बा में नहीं ओम गणानंद वा गणपति गम ममामहे प्रियानंद वा प्रियपति गम ममामहे निधि नंद वा निधिपति गम ममामहे वसो ममाहम जानि गर्भधमा तो मजास गर्भधम्मा ओम नमो गणेभ्यो गणपति विश्वभो नमो नमो व्रातेभ्यो व्रातपति विश्वभो नमो नमो गृहसेभ्यो गृहस्पति विश्वभो नमो नमो विरूपेभ्यो विश्वरूपेभ्यो

ओम पंच नदी सरस्वती मपयांति स्रोत सरस्वती तु पंचधासो देशे भवत्सरित श्रीमन्माकणाधिपते नमः एक तंत्रेण पंचामृत स्नानम समर्पयामि पंचामृत स्नानान्ते श्रीमन्माकणाधिपते नमः ततो संपूजयेत। अब गजानन जी रह जो कुकुरी चंदन की टिकी दे दे पंचामृत धीरे धीरे पहले गजानन जी अभिषेक करो ना, क्योंकि गजानन जी कहना है पार्वती जी बीजा तो खड़ा खड़ा अभिषेक वेला नहीं जाता है, गंधाक्षत पुष्प कर दो ना यार। पर यार कहने है क्या जर आप हाथ राख जो एक दूजा रागू आगे आप यार हाथ राख जो आगू आगे सब कड़ी जुड़ जाए जो है अट्टी नान बैठो जो अट्टी दे यार हाथ लगा दीजो भाई तू बाबू अट्टी ना जा हाथ लगा दे चलू करो सा टिक्की दे दीजो आप पुष्प रिपंकुड़ी चढ़ा दीजो आपने पेट्रोलियम जोड़ा क्या पुष्प या आप आगे दे दीजिए साहब पुष्प नहीं बैठा आपने कटोरी में ले लो।

इन्हें देखो काको सा, यूं रस निकलना चाहिए, करो ऊपर महादेव रे दबाओ, रस अभिषेक करना है, ओम नमः दबाओ, रस आवना चाहिए बाहर है, ओम नमः संभवाय यजमयो भवाय यज नमः शंकराय, पानी गाल लो, पानी गाल बस, पानी गाल लो, रस अभिषेक, आप तो बाहर जाओ, अरे रुको जा ठा पड़े कहना कहना अभिषेक भाई, थोड़ी देर रुको जा, आनंद आवेला चीज रहो, ओम ओम या फल निर्जा फला बुकवा या सुख बनी लो, ओ बृहस्पति बसू लो भगवान आप ही बृहस्पति बसू था नो तोड़ने माते रस तो अभिषेक बृहस्पति बसुता स्थान मुंचन तो गौ असह अरे वाह थाली दो तो मे... वो थाली लेना मतलब इतना वगैरह सब उसमें ही है ये हाँ ये थाली लिया पूरी बस इसमें क्या है इतना बड़ा है मैंने कहा इतना इतने वगैरह आम बाता नहीं भाई अब है क्या और लो चावल थोड़ा चावल चढ़ाओ निनान करो लो सर ओम प्रिय यस्मै यवास्मै माथास्मै तीलास्मै मुरुगास्मै कलवास्मै प्रियंगवस्मै श्यामागास्मै नीवारास्मै गोधूमास्मै मसुरास्मै जगदेन कल्पन्ताम साम सदासी देवता अभियो नमः धान्योदक स्थानम समर्पयामि धान्योदक चंदन गण चंदन लगा निनान कराओ चंदन मालिश करो चंदन रे त्वाम गंधर्वा कंदसत्वाम इंद्रस्त्वाम बृहस्पति त्वाम ओकदे सोमो राजा विद्वान यक्ष्माद मुच्यत पांच जल डालो पांच जल डालो वासुदेव जल डालेगा तू ओम शुद्धवालो सर्वशुद्धवालो मणिवाल सदाश्विनाः श्वेता श्वेता

सहित वरे वीर उदा पारिष्णव पुष्पोदक स्नान पास जल डालो भाई वासुदेव। पुनः शुद्ध उदक स्नान पुष्प शुद्ध जड़ो पुनः शुद्ध उदक स्नान समर्पयामि शुद्ध उदक स्नानाचमनीय जलम समर्पयामि नमः आचमनीय जलांत साम सदाशिव हिरण्य उदक स्नान मोलो नान करो ओम मह हिरण्य गर्भ समवर्तदाग्रे भूत जातपतिरे काशीत सदाधार प्रतिवीद्यामुदयमांक समय देवाय अभी का विदे हिरण्य उदक स्नान समर्पयाम हिरण्य उदक स्नान दय हाथ मंडो सा आदो इतर ओंगली मत जाए इतना जिना जड़ता आयो सा महादेव रे कराम महादेव रे नॉन करामणिया लगो ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधं पुष्टिवर्धनं मा उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षयेमां वदा साम सदाशिव देवताभ्यो नमः शुद्धो सुगंधि द्रव्योदक स्नानं समर्पयामि सुगंधि द्रव्योदक स्नानान् पाच जलु पुनः शुद्ध उदक स्नानं आचमनीयं जलं समर्पयामि नमः आचमनीयं जलान्ते सौभाग्य द्रव्योदक स्नानं मा देतो भाई इदे लेटी खोल न दे अरे खोल मारा अरे घी लागो रे अरे घी है गई अरे यार जिन्हें घी घी को नहीं खोल न दे ओ है अबीर गुलाल सौभाग्य द्रव्यो हाँ आप देख लीजिए लोटा भी जहाँ एक लोटो राख जो बाकी बोली दे दीजो एक लोटो मारा तो सही जरा आप दारू जल रही आरती बीजी करो जरा चलो और तंबर एक लोटो राख दो पड़े आरती बस जल रही आरती करो कैसा लारू चलो सौभाग्य द्रव्यो द स्नान माओ मघौ सुदाद यज्ञौ सो प्रचदा बरुगा बरु धनस्ते सो ममवतु मदाय और सो वचुदह ओम गंधद्वाराम दुर्नादरसाम नित्यपुष्टां करीषणेमीश्वरीं सर्वभूतानां त्वामियोपवये श्रियं बस पाच जड़ू ओम मई मालिश करो ओम मई रिव भोगे हे परेति बाउज्जायाय तिम परिबाधमानो हस्तगनो विश्वावयुनानि विद्वान् लय भाई विद्वान् तुमान तुमान गौ संपरिबाध विश्वदः ओम महिरी वभोगे हे परेति बाउज्जाया हे दिम्बरी बाधमान चढ़ा चढ़ा हस्तगुण विश्वावयुना चढ़ा दे विश्वावयुना विद्वान तुमान तुमान गौसम परिबाद विश्वद बस अबे महादेव रे मात कपड़ो धक दो शिवलिंग माते मात कपड़ो धक दो भाई शिवलिंग माते वो अबोट एक कपड़ो ढकने रख दो शिवलिंग मा दो मिनट वास्ते अंगो चलो भाई वो अबोट भाई साहब वो लेना अंगो छो ढको इन मात शिवलिंग माते ओम महो ओम नमः शंभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च नमस्काराय च शिवाय ढको ढको जल्दी आगो नहीं राखो बस दो मिनट छोड़ ढकियोड़ो कन्नू कन्नू बाण पूछ लो दूजा कपड़ो वो एक दूजा कपड़ो वो नहीं गमचो एक और बोकट है इन कन्ना कन्ना बाण एक परिधि पूछ लो परिधि हाँ इन परिधि पूछ लो ने हटाओ हटाओ बिंदु भले चंदन की टिक्की तैयार रखो टिक्की देव ने पछे हटामी चंदन बढ़िया आप रखना हाँ टिक्की दे दो आप टिक्की दोगे नहीं बस अब नीचे पूछ लो बॉन्ड बीजा सब साफ कर लो टीन पूछ लो इन अंगो छो पूछ लो बस पूछने गए नीचे साफ से पैसा जाड़ी आगे ले लो ताकि कहिए वो नीचे वो पानी निकल जाए बाहर सब मोटो काम है जाली हटालो एक बार परमानेंट ताकि पुस्तक बीजा इन जाली दो मिनट लाले रख दो बस अब पुस्तक बीजा हाथ यू मौन ले लो या एक कोतली में गाल न पीपल में बारह विसर्जन कर दो पेड़ में तो कागज बीजा ले लो नहीं कागज इनमें फाड़ना है नील पत्र है वो इनमें खाली नहीं है ठहरो और खाली कर दो यहाँ पर अगरबत्ती बिची लगाओ जो थम्बार जो घिरी गई पोजीशन है और बहुत मोटा काम है सर जोरदार हाँ और एक जना पानी काल लो साटी जिको सब वो कचरा बटी ने बह जाए और एकदम साफ पेड़ चाहिए जा परिधि चौकट है के मॉल ली ताकि कही है अपने दूजी बार ओड़म्बो नहीं रहे के भाई
ताकि और नहीं कहेगा भाई यूर यू छोड़ने गया प्रमर है गंदगी एकदम व्यवस्थित और पाचो एकदम सूखा गंदा पूछना है परिधि भी नीचे ठीक है ना काम तो ये ऐसे ही होना चाहिए तरीका तो यही है एक मिनट नाग देवता ने नॉन करा दो एक लोटो भरने पानी नाग देवता माते सेव दो नाग देवता ऊपर अब देखो ज्योत आगा ले ज्योत रमान जाता रही पानी हाँ नमो सर्पेभ्यो जय के चवर्तवी मनो जय अंतरिक्ष जय विदितेभ्य सर्पेभ्यो नमः शुद्ध उदक स्नानम समर्पयामि बस अब है थोड़ा पानी हाथों वटी ने कर दो जिको हैंग जातो रहे विद्वान जाली में गयो सब पानी रुकियो तो नहीं है ठीक है जरा भाई इत्र लगाना बरक लगाओ भाई नाग दे पहले इत्र बरक लगाओ बरक लगाओ ना उनसे भूलो मत मन सब याद है आप भूल जाओ मन याद रही क्यों मैं भूलू कौन सा इत्र ने बरक ने भेजा तो जरूरी है सिंगार में बरक कट गए वो बरक वहां पर गिर गया ये रहा चारों तरफ से इन्हें शिवलिंग रे माते आगे आगे हमें मेन हम लपोट सामने चिपना चाहिए बरक और बरक तैयार है सामा करना खोल न दू आपने आपरा गिल्ला आता क्या चिकना खोल न दू ता भोरो लगा वाला रुई कन्ना ले लो आप हाथ गिल्ला नहीं चाहिए जला दिया हमरा सामने दो मारे भी कही एक्चुअल में वो विंटर महाराज लोटो भरना दिया के पंचम मारे याल घी लागोड़ा हाथ रहे चिकनाट है हाथ में इतनी की कर आनंद आयोग ने विशेष रहा अबे आरती बाकी है सिंगार करियो बचा सिंगार बाकी है बचा आरती करो महाराज ने बुला दो आरती में महाराज रातू करा दो आरती रूई ले लो वासुदेव आप दो जना रूई ले लो जूर बड़क लगाए खट रूई यूं पुश करना रगड़नी नहीं है हाँ देख यूं पुश करनी है रूई रगड़े पाछ उतर जाएगा बड़क पहला साहब हमो लमो पूरा पोर्शन कर दीजो क्लियर न पचे लारू लाल लो पचे लगे जो ओम ओम मगौंसो नाद यगौंसो प्रचदाम बरुगा बरुगंध से सोम अवतु मदाय मदाय रसो अच्युत ओम रचित पत्र मोपनयामि नमः हाथ चिपचे आप तो बेजी को चिपियो जी तो रुयू आयु दबाओ हमल अमल पोर्शन पूरा क्लियर करो सा लारू पचे लगे जो हमल अमल साहब जटिन उबा के साहब अटिन हमल अमल पूरा क्लियर करो आप पहला क्यों बरक इतना नहीं है पूरा लिंग मात आ जाए पहले हमलो हिस्सा पूरा कवर में जाना चाहिए आप बिल्कुल एजिन हित में उबा के वो क्लियर कर दो आयाची ना उबा यो ना पूछो देखो हम उबा ए बता सके निरही है वो बरक तो इनमें खूब आवे बड़ पानी उगई एक पाच उकल जाए कैम ना सही है यार अभी अरे लो ऊंचो लो इन्हें इन्हें ऊंचो लो रुयू रुयू अरे साहब रुई नहीं आप हाँ यू रुयू पकड़ो अरे बटी नहीं नहीं आगे लगाओ साहब आगे लगाओ नारे लगाओ हमें लगाओ देखो हमें बाकी है नहीं तो
कोर्स हम अमर लो पहला पूरा क्लियर करो, लारे तो कोई बात को नहीं, हमें हमें लागना जरूरी है। जल बंद कर दो दो मिनट, जल बंद कर दो मिनट, कोई रुकने साधन देता हूं। दो मिनट बंद कर दो, नहीं सर सिंगार दो जी तो पता चल। हाँ लगा दो, नहीं रोक दो मिनट जल ला, क्यों है सिंगारो नहीं तो बैंड बैंड बाज जाएगा। बस ये गया, बाकी वजह हैंग लगा दीजो। अब रुई साहब रुई दबाओ नहीं आप, देखो बर्क लगाया आप, हाँ सर। अबे चंदन है, आप चंदन की कटोरी ले लो और ओम बना बना माता है पतला पतला एकदम गोचाऊ, और चंदन रे कटोरी पड़ी इन आपने गोचो तैयार करने दू, इन गोच के औंगली लगा बन जाए ओम और त्रिपुंड, हाँ त्रिपुंड बनाओ सा बरगा बल ये पानी जड़ तक बंद नहीं बह नहीं सा, जड़ तक अपनों काम सकते सिंगार वालों नहीं बहला। ऊपर पानी इन्हें बंद करना पड़े, आया था यज्ञ पवित्र और वस्त्र उपवस्त्र पहला चंद शिवलिंग ओम यज्ञ पवितम मर्म पवित्र मृदापतय सजम पुरस्तात् आयुष्य मुग्रम प्रतिमंच शुभ्रम यज्ञ पवितम बलमस्तु तेज कोपी न वस्त्र कोपी न वस्त्र साम सदाशिव देवताभ्यो नमः वस्त्रम वस्त्रम समर्पयामि सुजातो ज्योति नीचे कर दो सेठ बोले वा ठीक है सुजातो ज्योति पचे सुजातो ज्योति का सर्म अवरुधमा सदत्वासो मैं विभावसो वस्त्रोर्प वस्त्रम समर्पयामि वस्त्रोर्प वस्त्रांते चंदन ने टिक्की लगा दिया। बिल पत्र लो, बिल पत्र ने श्रृंगार देवना दो जो ने बुलाओ आपका बिल पत्र एक एक बिल पत्र लारू तोड़ तोड़ ने देवणी सही चला एक ऐसी का डोंगला है के ने यू तोड़ ब्रो न पर सड़ा मनो नियम है जिको भी कोई है दो जना सही चला आप रखना क्यों आप इकला श्रृंगार करो बारे हैं बाकी गप्पा मार रहे हैं हो आप आ जाओ वो बढ़िया रहेगा ज्यादा। मैं बोली इन वास्ते को नहीं सक मैं देख तक बारह कहीं हैंग बिना गप्पा ठोक दिया उबा उबा बिल पत्र दारू डोंकला तोड़ तोड़ने देवना बिल पत्र गणई है हैंग होना दूंगा मार। ओम नमो बिल बिलोसा ओम नमो बिल बिने चकवचिने च नमो वर्मणे च वरुथिने च नमः बेटा आप रामु तोड़ तोड़ने चढ़ाओ सब मेरा श्रद्धा ये सुश्रेणा ये नमः लो ए टुटुड़ा ऐसा डंटल ओम नमो बिल बिने चकवचिने च नमो वर्मणे च वरुवस हैंग ऑन बुला दो पर चढ़ा दे के बिल पत्र डंटल टुटुड़ा है चढ़ाओ आप तैयार है दोई नमो बिल बिने चकवचिने च नमो वर्मणे च वरुथिने च नमः श्रद्धा ये सुश्रेणा और लारू जी का डोंकला वे के उबर जोड़ो ओ तोड़ना आप शिव जी रे माते 1000 बार पाछो दो दोन चढ़ा सको इतो शिव ने प्रिय है बिल पत्र 1000 बार।

और लाडू डंटल टूटोड़ो चाहिए जाए बस। लो साहब टूटोड़ो है, चढ़ाओ आप। ओ डंडो थोड़े ना। ओम नमो बिलबिने च कवचिने च नमो वरमिने च वरुथिने च नमः सुताय सुश्रेनाय च नमः। चारों तरफ सजावण है, बिलपत्र ओम नमो बिलबिने च कवचिने च नमो वरमिने च वरुथिने च नमः सुताय सुश्रेनाय च नमः। दुंदुभ्याय च लारू डंडा तोड़ तोड़ सजावण है, बिलपत्र श्रृंगार करना है। आ टूटियो है मारे, तैयार करने दियो तू फेंक दे ना। चारों तरफ बॉन्ड है गे, बॉन्ड चारों तरफ बिल पत्र रसिंग मैं दे दी, पूरा पैकेट दे दिया मैंने। ये अंग्रेज ने दे जाओ, और शिव जी अंग्रेजों ने दे के बिल पत्र चढ़ा अकेला मैं करूं कोई बैठा मान दिया ही। ओम नमो बिलविने च कवचिने च नमो वर्मिणे च वरुथिने च नमः सुताय सुश्रेनाय च नमः। दुंदुभ्याय च अनन्याय च त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिदय त्रिजन्म पाप सम्मारम एकम बिल्वम शिवार्पणम। अब नाग देवता ने बैठा भाई टिक्की देने, नाग देवता टिक्की दो, चंदन ऊपर बैठा दो। नाग देवता माते बिल, नाग देवता माते बिल पत्र चढ़ावना है। हाँ ऊपर बैठ बजाओ जैसा, या नहीं नाग देवता विराजमान करो। मुंडो में राख जो बिल्कुल सीधो, गेट है क्या गेट रॉम में, दरवाजा है दरवाजा रॉम में रखी। हाँ बिल्कुल इन माते बिल पत्र रखो दो चार, नाग देवता माते अट निरे पड़िया अट देखो नीचे बिल पत्र पड़िया, ए भी सब सही है। अबे चंदन कितना, एक मिनट चंदन कितना है थोड़ो ही है, रंगोर लाग जी ठीक है चर्चा लाग जी रंगोर है ठीक है चलन दो। अबे चल गया बस, अबे माला पहनो माला काटो इन महादेव री वे पुष्प वे खुला पुष्प थोड़ा सी पुष्पांजलि वास्ते राख दीजो विनय कोतली में ही कोतली गई है। ओम नाना सुगंधिम पुष्पाणी यथा कालो, एक और मोटी माला है जिसे महादेव रे यथा कालो ध्वान छो माल तेज मगादी निग्राण परमेश्वर साम सदा शिवाय नमो नमः। एता ने पुष्पहारम सब, एक आपको पुष्प रखो बिल पत्र रमाते और एक नाग देवता रे माते दो पुस्तक ले लो जो कहलावे बुझ गया चढ़ा दो। सेवंतिका बकुल चंपक पाटलाभ जय पुन्ना गजाति कर वीरल साल पुष्पै बिल्व प्रवाल तुलशीदल मंजरी भी त्वां पूजयामि। हेलो चढ़ो शिवलिंग माते त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीदौ साम सदा शिवाय नमो नमः। इतानि सुगंधि पुष्पाणि समर्पयामि, सुगंधि पुष्पांते धूपमाग्रापयामि। प्रत्यक्षम धूप दिव्यताओ भाई चंद्रमा मनसो अगरबत्ती लगाओ पहुंचा चंद्रमा मन सब शिव जी रखा आरती कर पाची स्टैंड में लगा दीजिए, केड़ार स्टैंड अट पड़ी अट खूणा में अटो इनमें लगा दीजो ताकि एकदम खुशबू रहे जोरदार मारा जावे तो जी और रहे मेरे में बढ़ने रख दो बट महादेव जल रही आरती करो जर कौम आ जाए बट पट्टी है काली पट्टी मात रख दो बट आगे जल रही आरती करो जर कौम आई। धूपम आग्रह पयामी धूप दीप बताओ महादेव ने, धूपम आग्रह पयामी प्रत्यक्षम दीपम दर्शयामी नमः। चंद्रमा मंद सो जात सो सूर्यो जायत सोत्रद्वा युश्च प्राणश्च मुखादग्निर जायत। धूपम आग्रापयामि प्रत्यक्षम दीपम दर्शयामि धूपाय नमः दीपाय नमः
ధూపం ఆగ్రహపయామి, దీపం దర్శయామి, ధూపం దీపాంతే నైవేద్యం నైవేదయామి, నైవేద్యం లోభై అడ్వాన్స్ మారు సబ్ తయారీ తో శృంగార తోరా తు కరా జర భై అడ్వాన్స్ మారా చలియో శృంగార కియా బినా కామ ఆవె గుని बेलपत्र घने पड़ी ऐसा पोतली भरी पड़ी है देख। अरे होना शिवर देखो पात्र लगाया गया थाली बट नीचे आगे फिर और यूं कर दीजिए बटे नीचे अबे क्यों बिल पत्र भेजा जल रो है को नहीं जल रो है तो तुमने गन्ना पूछ ले पजा थाली रख दे वना चौक तो वना और पात्र है शिवर भोजन रो आएगी गमन में और बना दीजिए जिसको मैं थाली में बनाई हूं चौकट बनाए देखो करना कपड़ा बारू का आया बाल ले जाने अट पड़ियो तो अटिन पड़ियो तो हाँ ओज और एक काम सिद्ध है बढ़िया है तो बड़ा पटरा तो काम थारो काम सिद्ध है शिव ओ थारो तो काम सिद्ध है सब हो रहा बीच में बस देखियो ले जा थाली लो सा दो महादेव रे भोग रखो यू रू मीन पात्र रे माते हाँ अब आगे अब पुष्प मौन है रख दो प्रसाद में पुष्पे नाचाद्य घंटी बजाओ घंटी घंटी बजाओ ओम नाभ्यास समावर्त बुद्ध्या सोत्रा सता लोकाम प्राणाय स्वा गाय स्वा मुदानाय स्वा ध्यानाय स्वा व्यानाय स्वा हा मध्य घंटी नीचे रखो भगवान जी मंदवार करने यू प्राणाय स्वा यू देखो प्राणाय स्वा सबानाय स्वा मुदानाय स्वा व्यानाय स्वा व्यानाय स्वा दो बार जल गुमान छोड़ो दो बार जल गुमान छोड़ो जल रहो और घंटी नीचे रख दो घंटी नीचे रखो पहला जल रहो जल गुमाओ नट छोड़ दो हाथ में ले न जल यू हथेली में घुमाओ जल दो बार हाँ नीचे छोड़ दो जमीन माते एक बार और छोड़ो जल लेने नीचे नैवेद्य मध्य पान्यम समर्पयामि उत्तराभूषणम समर्पयामि धनुर मुद्राम ग्रास मुद्राम कृत्वा नैवेद्यम नैवेदयामि नैवेद्यान्ते उत्तराभूषणम भगवान जी मंदमार करो पाचे के एक बार तो थोड़ा और लेना पड़ी भगवान आवे जरे मंदमार करो गए घर कोई मेहमान आवे जरे खास भगवान जी है मंदमार करोगे एक बार तो लो आप थाली रमो ने खाली कर दो थाली रमो ने रख दो नैवेद्य मुद्राभूषाणम समर्पयामि नमः उत्तराभूषाणान्ते फलम समर्पयामि लो रखो या पर्णी जा बना रूपाया रूपणी बृहस्पति प्रसूता स्थान चंद्रमोद दंपन लो भाई दंपन मया देव सापितं पुत्रस्तम भवेतं सुप्रभा जमा जमा भवेतं सुप्रभा वाप्ति भवेयं मम जन्मने फलम समर्पयामि नमः या पर्णी जा बना रूपाया सर वाट ना या पर्णी जा बना रूपाया रूपणी बृहस्पति प्रसूता स्थान चंद्रमोद दंपन फलम है हाँ हाँ तो रख दो आप भगवान का प्रसाद दे दीजिए रहना मोड़ दीजिए लो इदम फलम मया देव स्नापितम पुरुषोत्तम भवेतन सुफला वाप्तिर भवेर जन्मनि जन्मने फलम समर्पयामि फलांते फल तांबूलानि समर्पयामि नमः लो पुंगी फलम महावीर्यम नाग एलादि चूर्ण संयुक्तम तांबूलम प्रतिगयताम साम सदा शिवाय नमः इन परात में रखो नहीं फल बीजा सब इनमें जमाओ लाके कोई भूख लागोड़ा कह रहा परात में बीजा रखो जरा जमान रख जो प्रेम पूर्वक अपन नहीं चाहूं कोई जल्दी नहीं है।

0: एक माला पड़ी हुई है के मोटी देखो
1: नीचे दो दो करिए
0: पढ़ो महादेव ने जरा खुल्ला पुस्तक काट ने जमाओ बढ़िया चारों तरफ बॉन्ड माते एक माला खोल दो वासुदेव जी ने चारों तरफ पुस्तक जमा दो पर एक माला खोल प्री ने पुस्तक जमा दो बाजर मा पुस्तक जमा ना पुस्तक खुल्ला दो इन बॉन्ड माते परिधि एक अटे नहीं ऊपर परिधि यान बताओ वासुदेव जी हाँ यू जमा నానాసుగంధిం పుష్పాణి యదాగాలోద్వాని జపమాలతి జపగాదిని గ్రాణాపర్వం నైవేద్యాన్ నైవేద్యాన్తే ఫలం సమర్పయామి యా ఫలనీర్జా ఫలాభుక్వా యా శుభగుణే బృహస్పతిర్ ప్రసూతాస్థాన ముంచద్వగమసా ఫలాంతే ఫలతాంబూలాని సమర్పయామి నమః పుంగీ ఫలతాంబూలాని సమర్పయామి ఏలాదిచూర్ణ సంయుక్తం తాంబూలం ప్రతిగయ్యతాం తాంబూలాని సమర్పయామి తాంబూలాంతే హిరణ్యగర్భదక్షిణాద్రవ్యం మా लो भाई आ दक्षिणा बट रख दो हाथ लगाना गौरी हिरण्य गर्भाव समावर्त आग्रे भूत से जात अटे प्रसाद रे ऊपर हिरण्य गर्भाव समावर्त आग्रे भूत से जात अपतिर एक आसीत सदा दारो पृथ्वी ध्याम तो इमांग स्मय देव एक आखो पुष्प यार विश्व रखे नहीं देती शिवलिंग माते विश्व रख पुष्प बिल पत्र माते विश्व वाले पुष्प इत गया ऊपर ऊपर सा शिवलिंग बिल पत्र ऊपर बिल पत्र ऊपर पुष्प कटे हाँ अटे रखो लो सब जगह चढ़ाया भाई और रख दो और लो अब नारियल लेने बैठना है हेंगो हाथ लगाना है एक और नारियल ले लो बैठो नीचे और मैं बोलू छू बोल रहा हूँ मार लार लार है मैं बोल रहा हूँ नीचे बैठना जेटे जेटे बैठा जेता स्थान बटे बटे पाचा बैठ जाओ जी हर जेटे स्थान हो जेटे जेटे वे बटे बटे बैठ जाओ और मैं बोलू छू बोलना है हाँ एक दूजा नहीं हाथ लगान बैठा जी ऊपर हाँ अच्छा नचो रमो रमो फुटे नहीं सीसी हाँ हाथ में रखो नारियल हाथ में रखो ना भाई एक जनो पकड़ रख लो हाथ में बाकी आएंगे हाथ लगा दो और मैं बोलू चू बोल इन्हें डायरेक्शन नहीं पता सुना रही हाँ इन माते थोड़े चावल और पुष्प पंखुड़िया रख दीजो बोलो सा पत्रम पुष्पम फलम तोयम रत्नानि विविधानि च ग्रहण अर्घ्यम मया दत्तम देहि मे वांछितम फलम रूपम देही जयम देही भाग्यम भगवन देही में पुत्र पौत्रान धनम देही सर्वान कामाश्च देही में फलेन फलितम सर्वम त्रैलोकस्य चराचरम फलस्य अर्घ्य प्रदानेन सफला संतु पूर्णा संतु मे मनोरथाः गतम पापम गतम दुःखम गतम दारिद्र मेवच आगता सुख संपत्ति पुण्योहम तव दर्शनम हाँ और नारियल है कैसा आप मस्तक रे हृदय लगा शिव जी रे अर्पण कर दो, हैंग ऑन आगे दे दो भाई लोगों ने, हृदय रे मस्तक रे लगा ने शिव जी रे कने भेंट कर दो सा, के शिव आप रो मैं फल भेंट करी और भगवान ने पाचो फल प्रदान कर दे, कही आपे तो भगवान को तो मांग सको जगह

महाराज आ जाए, बाद में आरती चालू करो। आरती तैयार है, आ लो सब एडवांस सिर्फ आए जो छोटी बड़ी करनी पे या पांच वाली करनी पे तो देख लो, मार तो तैयारी है। हाँ चाहे हाँ चाहे लो, आप बटा के रखो, देखो कोई घुड़ा दे नहीं कर दे नहीं, अपना ध्यान दो। सब अगरबत्ती और पचे लगा दीजो, अगरबत्ती और कम पड़े तो और लगा दीजो, आप रखने जाको। और देखो सर एक कपूर आड़े कट नहीं रखे, जिका पत्ता माते एक कपूर रखे, जो चार आते तो हाथ बड़न लाग जाएगा आरती करेला जी ने पौन रहे पत्ता माते। आपने ध्यान रखना क्यों मैं बोलूँ आरती हट बैठना है, तो कही है कि भाई हाथ चार रख दे ला तो थाली पे जाएगा गर्मा गर्म तो पकड़ नहीं सके आरती भी। यूं एक एक कपूर सिर्फ पत्ता माते रखना है। हाँ सर आप ध्यान रख जो बच्चा वगैरह यूं नहीं किनारे पड़िया चार हाथे चेदना वो नहीं, ध्यान रखनी चाहिए एक एक एक एक कपूर। मैं जोधपुर ब्रह्मपुरी सा, आप हुकम।

देवता पुष्प घुमाने महादेव माँ चढ़ाओ सब पुष्पे देव महाराज जी दो महाराज जी दे दो हाथ में पुष्प पुष्प दे दो पुष्पे देवता अभिवंदनम आत्म कल्याणार्थ आत्मा अभिवंदनम पुष्प दे दो पंकुड़ी ये शिव जी के ऊपर अर्पण कर दीजिए महाराज आरती। अब आप थाली ले महाराज जी आरती सब जिन आरती ले लो आरती ले ले और निश्चय रख दे सी महाराज जल्द आप थाली जल्द आरती करनी है हाँ सर।

उजल रो चौटो लगाओ सब जगह पहला मूर्ति है रमा दे सब और पचे सब जगह जन समुदाय खड़ा है भी रमा दे ले जी सर पुष्पांजलि ओम यज्ञेन यज्ञमय जन्त देवास्तानि धर्माणि प्रतमान्या सन्नादेह नाकं मैम सचन्द्र यद्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः ओम राजाधिराजाय प्रसय्य

0: ओम चतुर्भिश्च चतुर्भिश्च द्वाभ्याम पंचभिरेव च भूयते च पुनर्द्वाभ्याम यज्ञोत्तरात्मने नमो एकदन्ताय विद्महे वृक्कतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात। ओम कात्यायन्ये च विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो पार्वती प्रचोदयात। ओम स्वामी कार्तिक देवाय विद्महे स्कंद देवाय धीमहि तन्नो स्वामी कार्तिक प्रचोदयात। ओम नंदीश्वराय विद्महे वृषभदेवाय धीमहि तन्नो नंदीश्वर प्रचोदयात। ओम वासुकी देवाय विद्महे नागराजाय धीमहि तन्नो वासुकी प्रचोदयात। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। चरण कमलेभ्यो नमः मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि नमः कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात् प्रभावात् प्रगति सभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै सदाशिवायेति समर्पयामि सदाशिवायेति समर्पयामि शंभवे नमः शंभवे नमः शंभवाये नमो नमः। मात देवा की जय।
1: और जय बोला।

बोलिए श्री दीपनारायण भगवान की। श्री दीपनारायण प्रार्थना के बाद विद्यालय के लघु कार्यक्रम जब जब धरती पर अज्ञान का अंधकार छाया है तब तब द्वारकाधीश ने अवतार लिया है। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युथानम धर्मस्य तदात्मनम सज्जामि हम। मैं बुलाने जा रहा हूं तृप्ति निकेश संतोष। कृष्ण की बाल लीलाओं पर भजन एक गीत है उस पर नृत्य प्रस्तुत करेंगे नटकट कान्हूड़ो। जन्म जन्म के रिश्ते लेकर सब प्राणी जग में आते हैं यहां दोष किसी को मत देना मुरली श्याम बजाते हैं। सुंदर नृत्य बालिकाओं द्वारा।

विद्यालय के बालक बालिकाओं ने श्री कृष्ण भगवान की बाल लीलाओं पर सुंदर नृत्य प्रस्तुत किया। श्री कृष्ण और राधा, श्री कृष्ण और गोपियों का प्रेम निश्चल था कि कागा सब तन खाइयो, चुन चुन खाइयो मांस, बस दो नैना मत खाइयो, जामे पिया मिलन की आस। गोपियों के साथ रास का प्रदर्शन बालिकाओं ने, बालक बालिकाओं ने यहां प्रस्तुत किया। मैं बुलाने जा रहा हूं कक्षा 12वीं की छात्रा निर्मला सांखला को, जो जन्माष्टमी क्यों मनाई जाती है इस विषय पर भाषण करेगी। निर्मला सांखला, इसके बाद तैयार रहें गीता श्लोकों का वाचन करने के लिए।

0: कक्षा पंचम के विद्यार्थी भाषण निर्मला सांखला।
1: हरिओम। आज के इस कृष्ण जन्माष्टमी के पावन पर्व पर उपस्थित पूज्य गुरुदेव श्री महेश्वरानंद जी, प्रेमानंद जी, प्रधानाचार्य जी, प्रधान अध्यापिका जी एवं विद्यालय में उपस्थित मेरे समस्त अध्यापक व अध्यापिकाएं और मेरे भाई बहनों, मैं आपके सामने भगवान श्री कृष्ण के क्रियाकलापों पर प्रकाश डालना चाहती हूँ। भाद्रपद माह की कृष्ण पक्ष अष्टमी की मेघा छंद उस अर्धनिशा का रहस्य शायद प्रकृति के गर्भ में ही था, क्योंकि कौन जानता था कि कंस के कारागार में जन्म लेने वाले दिव्य शिशु को वंश युगों तक प्रेम के संदेशवाहक बन जाएगी। धन्य हुई होगी वह अष्टमी रोहिणी नक्षत्र एवं कृष्ण पक्ष की निशा का चंद्रोदय, जिसमें भगवान विष्णु के पूर्ण अवतार शेख चक्र गदा एवं पद्मधारी चतुर्भुज स्वरूपा मां अवतार श्री कृष्ण के तेजोमय प्रकाश से समूचा कारागार आलोकित हो उठा। ज्ञान मार्ग में ज्ञानी बनकर गीता रस दी तो भक्ति मार्ग में प्रेम की ऐसी सरिताई बहा दी कि उनकी ब्रह्म के महारस में स्वयं शिव व कामदेव तक निगमन हो गए। योग मार्ग योगेश्वर श्री कृष्ण कहलाए। कृष्ण का जन्म ही नहीं, उनके कर्म भी दिव्य थे। ज्ञान उपासना एवं क्रम कर्म के विशद ग्रंथ गीता के उपदेशक चमत्कारिक बचपन महाभारत के रणनीतिज्ञ जैसे उनके विविध रूप आश्चर्य चकित होने वाले हैं। हर दृष्टि से संपूर्ण कृष्ण की स्त्री समान जीव स्नेह और दुष्ट हंता जैसी गहन लक्ष्य साधक अनंत लीलाएं संदेश देती हैं, जो आज महावतार के रूप में किया योग से योग मार्गियों को संतुष्ट करते हैं। कृष्ण के बखान में असंख्य सरस्वतियां भी असमर्थ हैं, क्योंकि पीताम्बर व मोर मुकुटधारी यशोदा का कान्हा, सुदामा का मित्र, गोपियों का प्रेमी, यादवों का रक्षक, अर्जुन का सखा, रुक्मणी का परमेश्वर, राधा का प्रियतम, दुर्धर राजनीतिज्ञ आदि असंख्य रूपों में विभूषित होकर प्रेम के अनेकानेक भावों की पराकाष्ठा हुआ। यह मुरलीधर, यह लीला अवतार बाल रूप में लड्डू गोपाल जी के रूप में तो राधा के संग निर्वाक संप्रदाय के आराध्य हैं, वहीं दाऊ के साथ जगन्नाथ जी के रूप में करोड़ों जनों की आस्था का केंद्र हैं, तो कहीं श्रीनाथ जी के रूप में अकेले ही विराजमान हैं। कुल मिलाकर इनका जीवन संपूर्णता का प्रतीक है। हरिओम।
0: धरती पर कंस का आतंक बढ़ गया था। उस आतंक को खत्म करने के लिए उनके भांजे के रूप में कृष्ण ने अवतार लिया था। इस कार्यक्रम में पधारे गए सभी आगंतुकों का विद्यालय परिवार हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करता है। बाबूजी महाराज के आदेशानुसार जब उनका आदेश होगा तब प्रधानाचार्य जी महोदय माल्यार्पण करके उनका स्वागत करेंगे। कार्यक्रम की अगली कड़ी में मधुराष्टकम लेकर आ रहे हैं पंचम के विद्यार्थी। कर्मणीय वाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, श्री कृष्ण ने गीता में हम सभी के लिए ये उपदेश दिया है। नन्हे मुन्ने बालक बालिकाएं मधुराष्टकम के रूप में इसे प्रस्तुत कर रहे हैं।

0: विद्यालय के नन्हे मुन्ने बालक बालिकाओं ने
1: जननी भाषा संस्कृत में मधुराष्टकम प्रस्तुत किया। हमारे बीच इस्कॉन अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ की एक सुंदर झांकी जो आप सभी देख रहे हैं मंच के पास है। इस इस्कॉन यानी अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ का एक लघु परिचय करने के लिए मैं मंच पर बुलाने जा रहा हूं। इस संघ के सदस्य श्रीमान बजरंगी दास हस्तिनापुर से, श्रीमान ब्रज अंगी दास जी, एक बार जोरदार तालियां बजाएं इनके लिए।
2: हरे कृष्णा। सब बालिका और बालिकाओं को बहुत बहुत धन्यवाद। कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर भगवान श्री कृष्ण बलराम का सुंदर रथ महिषानंद जी आश्रम के अंदर आया है, तो इस पदयात्रा का मैं आपको थोड़ा इंट्रोडक्शन मतलब परिचय कराना चाहूँगा। ये जो रथ देख रहे हैं आप लोग बैलगाड़ी का, दो बैलगाड़ी हमारे साथ, एक भगवान का रथ है और एक इसमें रखते हैं दो बैलगाड़ी, उसमें पांच बैल हैं हमारे साथ। तो ये जो रथ है बहुत दिव्य और बड़ा अद्भुत रथ है। ये जो पदयात्रा है 1984 में द्वारिकापुरी धाम से शुरू हुई थी। द्वारिका गुजरात क्षेत्र में आता है और वहां से शुरू होकर पूरे भारत की पांच परिक्रमा हो चुकी है। पांच मतलब एक भारत का राउंड लगाना, फिर दो ऐसे करके पूरे भारत की पांच राउंड करके, और पिछले 27 सालों से पदयात्रा पूरे भारत भर में भ्रमण कर रही है। और इस पदयात्रा के ऊपर भगवान श्री कृष्ण का विग्रह विराजमान है, और इस तरफ जो है कृष्ण के भैया का नाम क्या था, दाऊ जी के भैया कृष्ण कन्हैया। जोर से बोलिए, दाऊ जी के भैया, बच्चों की आवाज नहीं आ रही है, दाऊ जी के भैया कृष्ण कन्हैया, दाऊ जी के भैया। तो ये उनके साथ में दाऊ जी हैं, बलराम उनके बड़े भाई। तो ये सुंदर रथ है, और आगे भक्ति वेदांत स्वामी जी बैठे हैं, इनका जो विग्रह देख रहे हैं। ऐसी भक्ति वेदांत प्रभुपाद इस्कॉन संस्था के फाउंडराचार्य हैं, ये संस्थापक। तो ये जो रथ है, ये स्वामी भक्ति वेदांत ने बोला था कि ये जो रथ है गांव गांव के अंदर ले जाओ और कृष्ण भक्ति का प्रचार करो, भगवत गीता का। तो ये जो पदयात्रा जो है पिछले 27 साल से भारत वर्ष में लगातार बिना रुके हुए भी ये पदयात्रा चल रही है, और ये रथ गांव गांव में जाता है और शाम को प्रोग्राम करते हैं कीर्तन भजन, और उसके बाद फिर लोगों को प्रसाद बांटते हैं और भगवत गीता पे लेक्चर देते हैं। तो ये पदयात्रा पिछले 5 महीने पहले ये पदयात्रा द्वारिका में थी, और द्वारिका से चलते चलते आज आपके महिषानंद आश्रम में आया है। और इस पदयात्रा के अंदर 25 भक्त हैं, सब अलग अलग प्रांतों से हैं। जैसे वो एक दो भक्त बैठे हैं हमारे सामने, कोई इसमें बॉम्बे का है, कोई इसमें सूरत का है, मैं दिल्ली हस्तिनापुर से, और इसमें देश विदेश के भी लोग हैं, विदेशी फॉरनर्स। तो इसमें 25 लोग हैं, और ये पदयात्रा इसका उद्देश्य जो है पर्पस, ये इसका उद्देश्य ये है कि भगवान श्री कृष्ण का जो संदेश है, भगवान श्री कृष्ण का संदेश क्या है, तो भगवान श्री कृष्ण का संदेश भगवान ने भगवत गीता में स्वयं दिया है। तो भगवान श्री कृष्ण का संदेश यह है कि सब लोगों को मेरी भक्ति का प्रचार करो, कृष्ण भक्ति का प्रचार करो पूरे विश्व के अंदर। तो ये पदयात्रा जो है पूरे भारत वर्ष में हरि नाम का संकीर्तन प्रचार करती है, लोगों के अंदर जो भगवत भक्ति जागृत कराती है। तो ये जो पदयात्रा है इसका ये परिचय है, और आगे ये पदयात्रा जो है चलती रहेगी। तो इसलिए आप लोग जितने भी यहाँ बालक और बालिका के स्कूल के जितने भी छात्र हैं, ये आप लोग का बड़ा सौभाग्य है, क्योंकि ये जन्माष्टमी का प्रोग्राम यहाँ नहीं मनने वाला था। हम लोग दूसरे गांव है यहाँ पर, जो 6 किलोमीटर है वहां पर। तो गुरुजी ने कहा, यहाँ के स्वामी जी उन्होंने बोला कि ये प्रोग्राम जो है यहाँ करिए तो अच्छा रहेगा, नहीं तो जैसे भगवान की इच्छा। तो देखो आप लोगों का सहयोग, आप लोगों का उत्साह देखकर हमने सोचा चलो यहाँ ही जन्माष्टमी मनानी चाहिए। तो इसलिए आप लोगों का बहुत ही बहुत सौभाग्य है कि भगवान श्री कृष्ण बलराम स्वयं रथ में बैठकर आज इस जन्माष्टमी के पावन अवसर पर आप लोगों को दर्शन दिए, ये आपका सौभाग्य। इसलिए आज के दिन जितना हम भगवान का गुणगान करेंगे, भगवान श्री कृष्ण की उतनी हमको कृपा मिलेगी। तो इसलिए बहुत सुंदर है कि भगवान श्री कृष्ण इस जगत में क्यों आते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं कि दो कारण है मेरे आने के, यदा यदा ही धर्मस्या ग्लानिर्भवति भारत अभ्युक्तानाम अधर्मस्या तदात्मानं सर्वजाम्यहम् परित्राणाय साधुना विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनाय संभवामि युगे युगे। तो श्री कृष्ण इस श्लोक के अंदर ये बताते हैं कि यदा यदा ही जब और जहां भी अधर्म का क्या होता है, प्रधानता होती है और धर्म की ग्लानि होती है, तब तक मैं अवतार लेता हूं। और परित्राणाय साधुना, जो साधु हैं भगवान के भक्त हैं, उनका क्या है, मैं क्या करता हूं, उनकी रक्षा करता हूं। और दुष्कृताम, जो दुष्ट व्यक्ति हैं उनको क्या करता हूं, मारता हूं। तो 5000 साल पहले दुष्ट व्यक्ति कौन था, कंस, बहुत ऐसे थे शिशुपाल, ऐसे कई राक्षस थे जो राजा कंस के अंडर में थे। तो भगवान ने इनको क्या किया, बिल्कुल सफाया कर दिया। इसलिए बहुत जरूरी है, और आज भी दुष्ट प्रवृत्ति के लोग हैं, तो इसलिए स्वामी जी हैं और हम ये पदयात्रा के माध्यम से कितना प्रचार कर रहे हैं। तो इसलिए भगवान श्री कृष्ण आ जाए, बहुत धन्यवाद। और वैसे तो आज के दिन अवतार लिए थे, लेकिन स्वयं रथ में बैठ के ही भगवान श्री कृष्ण बलराम का रथ आया है। इसलिए जितना आज भगवान का नाम कीर्तन गुणगान किया जाए, ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। इसलिए सभी लोग एक प्रार्थना करेंगे, हरे कृष्ण महामंत्र, सब लोग हाथ खड़ा करके सब लोग भगवान का नाम लेंगे। देखिए भगवान के हाथ खड़े, सब लोग दोनों हाथ ऐसे खड़िए, सब लोग जितने भी बालिका भगवान के हाथ खड़े, जोर से और प्रेम से श्रद्धा के साथ बोलिए सभी लोग, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे राम, हरे राम, राम राम, हरे हरे। श्री श्री कृष्ण भगवान की, राधा कृष्ण भगवान की, सीताराम लक्ष्मण हनुमान की। तो धन्यवाद आप लोगों का, हरे कृष्णा।
1: आप थे ब्रज अंगीदास जी, इस्कॉन के सदस्य। आज हमारा बहुत ही सौभाग्य है कि यह सुंदर रथ, आध्यात्मिक रथ हमारे आश्रम में है। हम सभी आश्रमवासी इस्कॉन के सभी सदस्यों का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करते हैं। आप सभी की ओर से एक बार जोरदार तालियां बजाकर इनका हार्दिक स्वागत कराएं। कार्यक्रम की अगली कड़ी में कृष्ण लीला पर एक नाटक का मंचन किया जाएगा, जिसमें वजन है अरे द्वार पालों कन्हैया से कह दो, जिसमें इस भजन में स्वर है भजन गायक श्रीमान अशोक जी चौहान का। अभिनय करेंगे कुलदीप और कक्षा चतुर्थ के बालक बालिकाएं। श्री कुलदीप और चतुर्थ के बालक बालिकाएं। दोस्ती की अनूठी मिसाल कृष्ण सुदामा, इस विषय पर मंचन, नाटक का मंचन किया जा रहा है मंच पर।
3: हेलो हेलो

Yes, they are. But those who are very purity in water and this and that, the people, they are very good, very. Yes, you don't need not to that, that I'm Swamiji and I am worker Singh and that. No. It is inside. And how it is going like this, then see morning, evening, this, that. That's all. Okay? So tomorrow we will have nice work. And I'm working here today, 2-3 days, you know. And look, coming, and da-da-da-da-da-da-da-da. Yeah, look. Yeah, it's one, this is, and Jane, वो गया ये गया है अरे अरे वो गया गया गया वो गया वो नीचे गया हरी हरी ओम नहीं नहीं उसके नीचे कोई बात नहीं उनको उनको मत करो ये बहुत अच्छा आदमी है वो बहुत बढ़िया है वो उनको लेता है नहीं नहीं वो उसके नीचे नहीं मैं जो आप इनको मत देखो ये जो है वो उनका क्या करता है वो नीचे बढ़ा के वो उसके पीछे पीछे आ गया था हाँ तो यही ऐसे ऐसे वो दूसरा एक एक दूसरे को खाता है ना ये भी है इसका तो है ही है अदरवाइज इट विल नॉट बी वी आर ऑल्सो ईटिंग समथिंग आई डोंट नो मैनी थिंग्स वी आर ईटिंग लाइक दिस And therefore, early morning, say one word even, but till this, like this. So Babaji, Madhavananji Babaji, mala karte, neend karke, kare aur neend kar li, aur uske baad mein thoda sa yun. Lekin wah mala saath mein thi. फिर एक दिन बाप जी कहते हैं माधव ने जी बाप जी फिर ऐसा कर कर रहे और फिर देखा कहूँ मैं तुम्हारा करूँ बाप जी जितना किया गुरुदेव ने माध कितना कितना बाप जी ने किया है कोई इतना देखने वाला मुझ मैंने तो नहीं देखा कोई ऐसा कि वो कितना का कैसा प्योर प्योर उसके अंदर में बट वी आर ऑल्सो ओके या We are doing as much as we do, no? Okay? Yeah. I also not doing many things, maybe. It's okay. So please. Okay? Yeah. So we are coming out. So see our ashram, this is very pure, good, and very nice, and I think, but Maharaji have heard this very much. Yeah? Aapne ki na ne, Maharaji ne ina ne. Haan. Aar, jana uda karke, kahin paani nahi aayega andar. Aar, ya, aar dekho, ekdam kitni baar ka, aar itna, it is, I have not seen anywhere similar. Or somewhere there is also somebody, Ramdev ji, वो है ना, वो है कि क्या वो, तो वो ऐसे बड़े लोगों लगा लेकिन अपने वाला जो लिखा है ना, एकदम ऐसा है, दूसरा उनका तो लिखा हुआ है वो, उसमें लो, like this, but अपना जो है ये बहुत अच्छा, तो इसीलिए हम अपने दूर रखे व्हाट ट्रीज ना दिस ट्री और दिस ट्रीज और दिस या इट शुड डिस्टेंस रियली सो दे कैन नॉट गो एंड व्हेन दे आर कमिंग हियर दे कैन नॉट गो अप सो वी हैव डन समथिंग अदरवाइज देयर मेनी पीपल विल गो अप लाइक इन दिस एंड दैट यस एंड आई होप दैट
all people after when we are going, the other people come. So they should not do like this. So that's why I am taking all out from distance from this, so that we, our what is working, we are doing in that. Yeah? Sri Bhatia.

मात्र से मन मंजन श्री दीप निरंजन सबद जन प्रभु दीप निरंजन सब दुख।

जन शबद जनै सीमा होवे मन मञ्जनै सी मंत्र प्रेम मञ्जन श्री दीप निरंजन सब दुख बन प्रभु दीप निरंजन सब दुख

भगवन् प्रभुदीप निरंजन सबदु श्रीदीप नारायण भगवान की देवाधिदेव देवेश्वर महादेव की सतगुरु स्वामी माधवानंद जी भगवान की सत्य सनातन धर्म की ओम शांति शांति शांति हरिओम।

से मन मंजन श्री दीप निरंजन सबद जन प्रभु दीप निरंजन सब दुख।

कबन प्रभुदीप निरंजन सबदु। श्री दीप नारायण भगवान की, देवाधिदेव देवेश्वर महादेव की, सतगुरु स्वामी माधवानंद जी भगवान की, सत्य सनातन धर्म की। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम।

इने देखो काको सा, यूं रस निकलना चाहिए, करो ऊपर महादेव रे दबाओ, रस अभिषेक करना है, ओम नमः दबाओ, रस आवना चाहिए बारे, ओम नमः जम्बवा यजमयो बवा यज नमः संगरा यज, पानी गाल लो, पानी गाल, बस सुधे पानी गाल लो, रस अभिषेक आप तो बारे जाओ, अट रुको जा ठा पड़े कहना कहना अभिषेक भाई, थोड़ी देर रुको जा, आनंद आवेला चीज रहो, ओम ओम या हपल निर्जा फला बुकवा या सुकुनी लो, ओ बृहस्पति रे बसो लो भगवान आप ही बृहस्पति रे बसो दा इनो तोड़ने माते रस तो अभिषेक बृहस्पति रे बसो दा स्थानो मुंचन तो गौ वसह अरे वाह थाली दो तो मे... वो थाली लेना इतना वगैरह सब उसमें ही है ये हाँ ये थाली लिया पूरी बस इसमें क्या है इत्र पड़ा है मैंने कहा इत्र इत्र गया भाई अब है गए और लो चावल थोड़ा चावल चढ़ाओ इन ऑन करो लो सर ओम प्रिय यस्मै यवास्मै माथास्मै तीलास्मै मृगास्मै कलवास्मै बृहस्पति ओकदे सोमो राजा विद्वान यक्ष्मादमुच्यत पाचो जल डालो वसुदेव जल डाले का तू ओम शुद्धवालो सर्वशुद्धवालो मणिवाल सदाश्विनाः श्वेता श्वेता

सहित वरे वीर उदा पारिष्णव पुष्प उदक स्नान पास जल डालो भाई वासुदेव। पुनः शुद्ध उदक स्नान पुष्प पार्षद जड़ो पुनः शुद्ध उदक स्नान समर्पयामि शुद्ध उदक स्नानांत आचमनीयम जलम समर्पयामि नमः आचमनीयम जलांत साम सदाशिव हिरण्य उदक स्नान मोलो औपरी दे इन नान करो ओम हिरण्य गर्भ समवर्तताग्रे भूतस्य जातपतिरे काशीत सदाधार पृथ्वी द्यामुदयमांक समय देवाय अभी का विदे हिरण्य उदक स्नान समर्पयाम हिरण्य उदक स्नानांत हाथ मंडो सा आदोत्र ಆಂಗ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಜಾ ಇತ್ತ ಜನ ಓದಿರ್ತಾವ ಆಯೋ ಸ ಮಹಾದೇವ್ರೆ ಕರಾಮಣಿ ಮಹಾದೇವ್ರಿ ನಾನ್ ಕರಾಮಣಿಯ ಲಗೋ ಓಂ ತ್ರಂಬಕಂ ಜಜಾಮಹೇ ಸುಗಂಧಂ ಪುಷ್ಟಿವರ್ಧನ ಉರ್ವಾರುಕಮಿವ ಬಂಧನಾನ್ ಮೃತ್ಯೋರ್ ಮುಕ್ಷಯ್ಯ ಮಾಮೃತಾ ಸಾಂ ಸದಾಶಿವ ದೇವತಾಭ್ಯೋ ನಮಃ ಶುದ್ಧೋ ಸುಗಂಧಿ ದ್ರವ್ಯೋದಕ ಸ್ನಾನಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ಸುಗಂಧಿ ದ್ರವ್ಯೋದಕ ಸ್ನಾನಾಂತ ಪಾಚ ಜಡು ಪುನಃ ಶುದ್ಧೋ ಉದಕ ಸ್ನಾನಂ ಆಚಮನೀಯಂ ಜಲಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ನಮಃ ಆಸ್ಮನೀಯಂ ಜಲಾಂತೆ ಸೌಭಾಗ್ಯ ದ್ರವ್ಯೋದಕ ಸ್ನಾನಂ ಮಾ ದೇ ತೋ ಬೈ ಇದೆ ಲೇಟಿ ಕೋಲ್ನ ದೇ ಅದೇ ಕೋಲ್ ಮರ ಆತ್ರ ಘೀ ಲಾಗೋಡ ಅರೆ ಘೀ ಆಗೈ ಅರೆ ಯಾರ್ ಜಿನ ಘೀ ಘೀ ಕೋನಿ ಕೋಲ್ನ ದೇ ಓ ಹೇ ಅಬೀರ್ ಗುಲಾಲ್ ಸೌಭಾಗ್ಯ ದ್ರವ್ಯೋ हाँ आप देख लीजिए लोटा बीजा आपका एक लोटो राख जो बाकी बोली दे दीजो एक लोटो मारे टे सही जरा आप दारू जल रही आरती बीजी करो जरा चलो और तंबर एक लोटो ट्रैक दो पड़े आरती बस जल रही आरती करो कैसा लारू चलो सौभाग्य द्रव्योद स्नान मघौ सुदाद यघौ सौ प्रचदा परु गंधस्ते सो ममवतु मदायुद ओं गंधद्वारा दुर्दर्शा नित्यपुष्टांग करीषणेमीश्वरी सर्वभूतानां त्वामियोपवये श्रियं बस पाच जड़ु ओं मई मालिश करो ओं मयरी वोगे हे परेति बाहुजायातिम परिबाधमान हस्तगनो विश्वावयुना विद्वान लय भई विद्वान पुमान पुमान गौसम परिबाद विश्व ओम महिरी वोगे हे बरेति बाहुजाया हे दिंबरी बाधमान चढ़ा चढ़ा हस्तगुण विश्वावयुना चढ़ा दे विश्वावयुना विद्वान पुमान पुमान गौसम परिबाद विश्व बस अबे महादेव रे मात कपड़ो धक दो शिवलिंग माते मात कपड़ो धक दो भाई शिवलिंग माते वो अबोट एक कपड़ो ढकने रख दो शिवलिंग मा दो मिनट वास्ते अंगो चलो भाई वो अबोट भाई साहब वो लेना आऊंगा छोटो कोई मात शिवलिंग माते ओम महो ओम नम शंभवाय च मयो भवाय च नम शंकराय च नमस्काराय च शिवाय ढको ढको जल्दी आगो नहीं राखो बस दो मिनट छोटो ढकियोड़ो कन्नू कन्नू बाण पूछ लो दूजा कपड़ो वो एक दूजा कपड़ो वो नहीं गमचो एक और वो कटे इन कहना कहना बाण एक परिधि पूछ लो परिधि हाँ इन परिधि पूछ लो हटाओ हटाओ बिंदु भले चंदन की टीकी तैयार रखो टीकी देव ने पछे हटामी चंदन बढ़िया आप रखने हाँ टीकी दे दो सा। आप टीकी दोगे नहीं बस अब नीचे पूछ लो बॉन्ड बीजा सब साफ कर लो टीन पूछ लो इन अंगो छो पूछ लो बस पूछना है नीचे साफ सब पी जाड़ी आगे ले लो ताकि कही वो नीचे वो पानी निकल जाए बारे सब मोटो काम है जाली हटा लो एक बार परमानेंट ताकि पुस्तक बीजा इन जाली दो मिनट लारे रख दो बस अब पुस्तक बीजा खातु यू मौन ले लो या एक कोतली में गाल न पीपल में बारह विसर्जन कर दो पेड़ में तो कागज बीजा ले लो नहीं कागज इनमें फाड़ना है बिल पत्र है वो इनमें खाली नहीं है ठहरो और खाली कर दो यहाँ पर अगरबत्ती बिची लगाओ जो थंबार जो घिरी गई पोजीशन है और बहुत मोटा काम है सर जोरदार हाँ और एक जना पानी काल लो साटी जिको सब वो कचरा बटी ने बह जाए और एकदम साफ पेड़ी चाहिए परी दी चौकट है मॉल ली ताकि कही है अपने दूजी बार ओड़म्बो नहीं रहे के भाई
ताकि और नहीं कहेगा भाई यूर यू छोड़ने गया आप हमारे गंदगी एकदम व्यवस्थित और पाचो एकदम सूखा गंदा पूछना है परिधि भी नीचे ठीक है ना काम तो यही ऐसे ही होना चाहिए तरीका तो यही है एक मिनट नाग देवता ने नॉन करा दो एक लोटो भरने पानी नाग देवता माते शेप दो नाग देवता ऊपर आप देखो ज्योत आगा ले ज्योत रमान जाता रही पानी हाँ नमो सर्पेभ्यो जय के पृथ्वी मनोज अंतरिक्ष जय विधि तेभ्य सर्पेभ्यो नम शुद्ध उदक स्नान समर्पयामी बस अब है थोड़ा पानी हाथों वटी ने कर दो जिको हैंग जातो रहे विद्वान जाली में गयो सब पानी रुक्यो तो नहीं है ठीक है जरा भाई इत्र लगा ना बरक लगाओ भाई नाग दे पहले इत्र बरक लगाओ बरक लगाओ ना उनसे भूलो मत मन सब याद है आप भूल जाओ मन याद रही क्यों मैं भूलू कौन सा इत्र ने बरक ने भेजा तो जरूरी है सिंगार में बरक कट गए वो बरक वहां पर गिर गया ये रहा चारों तरफ से इन्हें शिवलिंग रे माते आगे आगे हमें मेन हम अल्लाह बोर्ड सामने चिपना चाहिए बरक और बरक तैयार है सा माता ने खोल न दू आपने आपरा गिल्ला आता क्या चिकना खोल न दू ता भरो लगा वाला रुई कन्ना ले लो आप हाथ गिल्ला नहीं चाहिए जला दिया हमारा मारे भी ये एक्चुअल में वो विंटर महाराज लोटो भरना दिया के पंचम मारे याल घी लागोड़ा हाथ रहे चिकनाट है हाथ में इतनी की कर से आनंद आयोग नहीं विशेष रहा अबे आरती बाकी है सिंगार करियो बस हाल सिंगार बाकी है बस आरती करो महाराज ने बुला दो आरती में महाराज रातू करा दो आरती रूई ले लो वासुदेव आप दो जना रूई ले लो जूर बड़क लगाए खट रूई यूं पुश करना रगड़नी नहीं है हाँ देख यूं पुश करनी है रूई रगड़े पाछ उतर जाएगा बड़क पहला साहब हमलो हमलो पूरा पोर्शन कर दीजो क्लियर न पचे लारू लाल लो पचे लगे जो ओम रिया यस मे ओम मगौंसो नाद यगौंसो प्रचदा बरुगा बरुगंध से सोम अवतु मदाय मदाय रसो अच्युत ओम रजत पत्र मोपनयामि नमः हाथ चिपचे आप तो बेजी को चिपियो जी तो रुयू रुयू आ यू दबाओ हमल हमल पोर्शन पूरा क्लियर करो सा लारू पचे लगे जो हमल साहब जटिन उबा के साहब अटिन हमल पूरा क्लियर करो आप पहला क्यों बरक इतना नहीं है पूरा लिंग मात आ जाए पहले हमलो इस पूरा कवर में जाना चाहिए आप बिल्कुल एज इन हित में उबा के वो क्लियर कर दो आया जी ने उबे यो ना पूछो देखो हम उबा है ए बता सके निरही है वो बरक तो इनमें खूब आवे बड़ पानी उगई है पाछ उकल जाए कैम ना सही है यार अभी अरे लो उचलो उचलो इन्हें इन्हें उचलो रुयू रुयू अरे साहब रुई नहीं आप हाँ यू रुयू पकड़ो अरे बटी नहीं नहीं आगे लगाओ आगे लगाओ साहब आगे लगाओ नारे लगाओ हमें हमें लगाओ देखो हमें बाकी है नहीं तो
कोर्स हम अमर लो पहला पूरा क्लियर करो, लारे तो कोई बात को नहीं, हमें लागना जरूरी है। जल बंद कर दो दो मिनट, जल बंद कर दो मिनट, कोई रुकने साधन देता हूं। दो मिनट बंद कर दो, नहीं सर सिंगार दो जी तो पता चल। हाँ लगा दो, नहीं रोक दो मिनट जल ना, क्यों है सिंगारो नहीं तो बैंड बैंड बाज जाएगा। बस देख गया, बाकी वजह हैंग लगा दीजो। अब रुई साहब रुई दबाओ नहीं आप, देखो बर्क लगाया आप, हाँ सर। अबे चंदन है, आप चंदन की कटोरी ले लो और ओम बना बना माता है पतला पतला एकदम गोचाऊ, और चंदन रे कटोरी पड़ी इन आपने गोचो तैयार करने दू, इन गोच के ओंगली लगा बन जाए ओम और त्रिपुंड, हाँ त्रिपुंड बनाओ सा बरगा बल ये पानी जड़ तक बंद नहीं बह नहीं सा, जड़ तक अपनों काम सकते सिंगार वालों नहीं बहला। ऊपर पानी इन्हें बंद करना पड़ी, आया था यज्ञ पवित्र और वस्त्र को वस्त्र पहला चंद शिवलिंग रमान लगाओ। ओम यज्ञ पविदम मर्मम पवित्रम मृदापतये सहजं पुरस्तात् आयुष्य मुग्रम प्रतिमंच शुभ्रम यज्ञ पवित्रम बलमस्तु तेजो कोपी न वस्त्रम कोपी न वस्त्र साम सदाशिव देवताभ्यो नमः वस्त्रम वस्त्रम समर्पयामि सुजातो जो नीचे कर दो सेठ बोले ठीक है सुजात हो ज्योति पचे सुजात हो ज्योति का सर्मा सदसो मैं विभावसो वस्त्रोर वस्त्र समर्पयामि वस्त्रोर वस्त्रांत चंदन ने टिक्की लगा दिया। बिल पत्र लो, बिल पत्र ना सिंगार दे दो जो ना बुलाओ आपका ना बिल पत्र एक एक बिल पत्र लारू तोड़ तोड़ ना देवणी सही चला एक ऐसी का डोंगला है के ना यू तोड़ ब्रो न पर सड़ा मनो नियम है जिको भी कोई है दो जना सही चला आप कहना क्यों आप इकला सिंगार करो बारे हैं बाकी गप्पा मार रहे हैं हाँ आप आ जाओ वो बढ़िया रहेगा ज्यादा मैं बोले इन आज तक उन्हीं साथ मैं देख तक बारह कहीं हैंग जिना गप्पो ठोक दिया उबा उबा बिल पत्र दारू डोंकला तोड़ तोड़ने देमना बिल पत्र गणई है हैंगो ना दूं मार। ओम नमो बिल बिल दोसा ओम नमो बिल बिल ने चको बचे ने चो नमो वर्मे ने चो वरुथ ने चो नमो बैठो आप रामु तोड़ तोड़ने चढ़ाओ सब मेरा श्रुदा जय सुश्रेना जय चमास लो ए टुटुड़ा ऐसा डंटल ओम नमो बिल बिने चक वचने च नमो वर मिने च वर वस हैंग ऑन बुला दो पर चढ़ा दे के बिल पत्र डंटल टुटुड़ा है चढ़ाओ आप तैयार है तुम नमो बिल बिने चक वचने च नमो वर मिने च वर उते ने च नमो श्रुता यस सुश्रेना और लारू जी का डोंकला वे के उबर जोड़ो ओ तोड़ना आप शिव जी रे माते 1000 बार पाछो दो दोन चढ़ा सको इतो शिव ने प्रिय है बिल पत्र
एक हजार बार और लालू डंटल टूटोड़ो चाहिए जय बस लो साहो टूटोड़ो है चढ़ाओ आप हो डंडो थोड़े ओम नमो बिलबिने च कवचिने च नमो वरमिने च वरुथिने च नमः सुताय सुश्रेनाय च नमः चारों तरफ सजावण है बिलपत्र ओम नमो बिलबिने च कवचिने च नमो वरमिने च वरुथिने च नमः सुताय सुश्रेनाय च नमः दुंदिया दुंदुबिया च लारु डंडा तोड़ तोड़ सजावण है बिलपत्र श्रृंगार करना है और टूटी उड़ा है मारे तैयार करना दिया तू फेंक दे ना चारों तरफ बॉन्ड है बॉन्ड चारों तरफ बिल पत्र रसी मैं दे दी पूरा पैकेट दे दिया मैंने ये अंग्रेज ने दे जाओ और शिव जी अंग्रेजों ने दी जाए बिल पत्र चढ़ा अकेला मैं करूं कोई बैठा मान दिया ही ओम नमो बिलविने च कवचने च नमो वर्मिणे च वरुथिने च नमः सुताय सुश्रेनाय च नमः दुंदुभ्याय च अनन्याय च त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिदे त्रिजन्म पाप सम्मारम एकम बिल्वम शिवार्पणम अब नाग देवता ने बैठा भी टिक्की देने नाग देवता टिक्की दो चंदन दिन ऊपर बैठा दो नाग देवता माते बिल पत्र चढ़ावना है हाँ ऊपर बैठ बजाओ जैसा या नहीं नाग देवता विराजमान करो मुंडो में राख जो बिल्कुल सीधो गेट है क्या गेट राम में दरवाजा है दरवाजा राम में रखिए हाँ बिल्कुल इन माते बिल पत्र रखो दो चार नाग देवता माते अट निरे पड़िया अटे देखो नीचे बिल पत्र पड़िया ए भी सब सही है अबे चंदन कितना एक मिनट चंदन कितना है थोड़ो ही है यंगोर लाग जी टिक्की चर्चा लाग जी यंगोर है ठीक है चलन दो अबे चल गया बस अबे माला पहरो माला काटो इन महादेव री वे पुष्प वे खुला पुष्प थोड़ा सी पुष्पांजलि वास्ते राख दीजो विनय कोतली में नहीं कोतली गई है ओम नाना सुगंधिम पुष्पाणि यथा कालो एक और मोटी माला है शायद महादेव रे यथा कालो उद्वान चो माल तेज मगादी निग्राण परमेश्वर साम सदा शिवाय नमो नमः एतानि पुष्पहारम सब एक आपको पुष्प रखो बिल पत्र रमाते और एक नाग देवता रे माते दो पुस्तक ले लो जो कहलावे बज गया चढ़ा दो सेवंतिका बकुल चंपक पाटलाभ जय पुन्ना गजाति कर वीरल साल पुष्पै बिल्व प्रवाल तुल शीतल मंजरी भी त्वां पूजयामि एलो चढ़ो शिवलिंग माते त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीदौ साम सदा शिवाय नमो नमः इतानि सुगंधि पुष्पाणि समर्पयामि सुगंधि पुष्पान्ते धूपम आग्रापयामि प्रत्यक्षम धूप दीप बताओ भाई चंद्रमा मनसो अगरबत्ती लगाओ पहुंचा चंद्रमा मन सब शिव जी रखा आरती कर स्टैंड में लगा दीजिए केड़ा स्टैंड अट पड़ी अटकुना में अटो इनमें लगा दीजो एकदम खुशबू रहे जोरदार मारा जावे तो जीव और बढ़ने रख दो बट महादेव जल रही आरती करो जर कौम आ जाए बट पट्टी है काली पट्टी मात रख दो बट आगे जल रही आरती करो जर कौम आई धूप माग्रह पयामी धूप दीप बताओ महादेव ने धूप माग्रह पयामी प्रत्यक्षम दीपम दर्शयामी नमः चंद्रमा मंद सो जात सो सूर्य जायत सोत्रद्वा युश्च प्राणश्च मुखादग्निर जायत धूपम आग्रापयामि प्रत्यक्षम दीपम दर्शयामि धूपाय नमः दीपाय नमः
ಧೂಪಂ ಆಗ್ರಹಪಯಾಮಿ ದೀಪಂ ದರ್ಶಯಾಮಿ ಧೂಪಂ ದೀಪಾಂತೆ ನೈವೇದ್ಯಂ ನೈವೇದಯಾಮಿ ನೈವೇದ್ಯಂ ಲೋ ಭೈ ಏಕ ಮಿನಿಟ್ ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಸ್ವಲ್ಪ ತಯಾರಿ ತು ಶೃಂಗಾರ ಥರ ಆತು ಕರ ಜರ ಭೈ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಮಾರ ಚಲಿಯೋ ಶೃಂಗಾರ ಕಿಯಾ ಬಿನಾ ಕಾಮ ಆವೇ ಗುನೆ बेलपत्र घणे बढ़िया सा पोतली भरियोड़ी पड़ी है देख अरे हूं शिवरे देखो पात्र लगाया गया थाली बट नीचे आगे और यू कर दीजिए बटे नीचे अबे क्यों बिल पत्र बीजा जल रो है को नहीं जल रो है तो तुमने गन्ना पूछ ले पजा थाली रख दे बना चौक तो बना और पात्र है शिवरे भोजन रो आएगी गमन में और बना दीजिए जिसको मैं थाली में बनाई हूं चौकट बनाए देखो करना कपड़ो बारू का आया बाल ले जाने अट पड़ियो तो अटिन पड़ियो तो हाँ ओज और एक काम सीधे बढ़िया है तो बड़ा पटरा तो काम थर काम सीधे है शिव ओ थर काम सीधे है सबो रहा बीच में बस देखियो ले जा थाली लो सा दो महादेव रे भोग ರೊಕ್ಕ ಯೂರ್ಯುವಿಂದ ಪಾತ್ರರ ಮಾತೆ ಹಾ ಅಬೇಗೆ ಆ ಪುಷ್ಪ ಮೋನೆ ರಗ್ದ ಪ್ರಸಾದ ಪುಷ್ಪೇ ನಾಚಾದ್ಯ ಘಂಟಿ ಬಜಾವ ಘಂಟಿ ಘಂಟಿ ಬಜಾವ ಓಂ ನಾಭ್ಯಾಸೀದೈಷಕೌಶ್ರೇಷ್ಣೋದ್ಯೌ ಸಮವರ್ತತ ಬುದ್ಧ್ಯಾಂ ಭೂಮೃತಿತ ಸೋತ್ರಸತ ಲೋಕಾಮಕಲ್ಪಯನ್ ಪ್ರಾಣಾಯ ಸ್ವ ಗಮಾನಾಯ ಸ್ವ ಮುದಾನಾಯ ಸ್ವ ಧ್ಯಾನಾಯ ಸ್ವ ವ್ಯಾನಾಯ ಸ್ವಾಹ ಮಧ್ಯೆ ಘಂಟೆ ನೀಚೆ ರಕ್ಕೋ ಭಗವಾನ್ ಜೀ ಮಂದವಾರ ಕರ್ಣಿ ಯೂ ಪ್ರಾಣಾಯ ಸ್ವ ಯೂ ದೇಖೋ ಪ್ರಾಣಾಯ ಸ್ವ ಸಬಾನಾಯ ಸ್ವ ಮುದಾನಾಯ ಸ್ವ ವ್ಯಾನಾಯ ಸ್ವ ವ್ಯಾನಾಯ ಸ್ವ ದೋ ಬಾರ ಜಲ ಗುಮಾನ್ ಚಡೋ ದೋ ಬಾರ ಜಲ ಗುಮಾನ್ ಚಡೋ ಜಲ ರೋ ಔರ್ ಘಂಟೆ ನೀಚೆ ರಕ್ ದೋ ಘಂಟೆ ನೀಚೆ ರಕ್ಕೋ ಬೇಲಾ ಜಲ ರೋ ಜಲ ಗುಮಾವ್ ನಟ ಛೋಡ್ ದೋ ಹಾತ್ ಮೇ ಲೇನೆ ಜಲ ಯೂ ಹತೇಳಿ ಮೇ ಗುಮಾವ್ ಜಲ ದೋ ಬಾರ ಹಾ ನೀಚೆ ಛೋಡ್ ದೋ ಜಮೀನ್ ಮಾತೆ ಏಕ್ ಬಾರ ಔರ್ ಛೋಡೋ ಜಲ ಲೇನೆ ನೀಚೆ ನೈವೇದ್ಯ ಮಧ್ಯೆ ಪಾನೀಯ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ಉತ್ತರಭೂಷಣ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ಧನುರ್ಮುದ್ರಾಂ ಪ್ರದರ್ಶಯಿತ ಗ್ರಾಸ್ ಮುದ್ರಾಂ ಕೃತ್ವಾ ನೈವೇದ್ಯಂ ನೈವೇದಯಾಮಿ ನೈವೇದ್ಯಾಂತೆ ಉತ್ತರಭೂಷಣ ಭಗವಾನ್ ಜೀ ಮಂದಮಾರ್ ಕರೋ ಪಾಚಿ ಏಕ ಬಾರ ತೋ ಥೋಡಾ ಔರ್ ಲೇವಣಾ ಪಡಿ ಭಗವಾನ್ ಆವೇ ಜರ ಮಂದಮಾರ್ ಕರೋ ಗೇ ಘರ ಕೋಯಿ ಮೆಹಮಾನ್ ಆವೇ ಜರ ಘಾಸ್ ಜೀ ಭಗವಾನ್ ಜೀ ಹೇಗೆ ಇನ್ನು ಮಂದಮಾರ್ ಕರೋ ಏಕ ಬಾರ ತೋ ಲೋ ಆ ಥಾಲಿ ರೆ ಮೋನ ಖಾಲಿ ಕರ್ದೋ ಥಾಲಿ ರೆ ಮೋನ ರಖ್ದೋ ಯೂರಿಯ ನೈವೇದ್ಯ ಮುದ್ರಾಭೂಷಣ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ನಮ ಉತ್ತರಭೂಷಣಾಂತೆ ಫಲಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ಲೋ ರೊಕ್ಕ ಯಾ

0: दासानं चन्द्रकमलं दर्पण ग्लोबल इदं फलं मया देव कामितं भवत्समा भवेतं सुफलावा जमा जमा भवेतं सुफलावाप्ति भवे जन्म जन्मने फलं समर्पयामि नमायाः प्रदीर्जा फलापुपाया सर्व वाटनाम याः प्रदीर्जा फलापुपाया सूपने ब्रह्मद्रवसो दासानं चन्द्रकमलं इदं फलं मया
1: हाँ हाँ तो रख दो आप भगवान प्रसाद दे दीजिए रहेंगे मोट दी लो लो इदम फलम मया देव स्नाभिदम पुरुषोत्तमा भवेतन सुफलावाप्तिर भवेर जन्मनि जन्मनि फलम समर्पयामि फलान्ते फल तांबूलानि समर्पयामि नमः लो पुंगी फलम महावीर्यम नाउ एलादि चूर्ण संयुक्तम तांबूलम प्रतिगह्यताम साम सदा शिवाय नमः इन परात में रखो नहीं फल बीज सब इनमें जमाओ लाके कोई भोग लागू कह रहा हो परात में बीजे रखो जरा जमान रख जो प्रेम पूर्वक अपन न चाहूं कोई जल्दी नहीं है एक माला पड़ी हुई है के मोटी देखो पढ़ो महादेव ने जरा खुला पुस्तक वेद खुला पुस्तक कार्ड ने जमाओ बढ़िया चारों तरफ बॉन्ड माते एक माला खोल दो वासुदेव जी ने चारों तरफ पुष्प जमा दो पर एक माला खोल प्री ने पुष्प जमा दो बाजर मा पुष्प जमा ना पुष्प खुला दो इनमें बॉन्ड रमाते परिधि एक अटे नहीं ऊपर परिधि यान बताओ वासुदेव जी हाँ यूं जमा नाना सुगंधिम पुष्पाणि यदागालोद्वानि जपमालदी जपगादी निग्राणा पर्व नैवेद्यान् नैवेद्यान्ते फलं समर्पयामि या फलनीर्जा फलापुक्पाया शुभगुणे बृहस्पतिर् वसुतास्थानं मुञ्चद्वगमसौ फलान्ते फलतांबूलानि समर्पयामि नमः पुंगी फलतांबूलानि समर्पयामि एलादि चूर्णसंयुक्तं तांबूलं प्रतिगह्यतां तांबूलानि समर्पयामि तांबूलान्ते हिरण्यगर्भनिष्णाद्रव्यम् लो भाई दक्षिणा मठ रख दो हाथ लगाना है गौरी हिरण्य गर्भाव समावर्तत आग्रे भूत से जात अट प्रसाद रे ऊपर हिरण्य गर्भाव समावर्तत आग्रे भूत से जात अपतिर एक आसीत सदा दारो पृथ्वी ध्याम तय मांगस में देवा एक आको पुष्प है विश्व रखे सिंह निग्रह माते विश्व रख पुष्प है बिल पत्र माते विश्व पुष्प गया ऊपर ऊपर शिवलिंग बिल पत्र है ऊपर बिल पत्र ऊपर पुष्प कटे हाँ अट रखो और लो सब जगह चढ़ाए भाई और रख दो और लो अब नारियल लेने बैठना है हैंगो हाथ लगाना है और एक और नारियल ले लो बैठो नीचे और मैं बोलू जो बोलना मारा लाल लार है मैं बोल रहा नीचे बैठना जेटे जेटे बैठा यथा स्थान बटे बटे पाचा बैठ जाओ जी जे स्थान हो जेटे जेटे वे बटे बटे बैठ जाओ और मैं बोलू जो बोलना है हाँ एक दूजा नहीं हाथ लगान बैठा जी ऊपर हाँ रामो रामो कुटे नहीं सी सी हाँ हाथ में रखो नारियल हाथ में रखना भाई एक जनो पकड़ रख लो हाथ में बाकी आएंगे हाथ लगा दो और मैं बोलू चु बोलना इन्हें डायरेक्शन नहीं पता था नारियल हाँ इन माते थोड़े चावल और पुष्प वाली पंखुड़ी रख दीजो बोलो सा पत्रम पुष्पम फलम तोयम रत्नानि विविधानि च ग्रहण अर्घ्यम मया दत्तम देहि मे वांछितम फलम रूपम देहि जयम देहि भाग्यम भगवन देहि मे पुत्र पौत्रान धनम देहि सर्वान कामाश्च देहि मे फलेन फलितम सर्वम त्रैलोकस्य चराचरम फलस्य अर्घ्य प्रदानेन सफला सन्तु पूर्णा सन्तु मे मनोरथाः गतम पापम गतम दुःखम गतम दारिद्र मेव च आगता सुख संपत्ति पुण्योहम तव दर्शनम। हाँ, और नारियल है कैसा, आप मस्तक रे हृदय लगा शिव जी रे अर्पण कर दो, हैंग ऑन आगे दे दो भाई लोगों ने, हृदय रे मस्तक रे लगा ने शिव जी रे कने भेंट कर दो सा, के शिव आप रो मैं फल भेंट करी और भगवान ने पाचे फल प्रदान कर दे, कही आप तो भगवान को तो मांग सको जो क्या

महाराज आ जाए, बाद में आरती चालू करो। आरती तैयार है, आलो सब एडवांस तैयार। सिर्फ एक जोत छोटी बड़ी करनी पे या पांच वाली करनी पे तो देख लो, मार तो तैयारी है। हाँ चाहे, हाँ चाहे लो। आप बटागे रखो, देखो कोई गुड़ा दे नहीं, कर दे नहीं, अपना ध्यान दो। सब अगरबत्ती और पछे लगा दीजो, अगरबत्ती और कम पड़े तो पछे और लगा दीजो। आप रखने नहीं रखो, और देखो सर एक कपूर आड़े कट नहीं रखे, जिका पत्ता माते एक एक कपूर रखे, जो चार आते तो हाथ बड़ल लाग जाए ला। आरती करे ला जिनो पौन रहे पत्ता माते, आपने ध्यान रखना क्यों मैं बोलू ला आरती हट बैठना है, तो कही है कि भाई हाथ चार रख दे ला तो थाली पे जाए ला गर्मा गर्म, तो पकड़ नहीं सके ला आरती रे। यूं एक एक कपूर सिर्फ पत्ता माते रखना। हाँ सर आप ध्यान रख जो बच्चा वगैरह यूं नहीं किनारे पड़िया चार आते चेद वो नहीं, ध्यान रखनी चाहिए एक एक एक एक कपूर। मैं जोधपुर ब्रह्मपुरी सा आपको कम

देवता पुष्प घुमा दे महादेव माँ चढ़ाओ सब पुष्पे देव महाराज जी दो महाराज जी दे दो हाथ में पुष्प पुष्प दे दो पुष्पे देवता अभिवंदनम आत्म कल्याणार्थ आत्मा अभिवंदनम पुष्प दे दो पंकुड़ी ये शिव जी के ऊपर अर्पण कर दीजिए महाराज आरती अब आप थाली लेन महाराज जी आरती सब जन आरती ले लो

ಆಡ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಒಂದು ನಿಶ್ಚಯದಿಂದ ಸಿ ಹಾಸನ್.

उजल रो चौटो लगाओ सब जगह पहला मूर्ति और हमारे सब और पचे सब जगह जन समुदाय खड़ा है भी ले जी सर पुष्पांजलि ओम यज्ञेन यज्ञमय जन्त देवास्तानि धर्माणि प्रतमान्या सन्नादेह नाकं मैम स चन्द्रयद्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः ओम राजाधिराजाय प्रसय्यसायिने नमो वयं वैश्वरणाय कुर्महे समे कामान काम कामाय मह्यं कामेश्वरो वैश्वरणो दधातु कुबेराय वैश्वरणाय महाराजाय नमः।

बोलिए श्री दीपनारायण भगवान की। श्री दीपनारायण प्रार्थना के बाद विद्यालय के लघु कार्यक्रम जब जब धरती पर अज्ञान का अंधकार छाया है तब तब द्वारकाधीश ने अवतार लिया है। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मनम सज्जामि हम। मैं बुलाने जा रहा हूं तृप्ति निकेश संतोष कृष्ण की बाल लीलाओं पर भजन एक गीत है उस पर नृत्य प्रस्तुत करेंगे नटकट कान्हूड़ो। जन्म जन्म के रिश्ते लेकर सब प्राणी जग में आते हैं या दोष किसी को मत देना मुरली श्याम बजाते हैं। सुंदर नृत्य बालिकाओं द्वारा।

0: विद्यालय के बालक बालिकाओं ने श्री कृष्ण भगवान की बाल लीलाओं पर सुंदर नृत्य प्रस्तुत किया। श्री कृष्ण और राधा, श्री कृष्ण और गोपियों का प्रेम निश्चल था कि कागा सब तन खाइयो, चुन चुन खाइयो मांस, बस दो नैना मत खाइयो, जामे पिया मिलन की आस। गोपियों के साथ रास का प्रदर्शन बालिकाओं ने, बालक बालिकाओं ने यहां प्रस्तुत किया। मैं बुलाने जा रहा हूं कक्षा 12वीं की छात्रा निर्मला सांखला को, जो जन्माष्टमी क्यों मनाई जाती है इस विषय पर भाषण करेगी निर्मला सांखला। इसके बाद तैयार रहें गीता श्लोकों का वाचन करने के लिए कक्षा पंचम के विद्यार्थी। भाषण निर्मला सांखला।
1: हरिओम। आज के इस कृष्ण जन्माष्टमी के पावन पर्व पर उपस्थित पूज्य गुरुदेव श्री महेश्वरानंद जी, प्रेमानंद जी, प्रधानाचार्य जी, प्रधान अध्यापिका जी एवं विद्यालय में उपस्थित मेरे समस्त अध्यापक व अध्यापिकाएं और मेरे भाई बहनों, मैं आपके सामने भगवान श्री कृष्ण के क्रियाकलापों पर प्रकाश डालना चाहती हूँ। भाद्रपद माह की कृष्ण पक्ष अष्टमी की मेघा छंद उस अर्धनिशा का रहस्य शायद प्रकृति के गर्भ में ही था, क्योंकि कौन जानता था कि कंस के कारागार में जन्म लेने वाले दिव्य शिशु को वंश युगों तक प्रेम के संदेशवाहक बन जाएगी। धन्य हुई होगी वह अष्टमी रोहिणी नक्षत्र एवं कृष्ण पक्ष की निशा का चंद्रोदय, जिसमें भगवान विष्णु के पूर्ण अवतार शेक चक्र गदा एवं पद्मधारी चतुर्भुज स्वरूपा मां अवतार श्री कृष्ण के तेजोमय प्रकाश से समूचा कारागार आलोकित हो उठा। ज्ञान मार्ग में ज्ञानी बनकर गीता रस दी तो भक्ति मार्ग में प्रेम की ऐसी सरिताई बहा दी कि उनकी ब्रह्म के महारस में स्वयं शिव व कामदेव तक निगमन हो गए। योग मार्ग योगेश्वर श्री कृष्ण कहलाए। कृष्ण का जन्म ही नहीं, उनके कर्म भी दिव्य थे। ज्ञान उपासना एवं क्रम कर्म के विशद ग्रंथ गीता के उपदेशक चमत्कारिक बचपन महाभारत के रणनीतिज्ञ जैसे उनके विविध रूप आश्चर्य चकित होने वाले हैं। हर दृष्टि से संपूर्ण कृष्ण की स्त्री समान जीव स्नेह और दुष्ट हंता जैसी गहन लक्ष्य साधक अनंत लीलाएं संदेश देती हैं, जो आज महावतार के रूप में किया योग से योग मार्गियों को संतुष्ट करते हैं। कृष्ण के बखान में असंख्य सरस्वतियां भी असमर्थ हैं, क्योंकि पीताम्बर व मोर मुकुटधारी यशोदा का काना, सुदामा का मित्र, गोपियों का प्रेमी, यादवों का रक्षक, अर्जुन का सखा, रुक्मणी का परमेश्वर, राधा का प्रियतम, दुर्धर राजनीतिज्ञ आदि असंख्य रूपों में विभूषित होकर प्रेम के अनेकानेक भावों की पराकाष्ठा हुआ। यह मुरलीधर, यह लीला अवतार बाल रूप में लड्डू गोपाल जी के रूप में तो राधा के संग निर्वाक संप्रदाय के आराध्य हैं, वहीं दाऊ के साथ जगन्नाथ जी के रूप में करोड़ों जनों की आस्था का केंद्र हैं, तो कहीं श्रीनाथ जी के रूप में अकेले ही विराजमान हैं। कुल मिलाकर इनका जीवन संपूर्णता का प्रतीक है। हरिओम।
0: धरती पर कंस का आतंक बढ़ गया था, उस आतंक को खत्म करने के लिए उनके भांजे के रूप में कृष्ण ने अवतार लिया था। इस कार्यक्रम में पधारे गए सभी आगंतुकों का विद्यालय परिवार हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करता है। बाबूजी महाराज के आदेशानुसार जब उनका आदेश होगा तब प्रधानाचार्य जी महोदय माल्यार्पण करके उनका स्वागत करेंगे। कार्यक्रम की अगली कड़ी में मधुराष्टकम लेकर आ रहे हैं पंचम के विद्यार्थी। कर्मणीय वाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, श्री कृष्ण ने गीता में हम सभी के लिए ये उपदेश दिया है। नन्हे मुन्ने बालक बालिकाएं मधुराष्टकम के रूप में इसे प्रस्तुत कर रहे हैं।

0: विद्यालय के नन्हे मुन्ने बालक बालिकाओं ने
1: जननी भाषा संस्कृत में मधुराष्टकम प्रस्तुत किया। हमारे बीच इस्कॉन अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ की एक सुंदर झांकी जो आप सभी देख रहे हैं मंच के पास है। इस इस्कॉन यानी अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ का एक लघु परिचय करने के लिए मैं मंच पर बुलाने जा रहा हूं इस संघ के सदस्य श्रीमान बजरंगी दास हस्तिनापुर से, श्रीमान ब्रज अंगी दास जी, एक बार जोरदार तालियां बजाएं इनके लिए।
2: हरे कृष्णा। सब बालिका और बालिकाओं को बहुत बहुत धन्यवाद। कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर भगवान श्री कृष्ण बलराम का सुंदर रथ महिषानंद जी आश्रम के अंदर आया है, तो इस पदयात्रा का मैं आपको थोड़ा इंट्रोडक्शन मतलब परिचय कराना चाहूँगा। ये जो रथ देख रहे हैं आप लोग बैलगाड़ी का, दो बैलगाड़ी हमारे साथ, एक भगवान का रथ है और एक इसमें रखते हैं दो बैलगाड़ी, उसमें पांच बैल हैं हमारे साथ। तो ये जो रथ है बहुत दिव्य और बड़ा अद्भुत रथ है। ये जो पदयात्रा है 1984 में द्वारिकापुरी धाम से शुरू हुई थी। द्वारिका गुजरात क्षेत्र में आता है और वहां से शुरू होकर पूरे भारत की पांच परिक्रमा हो चुकी है। पांच मतलब एक भारत का राउंड लगाना, फिर दो ऐसे करके पूरे भारत की पांच राउंड करके, और पिछले 27 सालों से पदयात्रा पूरे भारत भर में भ्रमण कर रही है। और इस पदयात्रा के ऊपर भगवान श्री कृष्ण का विग्रह विराजमान है, और इस तरफ जो है कृष्ण के भैया का नाम क्या था, दाऊ जी के भैया कृष्ण कन्हैया। जोर से बोलिए, दाऊ जी के भैया, बच्चों की आवाज नहीं आ रही है, दाऊ जी के भैया कृष्ण कन्हैया, दाऊ जी के भैया। तो ये उनके साथ में दाऊ जी हैं, बलराम उनके बड़े भाई। तो ये सुंदर रथ है, और आगे भक्ति वेदांत स्वामी जी बैठे हैं, इनका जो विग्रह देख रहे हैं, ऐसी भक्ति वेदांत प्रभुपाद इस्कॉन संस्था के फाउंडराचार्य हैं ये संस्थापक। तो ये जो रथ है, ये स्वामी भक्ति वेदांत ने बोला था कि ये जो रथ है गांव गांव के अंदर ले जाओ और कृष्ण भक्ति का प्रचार करो, भगवत गीता का। तो ये जो पदयात्रा जो है पिछले 27 साल से भारत वर्ष में लगातार बिना रुके हुए भी ये पदयात्रा चल रही है, और ये रथ गांव गांव में जाता है और शाम को प्रोग्राम करते हैं कीर्तन भजन, और उसके बाद फिर लोगों को प्रसाद बांटते हैं और भगवत गीता पे लेक्चर देते हैं। तो ये पदयात्रा पिछले 5 महीने पहले ये पदयात्रा द्वारिका में थी, और द्वारिका से चलते चलते आज आपके महिषानंद आश्रम में आया है। और इस पदयात्रा के अंदर 25 भक्त हैं, सब अलग अलग प्रांतों से हैं। जैसे वो एक दो भक्त बैठे हैं हमारे सामने, कोई इसमें बॉम्बे का है, कोई इसमें सूरत का है, मैं दिल्ली हस्तिनापुर से, और इसमें देश विदेश के भी लोग हैं, विदेशी फॉरनर्स। तो इसमें 25 लोग हैं, और ये पदयात्रा इसका उद्देश्य जो है पर्पस, ये इसका उद्देश्य ये है कि भगवान श्री कृष्ण का जो संदेश है, भगवान श्री कृष्ण का संदेश क्या है, तो भगवान श्री कृष्ण का संदेश भगवान ने भगवत गीता में स्वयं दिया है। तो भगवान श्री कृष्ण का संदेश यह है कि सब लोगों को मेरी भक्ति का प्रचार करो, कृष्ण भक्ति का प्रचार करो पूरे विश्व के अंदर। तो ये पदयात्रा जो है पूरे भारत वर्ष में हरि नाम का संकीर्तन प्रचार करती है, लोगों के अंदर जो भगवत भक्ति जागृत कराती है। तो ये जो पदयात्रा है इसका ये परिचय है, और आगे ये पदयात्रा जो है चलती रहेगी। तो इसलिए आप लोग जितने भी यहाँ बालक और बालिका के स्कूल के जितने भी छात्र हैं, ये आप लोग का बड़ा सौभाग्य है, क्योंकि ये जन्माष्टमी का प्रोग्राम यहाँ नहीं मनने वाला था। हम लोग दूसरे गांव है यहाँ पर, जो 6 किलोमीटर है वहां पर। तो गुरुजी ने कहा, यहाँ के स्वामी जी, उन्होंने

0: बोला कि ये प्रोग्राम जो है यहाँ करिए तो अच्छा रहेगा, नहीं तो जैसे भगवान की इच्छा। तो देखो आप लोगों का सहयोग, आप लोगों का उत्साह देखकर हमने सोचा चलो यहाँ ही जन्माष्टमी मनानी चाहिए। तो इसलिए आप लोगों का बहुत ही बहुत सौभाग्य है कि भगवान श्री कृष्ण बलराम स्वयं रथ में बैठकर आज इस जन्माष्टमी के पावन अवसर पर आप लोगों को दर्शन दिए, ये आपका सौभाग्य। इसलिए आज के दिन जितना हम भगवान का गुणगान करेंगे भगवान श्री कृष्ण की उतनी हमको कृपा मिलेगी। तो इसलिए बहुत सुंदर है कि भगवान श्री कृष्ण इस जगत में क्यों आते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं कि दो कारण है मेरे आने के, यदा यदा ही धर्मस्या ग्लानिर्भवति भारता अभ्युक्तानाम अधर्मस्या तदात्मानं सर्वजाम्यहम् परित्राणाय साधुना विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनाय संभवामि युगे युगे। तो श्री कृष्ण इस श्लोक के अंदर ये बताते हैं कि यदा यदा ही जब और जहां भी अधर्म का क्या होता है, प्रधानता होती है और धर्म की ग्लानी होती है, तब तक मैं अवतार लेता हूं। और परित्राणाय साधुना, जो साधु हैं भगवान के भक्त हैं उनका क्या है, मैं क्या करता हूं उनकी रक्षा करता हूं, और दुष्कृताम जो दुष्ट व्यक्ति हैं उनको क्या करता हूं मारता हूं। तो 5000 साल पहले दुष्ट व्यक्ति कौन था, कंस, बहुत ऐसे थे शिशुपाल, ऐसे कई राक्षस थे जो राजा कंस के अंडर में थे। तो भगवान ने इनको क्या किया, बिल्कुल सफाया कर दिया। इसलिए बहुत जरूरी है, और आज भी दुष्ट प्रवृत्ति के लोग हैं, तो इसलिए स्वामी जी हैं और हम ये पदयात्रा के माध्यम से कितना प्रचार कर रहे हैं। तो इसलिए भगवान श्री कृष्ण आज आए, बहुत धन्यवाद। और वैसे तो आज के दिन अवतार लिए थे लेकिन स्वयं रथ में बैठ के ही भगवान श्री कृष्ण बलराम का रथ आया है, इसलिए जितना आज भगवान का नाम कीर्तन गुणगान किया जाए ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। इसलिए सभी लोग एक प्रार्थना करेंगे, हरे कृष्ण महामंत्र, सब लोग हाथ खड़ा करके सब लोग भगवान का नाम लेंगे। देखिए भगवान के हाथ खड़े, सब लोग दोनों हाथ ऐसे खड़िए, सब लोग जितने भी बालिका भगवान के हाथ खड़े, जोर से और प्रेम से श्रद्धा के साथ बोलिए सभी लोग, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे राम, हरे राम, राम राम, हरे हरे। श्री श्री कृष्ण भगवान की, राधा कृष्ण भगवान की, सीताराम लक्ष्मण हनुमान की। तो धन्यवाद आप लोगों का, हरे कृष्णा।
1: आप थे ब्रज अंगीदास जी इस्कॉन के सदस्य। आज हमारा बहुत ही सौभाग्य है कि यह सुंदर रथ, आध्यात्मिक रथ हमारे आश्रम में है। हम सभी आश्रमवासी इस्कॉन के सभी सदस्यों का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करते हैं। आप सभी की ओर से एक बार जोरदार तालियां बजाकर इनका हार्दिक स्वागत कराएं। कार्यक्रम की अगली कड़ी में कृष्ण लीला पर एक नाटक का मंचन किया जाएगा जिसमें भजन है अरे द्वार पालों कन्हैया से कह दो, जिसमें इस भजन में स्वर है भजन गायक श्रीमान अशोक जी चौहान का, अभिनय करेंगे कुलदीप और कक्षा चतुर्थ के बालक बालिकाएं, श्री कुलदीप और चतुर्थ के बालक बालिकाएं। दोस्ती की अनूठी मिसाल कृष्ण सुदामा, इस विषय पर मंचन, नाटक का मंचन किया जा रहा है मंच पर।
2: हेलो हेलो

उनका परम सखा मित्र सुदामा अपने मित्र से मिलने जा रहे हैं और महल के बाहर द्वारपाल कृष्ण भगवान के अंगरक्षक उनके सेवक उन्हें बाहर ही उनकी गरीब स्थिति को देखकर उन्हें रोक लेते हैं और उस समय निर्धन सुदामा विप्र सुदामा कृष्ण भगवान से और उनके द्वारपालों से क्या प्रार्थना करते हैं, बड़े आनंद के साथ में इस भजन और इस नाटक मंचन का आप सभी दर्शन करेंगे और हमारे छोटे छोटे बाल कलाकारों को प्रोत्साहन के साथ में समस्त भक्त पधारे हुए आशीर्वाद प्रदान करेंगे। इसी अशक्षात में एक बार जोरदार जयकारा भगवान श्री कृष्ण का। बोली कृष्ण का नहीं आ

0: ओम बोले श्री दीप नारायण भगवान की जय। श्री देवेश्वर महादेव की जय। स्वामी माधवानंद जी भगवान की जय। विश्व गुरु महामंडलेश्वर पंहा स्वामी महेश्वरानंद जी गुरुदेव
1: की जय।

ヒューモラクテン、シュリリッナレンバクワーネ、キージャイ、シュパクロデーワ、キージャイ。

0: सुनो
1: सुनो जी।
0: श्रीदीप नारायण भगवान की जय,
1: जय
0: श्री सतगुरुदेव की जय।

Angelo.

0: भगवान की जय। श्री श्री देव पुरी समहदेव की जय।
1: ओम बोले श्री दीप नारायण भगवान की जय।

You get a glass, yeah? That glass was there.

श्री दीप नारायण भगवान की देवादिदेव देवपुरी महादेव की सदगुरु स्वामी माधवानंद जी भगवान की अलखपुरी जी महादेव की सत्य सनातन धर्म की जय।

Sridipnarayam Bhagavan ki jai, Sri Sri Dev

होली श्री दीप नरयम भगवान की जय। श्री सतगुरु स्वामी माधवानंद जी भगवान की जय। श्री देवेश्वर महादेव की जय। विश्व गुरु श्री स्वामी माहेश्वरानंद जी गुरुदेव की जय। श्री श्री देवेश्वर महादेव की जय। श्री सतगुरु स्वामी माधवानंद जी भगवान की जय। विश्व गुरु महामंडलेश्वर योगिराज परमहंस श्री स्वामी माहेश्वरानंद

हलकपुरी जी महादेव की, देवा जी देव शिव स्वरूप देवपुरी जी महादेव की, आराध्य भगवान श्री दीप नारायण महाप्रभु जी की, आराध्य सतगुरुदेव हिंदू धर्म सम्राट श्री स्वामी माधवानंदपुरी जी महाराज की, सनातन धर्म की, भक्त और भगवान की जय। आराध्य गुरुदेव के सभी परम भक्त, धर्म प्रेमी सज्जनों, आज का दिन बड़ा ही शुभ दिन है। गुरु पूनम का पर्व, आप सभी को ओम श्री अलकपुरी जी सिद्धपीठ परंपरा की ओर से आशीर्वाद, ब्लेसेड सेल्फ, स्पिरिचुअल सीकर्स, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स राउंड द वर्ल्ड, टुडे ऑन दिस होली ओकेशन ऑफ श्री गुरु पूर्णिमा, ब्लेसिंग इज कमिंग फ्रॉम ओम श्री अलकपुरी जी सिद्धपीठ परंपरा, होली लैंड भारत। वेलकम ऑल ऑफ यू हियर एंड दोज हु आर इन अदर कंट्रीज। द गुरु पूर्णिमा हैज मैनी मीनिंग्स। फर्स्ट व्हाट उपनिषद एंड वेद सेज, तमसो मा ज्योतिर्गमय, लीड अस फ्रॉम द डार्कनेस टू द लाइट, अज्ञान से ज्ञान की तरफ। आराध्य गुरुदेव श्री स्वामी माधवानंद जी भगवान कहते थे, ज्ञानहीना पशु समाना, विदाउट नॉलेज वन इज लाइक ए एनिमल, नॉलेज इज द लाइट एंड इग्नोरेंस इज द डार्कनेस। द लाइट ऑफ द नॉलेज इज नॉट दिस फिजिकल लाइट विच वी सी विद अवर फिजिकल आईज, बट इट इज द लाइट विच इज विद इन अवर सेल्फ इन ईच एंड एवरी एंटिटी। But out of 8.4 million different creatures, human have got a special body and got a powerful tool that's called intellect. But the intellect, buddhi jo hai, buddhi ko gyan, विद्या चाहिए। बुद्धि को जैसी शिक्षा जैसा ज्ञान दोगे वैसा ही व्यक्ति सोचेगा बनेगा। व्हाट काइंड ऑफ एजुकेशन यू विल गेट लाइक दैट यू विल बी एंड यू विल थिंक लाइक दैट। In the police training, the policeman goes, he gets the training for the police, how to act
how to behave, how to be. His thinking, his knowledge, a training makes him a police. A driver gets the knowledge how to drive and he becomes the driver. So the driver similarly, चोर को भी ट्रेनिंग मिलती है तो वो चोर बनता है, आतंकवाद बनता है या और भी बनता है जैसी शिक्षा मिलती है. Therefore the intellect needs a particular education. Second, the education for the humans is very important, and that is the spiritual and ethic principles, where one understands the value of the Sanatana. The Sanatana values makes the human a human. So this, the education is from the master, from the guru. Only the language is different. You call master and in Hindi we say guru. That's all. झगड़ा केवल भाषा का है और कुछ भी नहीं. आप रामायण गीता पढ़ोगे तो मुसलमान शायद नहीं समझेंगे, स्वीकार नहीं करेंगे. और अगर वो कुरान उर्दू पढ़ेंगे तो आप स्वीकार नहीं करोगे, क्यों आप नहीं समझ रहे हो. बात वही है. अच्छी बात रामायण भी कहती है, अच्छी बात कुरान भी कहती है, बाइबल भी कहती है. डिफरेंट इज ओनली द लैंग्वेज. इज ओनली वन. एक कहता है कि मेरे दादी सा है, कोई है. दूजा कहता है कि मारी मामी है, कोई है. तारा मामा रिबू है, कोई. मारी माँ है, मामी नहीं कहना. एक है हमारी दादी है, एक है हमारे माँ है, दूसरे कहता है कि हमारी बेटी है, तीसरे कहता हमारी बहन है, और दूसरा कहता हमारी बुआ है, दूसरा कहता हमारे काकी है. आंटी नहीं है बेटा, आजकल कह के आंटी. ये आंटी थारी बापरी आड़ी क्यों गंदी गंदी बातें करो है. काका काकी बाजी बाजी वो करो. लेकिन दूसरा कहता मेरी बेटी है, हमारी पोती है. है वो महिला एक ही है कि नहीं. एक ही महिला है. नाम से बांट दिया, भाषा से बांट दिया. दादी है, माँ है, बेटी है, बहन है, बुआ है, काकी है, पोती है. बट है वो एक ही. सिमिलरली गॉड इज वन विच गॉड हैज नो नेम.

बाबूजी मां टावर ने हिंदी नहीं पढ़ा, ने अंग्रेजी पढ़ा हो तो नौकरी लागी। कितनी दुर्भाग्य की बात है कि तुम लोग इस प्रकार से सोचते हो कि हिंदी पढ़ा तो हमारे छोरा ने नौकरी नहीं लागे, नौकरी पड़ी खाडा रे माए। मनुष्य बनाओ बच्चे को। आज हिंदी का टीचर ही को नहीं मिले, संस्कृत का कोई मास्टर ही को नहीं मिले, न अंग्रेजी पढ़ी रहा रोता फिर झाड़ू लगावाने को नहीं लागे। इसलिए दुर्भाग्य है कि हम हमारी संस्कृति को छोड़ दिया, इसलिए कि तुम्हारे पास गुरु ज्ञान नहीं है। तुमने वो ज्ञान सीखा, तुमने वो संस्कार सीखे जो संस्कार तुम्हारे को आगे नहीं बढ़ा सकता है, क्योंकि वो संस्कार आपको वो संस्कृति नहीं बनाने देगा। संस्कारों से संस्कृति बनती है और संस्कृति से मानव बनता है, मानवता की देश की रक्षा करता है संस्कार। आज तो बस नौकरी चाहिए पे अंग्रेजी बोलो, नहंग जगह अंग्रेजी बोले बेटा, न केवल अंग्रेजी में भाषण दोगे, नहीं नहीं मैं हिंदी में बोलू बाप जी, बोलो आदि कचरी है। हमें अंग्रेजी बोले, मैंने क्या बेरस तो पूछ कर जानो के स्टेट, अरे बाबा जी स्टेट जाओ, अरे की स्टेट में जाऊं, गुजरात में जाऊं के राजस्थान में जाऊं के मध्य प्रदेश में जाऊं, हमें स्ट्रेट तो नहीं कह रहे, स्टेट स्टेट आ थोड़ी अंग्रेजी, अरे पूरी सीखी नहीं। बंगाल से एक लड़का गया इंग्लैंड पढ़ने के लिए, 3 साल के बाद वापस आया और रविंद्रनाथ टैगोर के पास गया, अंग्रेजी बोल रहा है, टैगोर साहब बंगाली बोल रहे हैं, तो टैगोर साहब बंगाली बोल रहे हैं तो वो टैगोर साहब को कह रहे मुझे अंग्रेजी पसंद है, तो टैगोर साहब ने कहा अच्छी बात है बोलो अंग्रेजी, वो 4 शब्द नहीं कियो, और टैगोर साहब ने कहा कि बेटा तू अंग्रेजी ही क्यों बिना ही तू बंगाली भूल गो है, तो तुम लोग अंग्रेजी पूरी ही क्यों बिना थे, मारवाड़ी ने राजस्थानी भूल गया, हमारी मातृभाषा है उसके द्वारा ही, उसी भाषा के द्वारा तुम्हारी शोभा है और दूसरी शोभा नहीं है। हमारे देश की संस्कृति वही काम आएगी। कहा है कि बणियाणी रेसी नहीं, रेसी सुधारी, होनारी परिजाव सी के बाबी कुमारी है, कि बणियाणी रे नी ने रेसी सुथारी, आ होनारी परी जाई के बाबी कुमारी। कौन कह रही है? रावण को, रावण की पत्नी के, रावण तू बना करके हट करके सीता को लाया, वो नहीं रहेगी, वो थाकी को नहीं है, रेसी सुथारी थारी है वो ही रहूंगी है, हट करियो तो होनारी लंका परी जाई। कौन कहवे? कुंभकर्ण की बाबी मंदोदरी कह रही है। तो इसलिए थे उदार लायोड़ी भाषा ने, पढ़ने पेट भरा मत करो, बुद्धि ज्ञान उसमें ज्ञान भरा है संस्कृति के अंदर में। एनी हाउ सॉरी दैट आई हैव टू स्पीक बिटवीन इन हिंदी एंड संस्कृत, आई डोंट नो सो आई हैव टू स्पीक लिटिल बिट इंग्लिश बिकॉज ऑल ऑफ यू, बट आई एम टेलिंग दिस इंडियंस दे शुड लर्न देयर मदर टंग and then after they should learn English. They don't know English and they forgot the Hindi. I asked someone address, I have very visited, the direction is going there. Oh, where is that place? So say state. State is not a path, direction is straight. But wo straight to aata nahi hai. Or महाराज जी वो क्या कहते योगा के अंदर हमें